उसका थोड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती नजर आई है। क्या लगता है, आप एग्री करोगे इस बात पे, मुझे बताइए 5599 पे। बट यस, मेरा नाम केतन है, मैं अभी से लेके 3 बजे तक यहाँ पे हूँ। बात करेंगे बहुत सारी, शुरुआत करेंगे होम सिक रेमेडीज की भी, तो आप मुझे टेक्स्ट भेजिए होम सिक रेमेडीज के लिए यहाँ पे 5599 पे। बचाओ क्या?

Welcome back. आज बात करेंगे होमसिक रेमेडीज की. मुझे मैसेजेस मिले हैं और पहला मैसेज पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल हुआ हूँ मैं. नॉस्टैल्जिक हो या फिर कुछ मेमोरीज है जो फिर से आई है दोबारा. कोमल कहती हैं, आई मिस हियरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी टू ईट मोर इवन व्हेन आई वॉज कम्प्लीटली फुल. फनी हाउ द लिटिल थिंग्स बिकम द बिगेस्ट मेमोरीज व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम होम. दैट इज सो ट्रू. मेरे केस में थोड़ा इमोशनल में इसलिए हुआ था बिकॉज दादाजी तो थे, वो काफ़ी मैं छोटा था जब वो हमें हमारा साथ छोड़ के चले गए थे. बट आई रियली हैड अ गुड मेमोरीज विथ माई ग्रैंड मदर. मेरी दादाजी के साथ काफ़ी अच्छी यादें हैं. मुझे हर एक चीज़ वो याद है, जब किस तरह से मुझे जब भी हमारे घर पे आती थी तो 6 महीने का टाइम हमारे साथ बिताती थी साल का, और तरह तरह की कहानियाँ हमें सुनाया करती थी. अलग अलग कहानियाँ, कुछ कहानियाँ तो ऐसी थी जो बार बार रिपीट मोड पर हमें सुनना पसंद था. और उसके साथ ही जैसे कि कोमल ने कहा है कि खाने के लिए बार बार फोर्स करना, तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी कि दादी जी खुद कहती थी कि खाओ थोड़ा और खाओ. इनफैक्ट वो मुझे कभी कभी बोलती थी तो मेरी प्लेट से खा ले, कम मत खा, बहुत पतला हो रहा है. एक्चुअली मैं था तो बहुत पतला हुआ बचपन में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं था हेल्दी, बट स्टिल शी वॉज कॉलिंग मी पतला. बट यस, ये सारी मेमोरीज जो है आपने याद दिलाया कोमल, थैंक यू सो मच. वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो सचमुच सेम फील करते हैं? 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं. लंच बॉक्स विद केतन. मुझे पसंद है लड़का. 80s के रेट्रो गाने.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad, ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur Aamche Mumbai ke Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights aur 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
2: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. All sofas, all furniture, all mattresses and all homewares. Hurry, sale must end soon. Only at Freedom.
3: Oh no, we'll be late.
4: We'll be all right. I'll call the AA.
5: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
6: MediaWorks complaints. How can I help?
7: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
6: Thank you.
7: It's all I can think about.
6: What does it sound like?
7: Yeah, I'd rather not.
6: Go on, why don't you have a crack?
7: Okay, got a plumbing problem.
6: Oh, I need a bit more than that.
7: They've got your back.
6: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
7: Oh, okay.
8: There's no better plumber to give it a crack.
6: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
7: No, I want a plumber.
9: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
10: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
11: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
10: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
11: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
12: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
13: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
14: Lunchbox with Ketan.
15: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
14: Office shout out.
16: ऑफिस शाउट आउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैसेजेस अभी तक तो वैसे आई नहीं है, बट यस फील फ्री टू सेंड मी 5599 पे आप मुझे भेज सकते हैं वो मैसेजेस। पर अभी के लिए फिलहाल आपको याद दिला देता हूँ दैट देयर इज वन न्यू पॉडकास्ट व्हिच वी हैव रिलीज्ड, निवेदिता विज डिस्कसिंग थैलेसीमिया और उसका इम्पैक्ट जो है साउथ एशियन कम्युनिटी को लेकर, वो हर एक चीज बात की है जिनमें से चार क्विक पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। दैट वन सिंपल स्क्रीनिंग कैन चेंज योर फैमिलीज फ्यूचर, यानी कि एक आपको कभी भी लगता है दैट या नहीं भी लगता हो बट ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको सचमुच इतना शॉकिंग होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो सचमुच आपको फील हो करवाएगा कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो नॉर्मल चीज़ ही आपको थैलेसीमिया तक यू नो रिपोर्ट आने का जो नेगेटिव साइड है वो सुनने को मिल सकता है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार पॉडकास्ट सुने और इस पॉडकास्ट के जरिए कब आपको लगता है कि आपको स्क्रीनिंग करा देनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर में ये जो बीमारी होती है वो होने से बचा सकती है। साथ में ऑफकोर्स कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि वाई अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कांट वेट, अ वाइटल कन्वर्सेशन फॉर एवरी हाउस होल्ड, और साथ में साइलेंट कैरियर्स द हिडन जेनेटिक थ्रेट फेसिंग साउथ एशियन फैमिलीज, यानी कि कैसे धीरे धीरे शांति से ये चीज़ बढ़ती जाती है, एक से दूसरे पास ऑन भी होती है। तो ये पॉडकास्ट आई रियली फील कि आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल वाली होगी, एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ये नॉलेजफुल के हिसाब से अगर आप ले तो बहुत ही सही होगा। सो यस, ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए ताकि आपको हमारी ये जो लिंक है वो मिल जाए।
17: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
18: किशो गंदे सॉन्ग यार।
19: डांसरी पागल है यार।
18: क्यों?
19: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
18: But why it's iconic?
19: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने गए? छोड़ दे, आजकल जनता ना बहुत पिक्चर्स हो गई।
18: But imagine
20: how the song would look if Ali, Kunal and Diya did it. Our version.
21: That's what I'm saying, now you're getting me.
22: You guys want to audition? Yeah?
19: Roll ho jayenge. Mat karo.

हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं आज के दिन 23 जून 1973 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फ्रांस को पैसिफिक ओशन में न्यूक्लियर टेस्टिंग रोकने के लिए एक टेम्पररी इंजेक्शन दिया। ये केस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने फाइल किया था क्योंकि उनका मानना था कि फ्रेंच न्यूक्लियर टेस्ट से रेडियोएक्टिव पोल्यूशन फैल रहा था और एनवायरमेंट और लोगों की हेल्थ को काफी नुकसान पहुंच रहा था। वैसे फ्रांस ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना और टेस्टिंग जारी रखी। इसके बाद न्यूजीलैंड में न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए और न्यूजीलैंड सरकार ने अपनी नेवी की जगह भी प्रोटेस्ट के रूप में टेस्ट एरियाज के पास भेज दी। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के कारण फ्रांस ने 1974 में एटमॉस्फेरिक हवा में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट को बंद कर दिया और बाद में अंडरग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी। ये घटना न्यूजीलैंड की एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के इतिहास में एक काफी इंपॉर्टेंट मोड मानी जाती है और उसने देश की एंटी न्यूक्लियर पॉलिसी को काफी मजबूत बनाया और काफी योगदान

0: Well, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होने जा रहा है गुज्जु भाई ने एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया. जी हाँ, जो कि गुज्जु भाई प्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बनाया है, पूरा यू नो डिजाइन किया है और एकदम एक से बढ़कर एक बढ़िया एक्टर इसमें है और काफी अच्छी लाइटिंग प्रिपरेशन और काफी बढ़िया इन्होंने ह्यूमर भी बढ़ा लाया. यानी कि एक्सचेंज ऑफर एक ऐसे चीज में फंसते हैं गुज्जू भाई जो आगे ले जाके एक काफी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है जो कि और भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में कन्वर्ट होता है और ऑफ कोर्स पूरे शो में हंसी के ठहाके तो आपको मिलेंगे. सो यस, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट रिलेटेबल फैमिली मोमेंट एंड क्लासिक गुजराती ह्यूमर भी इसमें इन्वॉल्व है. तो आप टिकट ले लीजिए premierTickets.co.nz पे जाके. 3 जुलाई को ये होने वाला है 7:30 बजे के बाद विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. जी हाँ, सिद्धार्थ रंडेरियाज गुज्जू भाई लेके आ रहे हैं गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो.
3: और गानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
1: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
2: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
3: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
4: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
5: Lunchbox with Kethan.
6: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
7: Chutney Shots.
8: वेल यहाँ की लेटेस्ट खबर के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीज भी लेके आते हैं जहाँ पे आपको फटफट से न्यूज मिल सके. इन शॉर्ट यस, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्राइस्टचर्च से. एक ट्रेजिक खबर, एक ई स्कूटर राइडर को रोड क्रैश के बाद मौत हो गई. पुलिस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लोगों से एक्स्ट्रा रोड सेफ्टी फॉलो करने की अपील की गई है. वेदर अपडेट में मेट सर्विस ने वार्निंग दी है कि न्यूजीलैंड के कई पार्ट्स में अगले कुछ दिनों में हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिल सकती है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लेटेस्ट वेदर अपडेट जरूर चेक कर लिए. एक इंटरेस्टिंग कीवी स्टोरी भी सामने आई है. एक जेट्स की फिशरमैन ने 95.6 किलो की जायंट टूना कैच की है. वो भी जब तब एक शार्क उस मछली की टेल का हिस्सा खा चुकी थी. वाओ. ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू को लेकर कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं. कई जगहों पर बीमार और डेड बर्ड्स भी रिपोर्ट हुए हैं जिसके बाद अथॉरिटी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है. स्पोर्ट्स अपडेट में ऑल व्हाइट्स को फीफा वर्ल्ड कप में इजिप्ट के खिलाफ कमबैक डिफीट का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑल ब्लैक स्क्वाड का भी अनाउंसमेंट हो गया है और फैंस की नजरें अब अपकमिंग मैचेस पर है. एंटरटेनमेंट में गुड न्यूज ये है कि एना हैथवे ने अपनी थर्ड प्रेगनेंसी अनाउंस की है और फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर काफी बधाई दे रहे हैं. सो यस, इफ यू आर फैन, वन ऑफ द फैन, देन यस, गुड न्यूज फॉर यू. और बिजनेस अपडेट में न्यूजीलैंड के हाउसेस प्राइसेस को लेकर नए एनालिसिस सामने आई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब हर 10 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल होने वाला ट्रेंड पहले जैसा गारंटेड नहीं रहा.
5: दिल

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है. Throwback.
2: Well, आज का जो सवाल है वो काफी फनी है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, और उससे ज्यादा जो आपके जवाब आएंगे उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ. Have you ever walked into the wrong toilet? ये हुआ है कभी? I'm pretty sure, कभी ना कभी तो हुआ होगा आपके साथ. मेरे साथ भी हुआ है. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कुछ सालों पहले की, जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं मॉम को एक फिल्म दिखाने गया था, दिखाने लेके गया था. अब ऑफ कोर्स मम्मी है साथ में तो फैमिली फिल्म ही होगी. मेरे ख्याल से जुग जुग जियो फिल्म थी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें वरुण धवन और कियारा आडवाणी है, और उसमें अनिल कपूर भी हैं, जहाँ पे कियारा आडवाणी और ये डाइवोर्स चाहते हैं, लेकिन वो जब बोले उससे पहले पता पड़ता है कि अनिल कपूर खुद अपनी बीवी से डाइवोर्स चाहता है. सो यस, क्वाइट एंटरटेनिंग. और उसमें काफ़ी, उसमें अभी याद है कि मेरी मौसी भी थी. सो द वे मुझे लगा शायद एंटरटेनिंग होगी, डेफिनेटली एंटरटेनिंग थी, बट मम्मी और मौसी तो इतना जोर जोर से हंस रही थी पूरे थिएटर में, ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनिंग बना रही थी मूवी. और हम देख रहे थे कि भाई या तो इनको कुछ याद आ गया है या फिर यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवेज, ये सवाल मैंने आपको किया है तो आप मुझे 5599 में भेजिए एंड बताइए. अरे बातों बातों में ये तो बताने भूल ही गया कि भाई एग्जैक्टली क्या था. सो बेसिकली तब मैं वॉशरूम में गया था और मुझे सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम, वो हाउसफुल था, पता नहीं फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक था, मेरे को आइडिया नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो मुझे सामने टॉयलेट देखा और मैं घुस गया, और जैसे मैं घुसा और देखा यहाँ पे सब लड़कियाँ क्या कर रही है, ओ माय गॉड. जैसे ही मेरे को पता पड़ा, मैं अबाउट टर्न होकर यू टर्न लेके ऐसा बाहर निकला, मैं लिटरली इतना घबरा गया था कि मैं टॉयलेट से बाहर नहीं, मैं थिएटर से बाहर चला गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कोई मारने वाला है क्योंकि इंडिया में तो अब पता ही क्या हाल हो रहा था, मतलब हल्का सा कुछ टॉलरेंस पावर ऐसी हो चुकी, इतनी वीक हो चुकी दैट पीपल कैन नॉट टॉलरेट. तो फ्रस्ट्रेशन इतनी है कहीं कहीं जगह, तो वो गुस्सा कहीं का कहीं और निकाल देते हैं. तो ये चीज़ मैं देख के डायरेक्ट थिएटर से बाहर गया, मम्मी जी कॉल पे कॉल कर रही है, फिर मैं फाइनली अंदर आया, मेरे को लगा कि हाँ चलो सब सिचुएशन नॉर्मल है. फिर मैं स्नीक आउट, स्नीक इन किया एक्चुअली बेसिकली, और वो भी तब किया जब फिल्म शुरू हो चुकी थी ब्रेक के बाद, ताकि मुझे लगा कि अगर बाई चांस क्या पता वो मेरा वेट कर रहे हो और मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हो. तो या बट ये आप बताइए मुझे 5599 पे, हैव यू एवर वॉक्ड इनटू द रॉन्ग टॉयलेट.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 14 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज बारिश के आसार है, 40% दिखा रहा है, 40%। पर आज का सनसेट होगा 5:13 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल यस, मैंने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि हैव यू एवर वॉक्ड इनटू द रॉन्ग टॉयलेट। इसका जवाब मुझे काफी फनी मिले हैं, बट यस आप भी मुझे अभी भेज सकते हैं। बट यस, मीनवाइल लेट मी इंट्रोड्यूस कि भाई इस आर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे। इस आर में ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स, जैसे कि स्पोर्ट्स से लेके बॉलीवुड भी होगा, उसके बाद न्यूज अपडेट की लेटेस्ट कोई खबर है तो, और कुछ इधर उधर की भी बातें करेंगे। थोड़ा गॉसिप तो चलता है यार, राइट है ना। बट चलिए थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि लंच टाइम रेंट लाइन में आप क्या करेंगे, उसके बारे में बात होगा। बट यस, सबसे पहले रवि भाई कहते हैं, यस आई वॉक इन टू द लेडीज टॉयलेट एट द मॉल विदाउट इवन लुकिंग। द सेकंड आई सॉ द मिरर एंड एवरीवन स्टेयरिंग, आई टर्न अराउंड एंड वॉक आउट लाइक नथिंग हैपेंड। आई काइंड ऑफ सिमिलर, लाइक ऑफकोर्स यही सिचुएशन होगा, ऐसा थोड़ी कि वहां जाके बैठ जाओगे। बट थैंक यू रवि भाई मैसेज के लिए। प्रिया कहती है, आई वॉज सो बिजी ऑन माई फोन दैट आई वॉक इन टू द मेन्स रेस्ट रूम बाई मिस्टेक एंड देन आई अपोलोजाइज अबाउट 10 times and ran out so fast. cool. Dev bhai kehte hain, at a restaurant I confidently walked into the wrong toilet. I only realized when there was not a single urinal. I did the fastest U-turn of my life. nice. Thank you so much, yeah. Thank you. Kafi badhiya message mile hain. Ek just message aaya hai. Pooja kehti hai, the funniest part was pretending I meant to be there while trying to escape without making eye contact. ये सही है, ये मतलब देखो ही मत किसी को, एकदम मुंडी नीचे करके चलते बनो ताकि खुद को फील नहीं हो कि यार क्या कर दिया मैंने।
0: बचाओ क्या,

0: वेल यस, जल्दी से फोन उठाइए और 5599 पे आप टेक्स्ट भेज दीजिए रिगार्डिंग लंच टाइम रेड लाइन, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो सचमुच आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील होती है या फिर आपने फेस की हो रिसेंटली, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो आप बता सकते हैं 5599 पे थोड़ी देर में।
1: लंच बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
2: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone, or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains, and most ferries with any of them. Just turn up, tag on, and save when you ride with Auckland Transport.
3: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
4: MediaWorks complaints. How can I help?
5: My kids won't shut up.
4: I'm not sure that's our problem.
5: They keep reciting lines from one of your radio ads.
4: Aw, cute.
5: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
6: What do you want, son?
7: I want me some of that real southern chicken.
5: 28 times.
4: So where are you now?
5: Eating chicken.
8: Advertise with
9: MediaWorks.
8: New Zealand listens to us.
10: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
11: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
12: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
13: हाँ, अच्छा?
12: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
13: मिसेस सिंह।
14: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: लंच बॉक्स विद केतन।
17: मुझे पसंद है लड़का।
16: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
18: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, Nishant ka sabse pehle message aaya hai regarding the lunchtime rent line ke liye. Papa Twitter se unhone message kiya hai. Why do people stop in the middle of the bus footpath to check their phone? Move to the side, yaar. Maine experience to nahi kiya hai, but this is kind of very risky, yaar. Aap beech mein ekdum ruk gaye ho and then you're checking your phone. Thoda road ko us tarah se dekho that you need to share. You don't own it. So that's how you need to drive and that's how you need to give space to other people as well. But thank you, Nishant, for sending the message. Sonal kehti hai, Indian parents spend 10 minutes looking for their glasses while wearing them. Ye shayad pehle bhi aaya tha. Kisne bheja tha mere ko. But thank you again, Sonal, aapke message ke liye. Rajesh bhai kehte hai, PG Indian families never leave a party on the first goodbye. There's always another 30 minutes conversation at the front gate. Well, it is not just about Fiji Indian families. This is kind of, I would say, Indian families as well. मेरे खुद घर में होता है. मतलब ये बैठे हैं, चलो चलते हैं, फिर वहाँ पे 5 मिनट हो गए, फिर थोड़ा सा बाहर गए, फिर वहाँ पे 10-15 मिनट हो गए, फिर नीचे आए, फिर दूसरा टॉपिक हो गया. ऐसे ख़त्म होते होते होते होते आधा पौन घंटा तो हम गुड बाय कहते कहते निकल लेते हैं. बट थैंक यू सो मच फॉर लवली मैसेजेस. ये जो गाना है अभी जो मैं चलाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. And I'm pretty sure आपका भी है. अभी काफी ट्रेंडिंग पे है कॉकटेल 2 से माशुका. मोहम्मद राघव चैतन्य ने भी, एक्चुअली आवाज जो है वो राघव चैतन्य की, इतना हाई पिच में इन्होंने गाया, इतना कमाल का गाना गाया, मजा आ गया.
16: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेल गाइस क्या गजब की न्यूज़ लेके आया हूं मैं अगर आप फिशिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर यू आर फॉन्ड ऑफ एनी न्यूज़ जो कि फिश पकड़ते हैं उस पे तो दिस इज गोइंग टू अमेज यू वेल कल के दिन बे ऑफ प्लेंटी के पास एक जेट स्की फिशरमैन मैट रिंगोट ने एक बहुत ही बड़ी सदर्न ब्लूफिन टूना पकड़ी और एनी गेसेस उनकी वे उसका उस टूना फिश का वजन कितना होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 95.6 किलोग्राम की थी वो वाओ लेकिन शुरू में ये शायद 100 से ज्यादा लग रही थी एक्चुअली मानी जा रही थी लग नहीं रही थी फाइट लगभग 90 मिनट तक चली उस टूना फिश के साथ बट फाइनली ऑफकोर्स ये जीत गए और लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि मैको शार्क ने टूना की पूंछ यानी कि टेल को थोड़ा बाइट किया था यानी कि वो हिस्सा जो था वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था दिलचस्प बात यह थी कि शार्क की टेल काटने से टूना कम ताकतवर हो गई थी अगर वो नहीं होते तो शायद इट कुड हैव बीन अदर वे अराउंड जिसकी वजह से मैट उसे कंट्रोल करने में सक्सेस रहे बाद में शार्क ने पूरी मछली छीनने की भी कोशिश करी लेकिन मैट और उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ जो कलीग्स थे उन्होंने पूरी मछली को मिलकर पकड़ लिया सो यस मैट ने कहा कि ये उनकी जिंदगी सबसे बड़ी कैच है शायद न्यूजीलैंड में जेट्स की से पकड़ी गई

की सबसे बड़ी टूना फिश हो सकती है और उन्होंने इस घटना को रिस्की बताते हुए लोगों को अकेले ऐसी फिशिंग ना करने की भी सलाह दी है। आप एक बार ऑनलाइन जाके once you finish my show and then of course you can go online and check it out।

0: वेलियस एक बहुत ही बढ़िया टीजर लेके आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आप ईस्टर हॉलिडे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो प्लान करिए, नो डाउट, बट हमें भी याद करिएगा उस प्लान में, बिकॉज हम आपके लिए सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ की चीजें। यानी कि ईस्टर जो है आपका लॉन्ग तो ही है, बट साथ में क्या होगा अगर आपको सन स्टोरीज केओस और क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर, जी हाँ उसके बारे में हम आपको कुछ बहुत ही जल्द बताएंगे। आई नो थोड़ा इनकम्प्लीट है, आई नो थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा होगा कि भाई क्या है जल्दी बताओ, डेफिनेटली वी विल लेट यू नो, बट ईस्टर लॉन्ग वीकेंड के लिए आपका आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी अ वर्थ वेटिंग। जी हाँ, तो आप बस ट्यून इन रहिए और हमें सुनते रहिए, बिकॉज जल्द ही आपके बीच ये खबर लेके आने वाले हैं कि इस बार का जो ईस्टर लॉन्ग वीकेंड का जो प्लान है उसमें आप क्या कर सकते हैं। So yes, it's all sorted from our side. It's just that you need to listen to us more and more.
1: Lunchbox with Ketan.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
5: कौन है?
6: Hunua और वेटाकरे।
5: अच्छा Hunua वेस्ट में?
6: किधर है Hunua?
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
3: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
9: Turn groceries into getaways, pit stops into points, and everyday spending into savings. Collect more rewards points with everyday rewards at Woolworths, Fresh Choice, BP, Gas, Petstock, and Milkrun. Join Everyday Rewards today.
10: Davey Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5 p.m. with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday, 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
11: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट auckland emergency management.gov.nz/floods।
12: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम
3: लंच के मंच पे।
0: वेल, ये रही खबर बॉलीवुड की, पर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कितने लोगों ने देख ली है मैं वापस आऊंगा। ये वो वाली मैं वापस आऊंगा नहीं है जो मुझे भी पहले लगता था, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, ये वो फिल्म नहीं है। लेकिन ये जो फिल्म है काफी रिलेटेबल भी है, दैट समथिंग अबाउट द बॉर्डर। जी हाँ, कि पार्टीशन जो हुआ था तो उस टाइम क्या सीन हुआ था। इनफैक्ट मैंने तो देखी नहीं अभी तक फिल्म, लेकिन रुस्बेन सैंडी ने देखी, और सैंडी ने एक गाना मुझे दिखाया था, नॉट श्योर क्या गाने का नाम है, लेकिन जिसमें पूरा पिक्चराइजेशन दैट ही इज सिंगिंग इन द वो जो बिल्डिंग का टूट रही है, गिर रही है, एंड अबाउट टू फॉल एज वेल, वहाँ पे वो पिक्चराइजेशन किया है, एंड इट इज अमेजिंग, अमेजिंग टू सी डायरेक्शन, बट ऑफकोर्स काफी टैलेंट भी आ रहा है। और अभी मुझे पता पड़ा है दैट इसमें जो यंग जो एक्टर है जो दिलजीत का रोल कर रहे हैं, वो उन्होंने एक गाना भी गाया है। वाओ, आई मीन मतलब मैंने देखा है, सुना है दैट, बट ही इज एक्चुअली सिंगिंग वेरी वेरी गुड, बिकॉज इनका ना मैंने एक देखा था, मैंने किसी कोई इवेंट था वहाँ पे इन्होंने लाइव परफॉर्म किया वहाँ पे, सो क्या सही साउंड कर रहा था। मुझे पहले लगा शायद AI वीडियो होगा, ऐसा कुछ होगा, बट नो यार, बहुत ही प्यारा इन्होंने गाया था। इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। वेदांग रैना की मैं बात कर रहा हूँ, जो काफी अच्छा गाते भी हैं। सो यस, मुझे बताइए आपको ये अगर फिल्म देख ली है तो कैसी लगी। वैसे यस, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि डायरेक्टर इम्तियाज अली ने थिएटर्स, एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उनकी फिल्म मैं वापस आऊँगा के लिए ऑडियंस डिमांड बढ़ने के बाद कई सिनेमाज ने एक्स्ट्रा शोज ऐड किए हैं। और फिल्म ने शुरुआत में एवरेज ओपनिंग ली थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस रिस्पॉन्स की वजह से दूसरे हफ्ते में उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी बढ़ गई। और एक वीडियो मैसेज में इम्तियाज अली ने कहा है कि थिएटर ओनर्स जो हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर उन जो फिल्म का सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से रिक्वेस्ट भी कही है और लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है। वैसे बढ़ती डिमांड के चलते कई शहरों में इंडिया के एडिशनल स्क्रीनिंग भी लग चुकी है, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शोज भी चालू हो चुके हैं। फिल्म में जैसे कि एज यू ऑल नो दिलजीत दोसांझ, शर्वरी, वेदांग रैना एंड नसरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आ रहे हैं और ये फिल्म धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रही है और ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। तो आई फील अगर इस बार का वीकेंड मेरे लिए सॉर्टेड होता तो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू वॉच दिस फिल्म। व्हाट डू यू थिंक?

Well, कुछ और भी बातें करते हैं. काफी आर्टिकल्स आते हैं यहाँ पे एंड काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी मिलते हैं. तो अभी एक जो आया है आर्टिकल, उसमें बेसिकली एक लोकल न्यूज़पेपर में भी आया ये न्यूज़ आर्टिकल एक्चुअली ऑनलाइन न्यूज़. उसके मुताबिक अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए. जी हाँ, जैसे आपको लगता है कि आप बहुत सुबह से शाम काम करते हैं, वंस यू गो बैक एंड देन यू फील टायर्ड एंड ऑल, बट लेकिन सेम चीज़ रोज रोज नहीं होती. कभी आपको एनर्जेटिक भी लगता है, कभी आपको नहीं लगता है. वेल, लगातार थकान के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, डिहाइड्रेशन या किसी मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है. सबसे पहले स्टेप तो ये समझना है कि आपको थकान जो है उसकी असली वजह क्या है. आर यू एक्चुअली गेटिंग सो टायर्ड, मेंटली टायर्ड, फिजिकल टायर्ड, या बस आपकी बॉडी ही जवाब दे जाती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनर्जी बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी की 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पानी की कमी और ज़्यादा कैफीन या अल्कोहल भी थकान को बढ़ा सकता है. यानी कि ये चीज़ मैंने नोटिस की है दैट मैं पानी से ज़्यादा कॉफ़ी पी लेता हूँ कभी कभी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, डेफिनेटली नॉट. पर अगर लाइफस्टाइल में सुधार करना है तो बाद भी थकान जो है वो दूर नहीं होती उसका, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एनीमिया भी हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज़ या स्लीप डिसऑर्डर्स भी उसके जैसे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और उन्हीं कारणों की वजह से भी आप हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं. सो यस, मेन मेरा एजेंडा ये है दैट अगर आपको सिमिलर चीज़ हर रोज़ फील हो रही है तो ट्राई टू फोकस ऑन योर डाइट फर्स्ट एंड योर स्लीप टाइम एंड द कंजप्शन ऑफ वाटर. ये सारी चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं, तो ये तो आप ध्यान दे ही सकते हैं. बट उसके बावजूद ये इम्प्रूव करने के बाद भी अगर आपको लगता है दैट नथिंग इज़ वर्किंग आउट एंड यू स्टिल फीलिंग द सेम, तो फिर सच में मैं कहता हूँ कि टाइम से चलते आप डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए, बिकॉज बहुत बीमारियाँ हो रही हैं. सो वी डोंट वॉन्ट दैट यू सफर यू नो इन द सेम सिचुएशन. सो यू आर बेटर टू गो टू डॉक्टर, चेक इट आउट एंड

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: क्या नमस्ते, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। कैसा जा रहा है आपका आफ्टरनून? लंच मस्ट हैव बीन फिनिश्ड नाउ बाय नाउ ऑफ कोर्स। बताइए मुझे क्या क्या आपने खाया। वैसे तो लंच बॉक्स लंच टाइम सॉरी ऑफिस शार्ट आउट में मिले थे मैसेज, बट उतने नहीं मिले थे जितने यूजुअली मिलते हैं। लगता है मुझे किसी की नजर लग गई है, तभी से आजकल मैसेजेस बहुत कम हो गए। बट एनीवेज, आप बने रहिए, इस आर में भी काफी कुछ आपको अपडेट देना है। फीफा मैच कौन कौन से मैचेस हैं उस पर भी बात होगी, एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट की दुनिया में भी रोमांच बढ़ता जा रहा है। सो यस, और भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में बात होगी। बट अभी के लिए आप एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना हमारी तरफ से।
1: बचाओ क्या

0: Well, FIFA से खबर लेके आया हूँ. All whites के players ने इजिप्ट के खिलाफ 3-1 से हार को pretty gutting कहा है, यानी कि बहुत ही निराशाजनक बताया है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मैच की शुरुआत बहुत ही अच्छी की थी और पहले हाफ में लीड भी ले ली थी. डिफेंडर न्यूजीलैंड नेशनल फुटबॉल टीम के लिए फिन सरमैन ने पहले गोल करके टीम को 1-0 से आगे भी कर दिया था, लेकिन सेकेंड हाफ में मोहम्मद साला की अगुवाई में इजिप्ट ने काफी जबरदस्त कमबैक किया. पहले मुस्तफा जीको ने इक्वलाइजर स्कोर किया, फिर साला ने गोल करके इजिप्ट को लीड दिलाई और आखिर में ट्रेजी ने भी एक तीसरा गोल करके 3-1 से जीत लिया. ये इजिप्ट की वर्ल्ड कप इतिहास में पहली जीत भी है. वाओ, क्या बात कर रहे हो, सही में. हाँ, ये पढ़ रहा हूँ मैं अभी, लाइक आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट. गजब यार, लाइक दिस इज रियली ग्रेट. बट अनफॉर्चुनेटली वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है, सो दैट मीन इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन देयर हिस्ट्री. मैच के बाद न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने कहा है कि हार से निराशा जरूर हुई है, लेकिन अब उनका पूरा फोकस अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप मैच में होने वाला है, जो कि बेल्जियम नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाफ है. उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा और इस हार के बाद ऑल वाइट्स पर नॉकआउट स्टेज पे पहुंचने के लिए भी जो दबाव है वो बढ़ चुका है. तो क्या लगता है आपको, क्या मैच की प्रेडिक्शन हो सकती है अभी बेल्जियम के खिलाफ, वो आप मुझे बताइए 5599 पे. बट यस, इफ आई सी द मैच, वो होने वाला है, क्या देते हैं, 27 जून को होगा ये अगला मैच जो बेल्जियम के खिलाफ होने वाला है, ग्रुप जी, जो कि बीसी प्लेस वैंकूवर में होने वाला है. राइट, आज वैसे चार मैचेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से तीन हो चुके हैं और अभी तीसरा जो आखिरी मैच है वो 3 बजे शुरू होने वाला, जॉर्डन वर्सेस अल्जीरिया के बीच में होने वाला, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम सैन फ्रांसिस्को में होने वाला ये. सो यस, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स सी कौन जीतता है.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हाँ.

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Got an event on the calendar? Then your signage should already be in motion. Speedy Signs produces pull-up banners, display walls, teardrop flags, and expo signage that grabs attention fast. They handle design, production, and install, so you can focus on conversations and conversions. Big presence, zero last-minute panic. If your event is coming up, now's the time. Don't leave it to the last minute. Call them now on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
7: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ, अच्छा
9: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह का
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 0928130500 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip your replay.
3: राहत फतेह अली खान, द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं आपके शहर, हमारे शहर, हम सबके शहर ऑकलैंड में एक बार फिर से एक अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक परफॉर्म करने. वेल यस, वो रात मुझे भी याद है, दो साल पहले आए थे और इट हैज बीन अमेजिंग शो यार. मैंने उनको पहली बार गाते हुए देखा, इनफैक्ट मैंने फोटो भी खिंचवाया. आई वाज लकी इनफ टू यू नो वाज एबल टू गेट सम फोटो क्लिक विद हिम. बट यस, ट्रस्ट एरिना में, यानी कि सेम स्टेज पे होने वाला है, सेम स्टेडियम में होने वाला है 25th ऑफ जुलाई को. आप जल्दी से जाइए dryTickets.com पर और टिकट खरीद लीजिए. प्रेजेंटेड बाय जीके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन की तरफ से ये शो होने जा रहा है. वेल, एक मौका है आपके पास जहां पे आप जीत सकते हैं डबल पास. कैसे? आपको बस बने रहना है, सुनते रहना है. मैं या कोई और हर एक आर में आपको, नॉट हर एक आर बट हर एक शो में आपको मौका मिल सकता है जहां पे आपको कॉल करना है हमें, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड होंगे जहां पे आपको फटाफट से आंसर देने रैपिड क्वेश्चंस के, जो ऑफकोर्स विल बी रिलेटेड टू राहत फतेह अली खान. तो यस, मैं तो कहता हूं अभी से आप थोड़ा जनरल नॉलेज अपनी इंप्रूव कर दो राहत फतेह अली खान के, बिकॉज जैसे ही सही जवाब देंगे आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकते हैं डबल पास फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग शो.
0: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कल मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, जो इंडिया हार चुकी है, 6 विकेट से हारी है। और उसके जस्ट बाद वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच में भी मैच हुआ था, जिससे श्रीलंका भी 5 विकेट से हार चुकी है, यानी कि वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट से मैच जीत लिया है। सिर्फ 98 रन ही बना पाई श्रीलंका और ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 16.1 ओवर में ही मैच जीत लिया। वेल, कौन ब्लेम है? एक आर्टिकल भी आया उनसे, जब पूछा गया कि श्रीलंका की कैप्टन छिमारी अथापत्तू, उनके अपनी टीम की वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज से हार के बाद उनसे पूछा गया कि क्या है, तो काफ़ी इमोशनल नजर आई थी और उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। उनका कहना था कि टीम की बैटिंग अच्छी नहीं रही और कैप्टन होने के नाते वो खुद बेहतर एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाई। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 98 रन बनाए, जो वेस्ट इंडीज के लिए आसान टारगेट बन चुका था। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट खोकर ये मैच जीता है और टूर्नामेंट में अपना अनबीटन रिकॉर्ड बरकरार रखा। मैच के बाद चुमारी ने कहा कि अगर टॉप ऑर्डर ज्यादा रन बना पाते और वो खुद बड़ी इनिंग खेलती तो रिजल्ट अलग हो सकता था, और इस बार इस हार के बाद श्रीलंका के सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदें काफी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि टीम ने अपने 3 मैचेस में से 2 हार चुकी है।

Well, और भी स्पोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं. इफ नॉट क्रिकेट, इफ नॉट फुटबॉल, देन NBA ड्राफ्ट बास्केटबॉल. ये हो रहा है USA में, न्यूयॉर्क सिटी में. आप उसे देख सकते हैं, आज और कल ही होने वाला है. उसके बाद कुछ दिनों बाद TTSN MotoGP भी शुरू होने वाला है, उसे भी आप देख सकते हैं. फॉर्मूला 1 रोलेक्स क्रॉसर प्रेस वो भी शुरू होने वाला है 26 के ऑनवर्ड्स. UEFA वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल वुमेन, ये 27 जून से शुरू हो जाएगा, इसे भी आप देख सकते हैं. उसके बाद पेरिस डायमंड लीग, ये भी शुरू हो जाएगा 28 जून से. और UEFA यूरोपियन अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल मैन, वो भी शुरू होगा 28 से. सो यस, एंड आखिरी में विंबलडन, जो कि टेनिस 29 जून से शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई तक चलने वाला है. तो यस, आपका जो ये महीना है ये भी सॉर्टेड है, काफी एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स मैचेस चल रहे हैं. लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का. हम कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन. हे मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते अख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए ते.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
5: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
4: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
5: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
4: Elite Bathroomware.
5: A reflection of you.
6: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
7: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
8: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
9: Kogan Mobile, true Aussie value.
8: Terms and conditions apply.
10: Non-stop Bollywood.
11: Hum.
10: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
10: इसके पीछे
11: हम।
10: TikTok.
13: Well, ये रही खबर टिकटॉक से. आपका स्वागत है सेगमेंट में. 19 जून 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम के उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने इंडिया में लगाई गई टेम्पररी बैन को चैलेंज किया था. कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास कानूनी अधिकार है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट और एग्जाम की इंटीग्रिटी बचाने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं. ये बेसिकली जब नीट का जो मेडिकल एग्जाम था उसमें लीक की वजह से हुआ है. इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को 16 जून से 22 जून तक ब्लॉक किया था क्योंकि आरोप था कि नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लीक पेपर्स और चीटिंग से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है. सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर ऐसे चैनल्स को कंट्रोल करना मुश्किल था और एग्जाम फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम बहुत ज्यादा जरूरी था. वैसे टेलीग्राम ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट भी किया है कि फ्री स्पीच और इन्फॉर्मेशन तक पहुंच के बाद अधिकार को नुकसान पहुंचा जाता है और कुछ लोगों की गलती की सजा काफ़ी अदर यूजर्स जो है जो जेन्युइन है उनको भी भुगतनी पड़ती है. लेकिन कोर्ट ने सरकार के फैसले को लीगल और रीजनेबल बताते हुए अपील रिजेक्ट कर दी है. क्या लगता है आपको ये जो बैन किया है इंडिया में? ऑफकोर्स आप यहाँ पे भी यूज़ करते ही होंगे टेलीग्राम, बट ये वहाँ पे भी है तो उस वजह से ऑफकोर्स यू नो इस तरह से बैन किया हुआ है उन्होंने. वैसे तो कल छूट चुका था ये, बट आप बताइए जो डिसीजन लिया था वहाँ की गवर्नमेंट ने सही लिया था या नहीं? What do you think?
10: दिल से दिल तक.
14: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: skúmžeri.
1: And that's all for today, guys. मजेदार था आज का दिन, आज की बातें, आज का समय और आज की कहानियां. और जो आपने बातें शेयर की हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. बस आप बने रहिए, अभी सैंडी जुड़ेगी थोड़ी देर में फॉर कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद रुजबुन का साथ देंगे द ड्राइव शो. बट मैं निकलता हूँ, आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: When you see them on the road, you suddenly remember you have wing mirrors. Suddenly orange doesn't mean speed up. Suddenly you don't need to check your phone at the lights. And you're suddenly checking your blind spots. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
3: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडिया फर्स्ट 2,000 crore फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
4: एक जबरदस्त कहानी है।
5: और टाइटल क्या है फिल्म का?
4: वेलकम टू द जंगल।
3: वेलकम टू द जंगल रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 26 जून। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
6: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000.
7: Better.
6: Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
8: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Around 1 in 3 whistleblowers of serious wrongdoing claim to have lost their jobs as a result. The Office of the Ombudsman survey also reveals 4 in 10 felt bullied or harassed after making a protected disclosure. Chief John Allen describes it as a wake-up call. Alternative Education wants better funding support for its ballooning system. An ERO report has found more than 8,000 12 to 16-year-olds switched from mainstream schools in the past decade. National Body Chair Joe Graham says the current model must be addressed.
10: We know that the numbers have increased over that time, but what hasn't increased is the resource and support for alternative options to be able to support these young people.
9: More heavy rain is on the way for the top of both islands. Orange warnings kick in tomorrow for parts of Bay of Plenty and Coromandel, while other areas are under watches. And John Law from Met Service says that's not all.
11: Bring some snow towards the higher parts of the South Island and some stronger winds for Wellington and Marlborough Sounds during Thursday and early Friday.
9: The family of Clive Davis is remembering him as a towering figure whose influence changed music forever. The record industry titan has died at the age of 94. Davis helped shape the careers of many household names, including Whitney Houston, Janis Joplin, Aretha Franklin, and Bruce Springsteen, to name a few. To football updates brought to you by Hisense, Norway has qualified for the round of 32 at the World Cup, beating Senegal 3-2. Earlier, wins for Argentina and France put the two heavyweight sides through. Auckland FC assistant coach Danny Hay will join former head coach Steve Corica in Japan. And Ben Stokes is England cricket captain again. And pace bowler Gus Atkinson is back for the third test against the Black Caps.
12: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इसमें टेम्परेचर बाहर का 16.4 डिग्री से और आज ओवरनाइट 13 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का क्लाउडी हो रहा है। हैवी रेन वॉच की वार्निंग है अभी। सनसेट वैसे आज का 5:13 पर।
8: The beat of Bollywood.
14: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
8: Coffee Break with Sandy.
13: 3:03 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है. वैसे लगे हाँ देख ही लेते हैं कि उधर फुटबॉल में भी क्या क्या हुआ है. सुबह उठ के अगर आपने अर्जेंटीना का मैच देखा, अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया, तो आपके लिए ट्रीट रही बिकॉज अनदर विन हुई अर्जेंटीना की. कह लो कि अनदर मेसी की विन हुई. सो दो गोल मेसी ने ही बनाए. एंड आज जो मैच था फ्रांस एंड इराक का, सो फ्रांस की जीत हुई 3-0 के साथ अगेंस्ट इराक. एंड नॉर्वे की जीत हुई 3-2 के साथ अगेंस्ट सेनेगल. सो काफ़ी ये तीनों बड़ी टीम्स एक्चुअली में आज खेल रही थी, अर्जेंटीना, नॉर्वे एंड फ्रांस. एंड काइंड ऑफ तीनों बड़ी टीम्स ने डोमिनेशन दिखाई. दो नॉर्वे एंड सेनेगल के बीच में काफ़ी फाइट हुई, 3-2 के साथ उनकी जीत हुई है.
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
5: Hello, bolo. Hello, dadaji.
7: Hello.
5: Are wow. Focus kar rahe hain. Very good.
15: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: At Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
5: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
6: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday, 4th of July. T's and C's apply.
7: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.

0: India's most wanted.
1: Gundi ghad dao ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
4: 23 June, 3:18 and guess what's happening here?
5: Hi, good afternoon, Rizbe.
4: Good afternoon, Sandy. Drive Show has begun already, has come early today.
5: Yeah, kaise ho tum?
4: मैं बढ़िया हूँ सैंडी, आप कैसे हो?
5: एकदम फर्स्ट क्लास. आज तुमने चेक शर्ट पहनी है, मतलब इट्स लाइक समय रैना का ट्रेंड ना, चेक.
4: अच्छा ऐसा है?
5: या
4: मैंने कभी नोट नहीं किया, ये इतना नोटिस नहीं किया. मैं उसके लेटेंट आने से पहले का ये शर्ट है, लेकिन
5: ओके
4: फेड भी हो गया इसलिए बहुत ज्यादा.
5: समय रैना का नया ट्रेंड है आज. इनफैक्ट विजय वाज टॉकिंग अबाउट समय रैना. आई सेड कि वैसे तो मुझे इतना समय रैना पसंद नहीं है बिकॉज लैंग्वेज एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने ये एपिसोड देखा.
4: अच्छा देखा उन्होंने भी?
5: उन्होंने देखा, उनको पसंद आया बिकॉज दिस इज एपिसोड आई थिंक फॉर एवरीवन.
4: अरे मेरा अभी ना एकदम ही लंबा ऐसा इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुआ मेरी मॉम के साथ, क्योंकि मेरी मॉम को मेरी मॉम ने भी बोला कि अरे मैंने देखा उसका ये वो, बट वो पर्पजली ऐसा कर रहा है क्या ये वो ऐसा. और उन्होंने कुछ इंस्टा पे रील वील देखी थी कि ट्रम्प का वो जो हुआ उसमें एक और कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है कुछ अराउंड दैट एपस्टीन फाइल्स को लेकर या कुछ.
5: अच्छा यार, लेकिन वो कॉन्टेस्ट पहले भी तो किसी और ने बोला था.
4: सो एनीवे तो माय मॉम वेंट ऑन एंड ऑन लाइक ऐसा. तो मैंने फिर बोला, मैंने बोला एक मिनट, आपने देखा क्या वो एपिसोड?
5: नहीं मैंने
4: बोला फिर कैसे बोल रहे हो, पहले देखो क्या चल रहा है. मैं और एक चीज ना जो मैंने रियलाइज की उनसे बात करते करते कि उनके जनरेशन में उनको न्यूज इन्फॉर्मेशन मिलती थी थ्रू द न्यूज पेपर
5: या टीवी पे बुलेटिन
4: या बुलेटिन, और वो न्यूज होती थी जहां पे उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है. इंस्टाग्राम पे दे कांट थिंक ऑफ इट एज न्यूज, लाइक दे कांट कंपेयर इट टू न्यूज बिकॉज
5: अब तो मीडिया में, अब तो न्यूज चैनल में भी नॉट रियली न्यूज न्यूज है.
4: एग्जैक्टली,
5: पंगा वो हो चुका है ना, इट्स एवरीवेयर.
4: बट मैंने बोला बेबी स्टेप्स लेता हूँ मैं, टेक बेबी स्टेप्स,
5: फर्स्ट स्टेप. या
4: मैंने उनको बोला कि देखो इंस्टाग्राम को आप ऐसा सोचो कि हर किसी के पास ओपिनियन है, हर किसी का अपना व्यू है, हर किसी का अपना थॉट है, और हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म है उसको जाहिर करने का. इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है.
5: तो तुमने आज एजुकेट किया अपने मम्मी को,
4: पकाया बोल सकते हो आप,
5: ऐसा अवेयरनेस की उनकी.
4: फिर मैंने उनको बोला कि अरे वैसे सॉरी, मैंने तो बोले नहीं नहीं मैं तो अपना काम कर रही थी, तू कुछ बोला था क्या? अच्छा ठीक है, बस ऐसे ही किया उन्होंने.
5: उनको आदत पड़ चुकी है उसमें सालों की.
4: आई थिंक सो, या बट एनीवे दिस इज व्हाट वाज माय रेंट फॉर द डे. यू नो हर किसी के जो चीज को कोई कह रहा है, इट डजंट मीन के वो ट्रूथ है या वो फैक्ट है.
5: और ये आजकल काफी लोग ऐसा फेस करते हैं कि आप जब देखते हो सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, वो 30-40 सेकंड डिसाइड नहीं करते कि पूरी की पूरी बात क्या होती है. सो मे बी सर्च मोर अबाउट इट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
4: या नहीं, नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
5: नहीं खुद को, खुद की आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी.
4: मैं तो खुद को भी कवर अप कर रहा हूँ भाई. मतलब देखो मैं जो बोलता हूँ, इट नीड नॉट बी 100% फैक्ट ट्रू, ये इट इज जस्ट माय ओपिनियन.
5: या 100%.
4: सो या क्या ही कर सकते हैं ना. एनीवे सैंडी, कॉफी ब्रेक में क्या चल रहा है यार? कोई ट्रेल वेल के बारे में कुछ बताने वाले हो आज की? नहीं,
5: कॉफी ब्रेक में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जो बच्चों के लिए अटेंड करना बिल्कुल फ्री है. तुमने यहाँ पे सिटी में विंटर लाइट्स देखी है?
4: अरे हाँ, ये अभी जो ऐसा मस्त लगा है ना टनल टाइप, ओह ब्यूटीफुल,
5: इट्स वेरी ब्यूटीफुल.
4: नहीं ले पाया मैं लेकिन
5: वो है एंड अभी माता रेखी के टाइम पे भी और काफी सारी इंस्टॉलेशन है यहाँ पे सिटी में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं.
4: मैं एक्चुअली सैटरडे को सिटी में था एओटी सेंटर के पास, और वहाँ पे ना वो लाइट्स तो लगे ही थे, बट दो बहुत ही प्रिटी डांसर्स डांस कर रहे थे ऐसा लंबा ऐसा स्कर्ट पहन के, पूरे लाइट वाला स्कर्ट.
5: ओह वाओ,
4: दैट वाज सो प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल.
5: अगर आप कभी सिटी की ओर आ रहे हैं तो यू नो विंटर लाइट्स थोड़ा आप एंजॉय कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस इंस्टॉलेशन ऑफ एलईडी लाइट्स.
4: अभी एक्चुअली थोड़े टाइम में मेरे को लग रहा है वो आइस रिंक भी लग जाएगा ना, फिर से
5: वो भी लग जाएगा. एंड ऑल्सो माता रेखी के टाइम पे बिकॉज अभी जून में ही, एंड जून में ही या इट्स अ टाइम शुरू हो जाएगी कुछ इंस्टॉलेशंस, तो उसकी भी काफी सारी डेकोरेशंस आप सिटी में देखने वाले हैं.
4: या सिटी इज ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, बट इट नीड्स योर सपोर्ट. दिस इज नॉट एन एड.

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जोगी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Coffee break aapke liye jari hai with Sandy right now. I am coexisting.
1: Coexisting. वैसे आज ट्रेंड मेकर्स में हम यश जौहर को सेलिब्रेट करने वाले हैं. फादर ऑफ करण जौहर एंड कह सकते हैं जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत की.
0: राइट, तो आज उनका बर्थडे.
1: नो सो दिस वीक इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ यश जौहर.
0: ओके,
1: सो क्या है कि इस वीक में बहुत कुछ है तो लाइक इसलिए वी हैव जस्ट डिवाइडेड सम डेज.
0: हमने करण जौहर का बर्थडे सेलिब्रेट किया ना इस महीने. हाँ, राइट राइट.
1: सो या यश जौहर जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस शुरू किया, ही डिड सम मूवीज, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही वाज अ प्रोड्यूसर, बहुत सारी हिट मूवीज प्रोड्यूस की. आज जब आप ट्रेंड मेकर सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हम शाहरुख खान को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, बिकॉज उनकी 80s की मूवी के अलावा जो 90s एंड 2000s की कुछ मूवी है वो उसमें सबसे शाहरुख खान ही है. सो यू गोना लिसन सम सॉन्ग्स लाइक डुप्लीकेट का गाना हो गया, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आप सुनने वाले हैं आज.
0: So, Trendmakers में. Today you could also call it Shahrukh Khan special.
1: Shahrukh Khan special, except one or two songs, but let's see.
0: Okay, अभी के लिए straight from the heart में it is a Shahrukh Khan special song. नहीं, sorry, it's not Shahrukh Khan special song. मेरे को लगा गेरुआ है, लेकिन गेरुआ नहीं, गहरा हुआ है.
1: गहरा हुआ.
0: Enjoy कीजिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Weather का हाल आज काफी कमाल, वैसे थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है. Mostly clouded रहेगा, लेकिन isolated showers हो सकते हैं इधर उधर. North easterlies का साथ रहेगा. Feels like 17 degrees. Overnight temperature is going to be not that low, 13 degrees तक का रहेगा. 5:13 पे होगा सनसेट.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
3: चार बजकर दो मिनट यू आर लिसनिंग टू द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे. आज है 23 जून. हाय, गुड आफ्टरनून.
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, कैसे हो तुम?
3: बहुत ही बढ़िया सैंडी, हाउ आर यू डूइंग?
4: गुड गुड. तुम्हारा डे आज का कैसा जा रहा है सो फार?
3: बढ़िया चल रहा है यार, कांट कंप्लेन. आज इट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट इवनिंग.
4: इंपॉर्टेंट इवनिंग?
3: हाँ, 23 जून. नहीं वैसा ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद इंडोर क्रिकेट खेलने वाला हूँ.
4: ओह, इसलिए.
3: सो या, और पिछले हफ्ते मेरा बहुत खास दोस्त इंजर हो गया.
4: तुम्हें जगह मिल गई?
3: तो आई एम फीलिंग. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है.
4: Okay.
3: लेकिन वो ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त इंजर होता है तो आपको भी डर बैठ जाता है ना कि अरे बाप रे, अभी बच के रहना पड़ेगा. लेकिन मैं जा रहा हूँ सो दैट आई डोंट गेट दैट फियर इन मी.
4: ओ, फियर को निकालने जा रहे हो तो.
3: डर के आगे जीत है.
4: अरे वाह.
3: तो अभी या तो इस पर उस पर, ऐसा कुछ भी हो सकता है. या तो मैं इंजर होके आऊंगा.
4: ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इंजर होके आऊंगा?
3: क्योंकि
4: लड़ाई है क्या?
3: वो ऐसा ये हो गया. अरे लड़ाई होती है वो सैंडी. आप हल्के में लेते हो इंडोर क्रिकेट. फॉर दोज पीपल हु प्ले इंडोर स्पोर्ट्स.
4: मुझे एक्चुअली में जानना है आप में से कितने हैं जो इंडोर क्रिकेट खेलते हैं. So, अगर आप इंडोर क्रिकेट
3: बोल रहे हो,
4: हाँ स्पेसिफिकली इंडोर क्रिकेट अगर आप खेलते हैं यहाँ पे तो मैसेज करके बताओ 5599 पर. विल बी इंटरेस्टिंग टू नो. यू नेवर नो, आने वाले दिनों में एक मैच ही अरेंज करें हम हमारे लिसनर्स के साथ.
3: ओह या, एक बार किया भी था ना आई थिंक.
4: हमने एक बार किया है. यस,
3: एक बार किया था.
4: हाँ, वाज अ गुड वन. अगर ऐसा कुछ होता है तो
3: या.
4: तो या, कितने लोग हैं जो इंडोर क्रिकेट खेलते हैं एंड जो रिलेट कर सकते हैं रुज़बे के चोट लगने की बात पे?
3: अरे बहुत खतरनाक होता है इंडोर क्रिकेट सैंडी. मजा नहीं कर रहा हूं.
4: कंट्रोल्ड होता है वो.
3: कंट्रोल नहीं होता है.
4: हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब कि बंद होते हैं तो शायद ज्यादा चांसेस है लगने के.
3: ज्यादा चांस, क्योंकि पास में रहते हो ना बहुत खड़े.
4: yeah.
3: और वो बॉल भी काफी हैवी होता है, मतलब थोड़ा लगता है वो बॉल. इसलिए मैं हाथ डालता ही नहीं बीच में.
4: ओपन क्रिकेट में भी हैवी होता है.
3: बट ओपन क्रिकेट में आप भागने के लिए बहुत ज्यादा रूम होता है आपके पास. यहाँ पे आप जेल में हो, ऐसे नेट्स के बीच में फंसे हो तो कितना ही भागोगे?
4: भी भाग जाओगे.
3: वो नेट को लग के भी आपके ऊपर आता है
4: बॉल. चौके की जगह यही बाउंड्री के बाहर भाग जाएगा. इट्स ओके. लगने से अच्छा है चार दे दो.
3: हाँ वही. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि चार देने के बाद भी वो तुम्हें फिर भी लग सकता है क्योंकि बाउंस होके है. You have to be...
4: क्रिकेट खेले जाते हो या WWE रुज़बे?
3: मैं बॉल से बचने के लिए जाता हूँ. कुछ भी वो बॉल ना लगे मुझे. बढ़िया. एनीवे,
4: ये अच्छा फील्डर नहीं है, इतना मेरे को पता चल गया.
3: मैं अच्छा प्लेयर ही नहीं हूँ.
4: बच रहे हो तुम तो, बहुत कुछ छोड़ रहे हो यार. वो रन्स भी ले रहे होगे, लग ना जाए मुझे. मैं भागता हूँ, तुम अच्छे रनर होगे.
3: हाँ मैं भागता अच्छा हूँ.
4: ये
3: मैं बहुत भागा हूँ ना.
4: अब तो सेटल्ड हो.
3: लेकिन पहले सम हैबिट्स डाई हार्ड.
4: या

0: की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
1: So what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
1: Big deal, dude.
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
1: ओ मैन,
2: हो मैनू नहीं चाहिदा कोई राजा।
1: ओ चल झूठी।
2: नाराजे दी यारी, तेरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।
3: हाय चुकले रब्बा मैनू।

0: पसंद नहीं आए।
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आज मैं भूल ही गया था कि आज ट्यूजडे है और ट्यूजडे का मतलब ये होता है सैंडी कि आज
2: कैरेक्टर गेस।
1: आज किसका टर्न है यार कैरेक्टर गेस?
3: Your turn.
1: नहीं नहीं सैंडी आपका टर्न है यार।
3: मेरा हो गया पिछली बार धर्मेंद्र। सो कैरेक्टर गेस में क्या होता है, हम दोनों में से एक पर्सन एक कैरेक्टर के हिंट देता है, पांच हिंट देते हैं, पांच सवाल आपके पास होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मैंने कुछ हिंट दिए थे एंड कि ये जो पर्सन है इसकी यू नो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जाना गया है ये पर्सन। तो रुजबे ने आगे से पांच सवाल पूछे आपकी हेल्प से, आपको यहाँ पे कॉल करना होता है
1: 0800
3: या तो इनफैक्ट आज तक का रिकॉर्ड है रुजबे जिसके बारे में भी हमने सोचा होता है, टेक्स्ट मैसेजेस पहले ही आ जाते हैं।
1: दैट्स राइट।
3: सो देखा जाए तो लिसनर्स हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: आज कुछ अलग ही क्रेजी लेकर आता हूँ मैं नया।
3: तो आज रुजबे की टर्न है, रुजबे कुछ हिंट आपको देने वाला है 5 बजे के बाद, जहाँ पे आपको और मुझे, तो रुजबे ने ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है लाइक आई विल ब्रिंग समथिंग क्रेजी डिफरेंट। तो लेट्स सी क्या वो लेके आता है और आज हम मिलके गेस करेंगे कि रुजबे के माइंड में क्या है।
1: अच्छा ओके लेट्स गिव इट अ शॉट।
3: या नॉट नाउ,
1: थोड़े टाइम में ना,
3: 5 बजे के बाद।
1: 5 बजे के बाद वील गिव इट अ शॉट। बट या थोड़ी देर में आपके साथ बात करेंगे हम व्हाट इज हैपनिंग अराउंड टाउन, इसके डिटेल्स। वीकेंड पे वेदर इज लुकिंग क्वाइट नाइस बट कल से बहुत खराब होने वाला है फ्राइडे तक।
3: आज रात से इनफैक्ट
1: आज
3: हैवी रेन वार्निंग भी है बट ऐसा बाहर देख के लग नहीं रहा है कि ऐसी वार्निंग रहेगी बट या आज है वार्निंग ऐसी वाली।
1: बट टेम्परेचर आज इज गोइंग टू बी क्वाइट वार्म टुनाइट एक्चुअली, इट्स गोइंग टू बी वेरी मगी एंड वार्म। 13 डिग्रीज का हाई रहेगा आज, मतलब लो रहेगा आज का।
3: या
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
7: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
8: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
11: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manikau and Pukekohe, where dreams begin.
12: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandesh bheje ja sakte hain. Magar radio pe apne tradition ki khushbu bhejni ho to nahi bhej sakte na. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
13: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
14: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Bollywood's most wanted.
16: Gundi khad dao, ya seedha andar aao.
17: Main laun apna A game.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: You're listening to Hump Link, Bollywood's biggest hits. Chartbusters में एक मस्ता गाना आपको हम सुनाएंगे, लेकिन क्या चल रहा है हमारे सुपर सिटी में, इसके अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं।
1: न्यूजीलैंड में एक ग्रोइंग कंसर्न है रुजबे, सो ऑर्गेनाइजेशंस को बोला जा रहा है टू अर्जेंटली प्रिपेयर फॉर सिग्निफिकेंट राइज इन रिस्क लिंक टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बिकॉज AI जो है ये डीपली एम्बेडेड हो चुका है वर्क प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, एवरीवेयर। वी कैन सी दिस, हमारी एवरीडे लाइफ में AI इज इन्वॉल्व्ड राइट नाउ। एंड वेल, इनका ये कहना है कि जो AI है रिलेटेड रिस्क जो है इज नो लॉन्गर जस्ट फ्यूचर स्पेकुलेशन, दे आर ऑलरेडी शोइंग अप इन द रियल वर्ल्ड सिस्टम लाइक बिजनेस ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा हैंडलिंग। सो AI रिलेटेड साइबर क्राइम जो है ये बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, ये भी हो सकते हैं चांसेस,
0: हो सकता है, क्योंकि क्या हो गया है काफी लोग ना AI को, मतलब सही है अब अडॉप्ट कर रही है, लेकिन उसके जो साइबर इश्यूज है उसको अब तक ज्यादा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में देखा नहीं है लोगों ने। आपको पता है आज मैंने ना इंटरेस्टिंगली मैंने जेमिनी को ऐसे ही पूछा, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप उसका जो आंसर सुनोगे ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई
1: खुश हुए कि डिसअपॉइंट हुए,
0: नहीं मैं बहुत खुश हुआ, मतलब मैं खुश ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने, मैंने जो भी उसको अब तक पूछा है उसने वो सब याद रखा है।
1: पूछो ना, अभी पूछो।
0: नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको आंसर, उसने आंसर जो भेजा है मैं पढ़ा तो, लेकिन जो मैं उसको नॉर्मल पूछा है ना, बात की है मैंने उसके साथ, उसको वो सब याद है, और मेरी बात उससे अभी ऑलमोस्ट 6 महीने पहले वाली बात है।
1: हाँ, तो वो सब याद होता
0: है, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है, मतलब वो ऐसा, क्योंकि अब हमने बात
1: नहीं भूल गई है, जे भी नहीं इस फीमेल तभी नहीं भूली है वो।
0: अच्छा, ऐसा बोलते हो आप।
1: Just joking.
0: भूल गए हैं, दे दें।
1: हाँ। Around 1 in 4 organizations जो है इस समय पर they identify improper AI use by staff as a major risk. Yeah, इस आर्टिकल में लिखा है shadow AI is a major issue. Sukeet Himes ki employees using AI tools in unapproved ways. For example, copying sensitive data into public AI tools. आप भूल जाते हो कई बार कि आपकी ईमेल में जो मे बी एक sensitive information होगी, अगर आप वो AI टूल में डाल रहे हो उसको कुछ रिफाइन करने के लिए, टू डू समथिंग अबाउट इट फॉर योर प्रेजेंटेशन ऑन anything, तो वो एक्चुअली में गलत है। तो आप वो वहाँ पे बेसिकली आप वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो,
0: तो फिर उसका मतलब ये है कि जब हम हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे डालते हैं AI में, तो वो भी हमारी चीजें हम पर्सनल वो डाल रहे हैं, मतलब
1: वो तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आल्सो ना। तो हमारी तुम्हारी ईमेल, तुम बैंक में काम करते हो, तुम्हारे ईमेल्स में कई बार बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती होंगी,
0: हमारा तो है ही नहीं अलाउड भाई ऐसा कुछ।
1: या सो अगर तुम वहां पे AI में अपनी प्रेजेंटेशन जो तुमने कहीं पे बनानी है वो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो, तो इट्स अ रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो यूजिंग AI विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट ये बहुत हो रहा है, और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज बाईपास हो रही है।
0: या 100% अग्री ऑन दैट, बट मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हम हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कुछ होता है अपना, जैसे कि अगर किसी को नहीं किसी को अगर कोई फेसबुक पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो हम काफी बार AI से वो सब इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वहां पे उसको बोलते हैं कि इसको रिवर्ड कर और हमको दे, और फिर हम उसको डाल के चिपकाते हैं। तो ऐसे करने में भी हमारा कितना इन्फॉर्मेशन जा रहा है, मतलब AI के पास
1: 100% जा रहा है, वी आर फीडिंग देम। बट अगेन उसमें हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर हम एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए वहां पे दे रहे हैं, इट्स स्टिल नॉट रिस्की, बिकॉज वो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही जा रही है इन्फॉर्मेशन। यू नो जैसे लिंक्डइन, इफ इट्स योर लिंक्डइन इज ओपन टू द पब्लिक, जो कि होता है हमारा,
0: सो इज इट एक्चुअली वर्थ इट टू पुट थिंग्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म,
1: द रिस्क विल ऑलवेज रिमेन, रिस्क हमेशा रहेगा। तुम अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालते हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे?
0: नहीं।
1: हाँ, तो बस वो चीज है।
0: बट आई एम टेलिंग यू, यू ट्रीट योरसेल्फ एज कंपनी ना। I'm not saying you talk, if you treat yourself as company and you're putting your confidential information or your personal information on.
1: Yeah, even अगर मेरा किसी के साथ issue हुआ है, वो मैं अगर AI पे डाल रही हूँ कि आप मुझे इसमें क्या suggest करते हो, मुझे क्या करना चाहिए, I'm giving out my details to the AI. That is a risk.
0: वही तो।
1: वो रिस्क है 100%, बिकॉज वो आप जहाँ वहाँ पे दे रहे हो वो हिस्ट्री डिलीट नहीं है,
0: और इमेजिन करो

0: डस्ट एंड एयर रेगुलेशन जो है काफी जगह पे लैक कर रहा है काफी ऑर्गेनाइजेशन में. सो मे बी इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी यू नीड टू वर्क ऑन सम स्ट्रक्चर कि क्या रेगुलेशंस होने चाहिए एआई के यूज में.
1: वो भी एआई से ही पूछना.
0: बाय द वे यहाँ की कंपनी में जो एआई हमें मिला है ना उसमें आप हिस्ट्री डिलीट नहीं कर सकते. देयर इज नो ऑप्शन टू डिलीट द हिस्ट्री. सो व्हाटएवर यू आर सर्चिंग इट्स गॉन.
1: ओह
0: या सो ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने करके रखा है.
1: ओके संभाल के सैंडी कुछ भी मत सर्च करो यार.
0: या

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ मैं about a very important topic और इसमें आपके phone calls आने बहुत जरूरी है because this is something that I think each one of us has some opinions about और हम सबको उसका impact होता है and this subject is tax. क्योंकि काफ़ी पार्टीज़ ने अपने टैक्सेशन को लेकर अपने माइंडसेट्स शेयर किए हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं लेबर पार्टी, ग्रीन्स बात कर रही है अबाउट एक जो 10 मिलियन के ज़्यादा उनके जिनके नेट एसेट्स हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा 2.5% टैक्स. सो ऐसे करके मल्टीपल टैक्सेशन में चेंजेस की बात हो रही है
2: बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज.
1: बट आपका क्या टेक है इसके ऊपर? व्हाट डू यू थिंक? जो टैक्स आप पे कर रहे हो करंटली, डू यू थिंक दैट इज गुड इनफ, या आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं कुछ बेटर होना चाहिए हमारे लिए?
2: बेटर एज इन, मुझे तो लगता है कि
1: कम टैक्स होना चाहिए.
2: अभी कितना है, 29% समथिंग कुछ ऐसा होता है ना?
1: नहीं, मतलब स्लैब्स होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं.
2: हाँ, तो उस हिसाब से मुझे भी वही लगता
1: है. 8, 30, 32 जो भी
2: है. अकॉर्डिंग टू पे पैकेज ना, सो ये टोटली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पे पैकेज कि आपका टैक्स ब्रैकेट क्या है. सो उसके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल हाईएस्ट वाले हैं उनका जो टैक्स का है और जो उससे थोड़े कम वाले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है.
1: नहीं, काफ़ी डिफरेंस है. 39% है हाईएस्ट, फिर 33% है.
2: ओ, 39 के बाद 33 है
1: जी.
2: ओके,
1: सो बेसिकली अभी के लिए अगर आप 180,000 से ज़्यादा कमाते हो एनुअली तो 39% टैक्स पे करना पड़ता है. अगर आप 178,000 से लेकर 180,000 कमाते हो तो 33% टैक्स होता है. एंड 53 से लेकर 78 अराउंड तो 30% टैक्स होता है. सो
2: स्टिल न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा टैक्स है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़. तो वो काफ़ी लोगों की ये कंप्लेन भी रहती है. बट देन ये जो टैक्स मनी कहाँ पे यूज़ भी हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा
1: मैटर करता है. मुझे तो लगता है कि काफ़ी सही जगह पे यूज़ हो रही है. बट बस एक ही प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये लगता है मुझे कि बिजनेस को टैक्स 28% पे होता है, वेयर एज अगर इंडिविजुअल्स अगर कमा रहे हैं तो उनका हायर रेट पे टैक्स जाता है. सो दैट आई थिंक देयर समथिंग नीड्स टू बी वर्क्ड अराउंड.
2: तो कोई अपना व्यू यहाँ पे शेयर करना चाहता है इसके बारे में तो फ्री टू कॉल 0800 हम इज अ नंबर.
1: हेलो
3: हेलो कैंडी
2: जी,
3: टैक्स पे कोई फर्क नहीं होगा?
2: टैक्स पे क्या होगा?
1: कोई फर्क नहीं होगा.
2: ओके,
3: अगर वो टैक्स कम किया है जो बाकी लगे है कराने के लिए वो तो अपने बहुत चलिए करते है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो दूसरा टैक्स जोड़ देंगे.
1: अच्छा, तो ये सिर्फ बोलने की बात है आप बोलते हो,
2: तो बाकी सारी चीजें आपका कहने का मतलब है कि टैक्स हो जाते हैं जिसके कारण बात वही आ जाती है.
3: बोलने का बात नहीं है, वो ऐसे ही होता रहे, ऐसे फ्यूल टैक्स लग जाता है कभी, रोड टैक्स कभी, ये टैक्स लग जाता है कभी, वो टैक्स आ जाता है. तो टैक्स एक टैक्स काटेंगे दूसरे गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट जो निकलता है उसके पास जमा पैसा है ही नहीं, वो टैक्स में से ला के तब बजट बनाता है.
2: एक्चुअली मेक सेंस,
3: पैसा पहले लाता है कहीं से, लाता है फाइन रोड टैक्स सब बटोर के तब वो बजट बनाता है ना.
2: या सो कोई
3: सरकार के पास खजाना,
2: और ये हमने रिसेंट देखा है कि कुछ के अगर टैक्स कम हुआ है तो कुछ चीजों के टैक्स हाई भी हुए हैं, और ये ट्रेंड 2024 में भी था.
3: वो बैलेंस करता है सबके साथ में ना.
1: सही,
3: एक बगल कम करेगा दूसरा बगल जोड़ देंगे.
1: कहीं ना कहीं से तो वसूल करना ही है ना, क्योंकि खर्चे बहुत है. एक तो डेट भी बहुत ज्यादा है.
3: मान लो जीएसटी, अगर आप एक पैकेट कोई भी चीज एक ब्रेड खरीदे हैं तो उसमें जीएसटी है. अगर वही ब्रेड ले जाके बेचेंगे आप दुकान में तो फिर जीएसटी जोड़ देंगे.
1: दैट्स राइट, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट पे पे है.
3: अगर 10 दफे वो ब्रेड बिका तो 10 दफे जीएसटी जुड़ाएगा उस पर.
2: या 100%.
1: थैंक यू जय भाई, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए. आपका भी स्वागत है. हाय
4: हाय गुड इवनिंग.
1: हाय
2: या गुड इवनिंग,
1: बोलिए क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम इमरान है.
1: बोलिए.
4: काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था क्योंकि आज ही मेरे वाइफ को आईआरडी असेसमेंट का मेल आया है फॉर व्हिच we have to pay extra tax again, which was not calculated properly or whatsoever.
2: Mm-hmm.
4: So tax definitely not justified considering jitna hamara tax compliance rehta hai, jitne log tax bharte hain yahan pe. So already proposal, if you see from the Greens party, right, they are proposing to tax 45% for people earning 160k and above. Isse acha pura salary le lo na, put us on benefit.
1: Haan, 45%
2: 45% already logo ko 29-30 bahut lagta hai.
4: Yeah, the problem in New Zealand, I thoda sa data points bolunga jitna main samajhta hu, because
2: Jee.
4: Our economy growth is so stagnant and always in negative. So government first paisa hai nahi that they can give us freebies or tax benefits and whatnot, right? We are always in a borrowing mode, and we are always in a deficit mode, right? Hamara already deficit is close to $100 billion, I believe, and or higher, or 180 billion, if I know. I wouldn't be surprised if our tax bracket increases in near term, because we are always in negative in terms of our economy growth or whatsoever. So there are no new avenues of growth in the economy, right?
2: Yeah, and cost of living jo hai wo badhti ja rahi hai, and it's baaki sab cheeze nahi ho rahi isse.
4: Jitna paisa aa raha hai tax mein hi khelna padega, jitna coverage kar sakte hain, aur fir IRD lag jayegi piche agar tax nahi mil raha, because they don't have anything else to play around with. Aur ministers apna foreign trip karte rahenge, so you have to just
1: लीमो को होल्ड पे रख के
4: अपना फॉरेन ट्रिप्स मारते रहेंगे, और फिर कोई कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में 30 million प्लस लॉस होता रहेगा. तो वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू डिलिजेंटली प्लेइंग टैक्स, और हमारे हाथ में कुछ है नहीं वैसे, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय, आई डोंट कंट्रोल मच ऑफ इट एज लॉन्ग एज इट्स ऑटो डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, राइट? सो या नथिंग वेरी मच वी कैन डू अनलेस देर इज कोई कुएं का खदान, मतलब ऑयल का खदान मिल जाए, या फिर वी फाइंड
1: माइनिंग अलाउड नहीं है ना.
4: या
2: बट गुड वन इमरान,
4: लैंड फिश. या
2: बट जीएसटी वाला पॉइंट भी आपने सही बोला, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी जीएसटी लग के ही हमें वो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है वो एक्सपेंसिव भी लगती है चीजें. सो दैट माइट बी द अनदर फैक्टर, बिकॉज मैंने एक वीडियो देखा है, वहां पे एक अमेरिकन है जो कि अभी न्यूजीलैंड में आके रह रहा है, तो वो अमेरिकन ने अपने डिफरेंट व्यूज बताए हैं. उसने बोला है कि वन थिंग ही वाज शॉक्ड अबाउट न्यूजीलैंड इज कि अगर आप वहां पे लिखा है कि $10 की चीज है, तो आपको $10 ही दे रहे हो, उसके ज्यादा नहीं दे रहे हो. व्हाइल इन अमेरिका लाइक
4: यू हैव टू पे अदर टैक्सेस. या सॉरी इफ आई कैन जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट. फनी थिंग इज इफ यू डिसाइड फॉर वोटिंग फॉर अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, एन एंटायर गवर्नमेंट और अ पार्टी इज एक्चुअली प्रपोजिंग to come in power based on one small lolly like aapka travel hum $20 pe cap kar denge. So they are basing their entire what do you say, their party's the campaign on these kind of small bits and pieces which may make an impact but not to a larger extent. Because paisa hai nahi na, so they can't say ki aapka hum 30% se 25 kar denge. And so they just play around with the same budget which is always in negative. And we just have to make up our mind whether that $20 travel makes sense or the KiwiSaver default makes more sense for 6% contribution, right?
2: 100%.
4: So you vote for any, but government ke paas paisa hai nahi aapke liye kuch karegi. They have to play around with the same money. So you don't have anything in coming in the near term, right? That will really benefit you.
1: एंड ऑल्सो आई थिंक दी अवेयरनेस अराउंड कौन सी पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड कर रही है, आई थिंक उसका भी एक जेनरिक अवेयरनेस काफी कम है ना.
2: बिफोर वोटिंग आई थिंक एवरीवन शुड नो कि हर एक पार्टी का क्या क्या, वो कहते हैं ना, मोटिव क्या है, मैनिफेस्टो क्या है उनका, वो हर किसी को पता होना चाहिए.
1: आप इतना काम दे दोगे ना लोगों को, पहले ही उनको वोट करना पसंद नहीं है, ऊपर से अभी आप बोल रहे हो कि और काम करो.
2: अरे
1: वो और नहीं वोट
2: करेंगे के लिए ना,
1: वही, लेकिन नहीं समझ
2: सही पर्सन को वो करे जिसके वो उनको वो सही लगता है. जो
1: क्या लगता है आपको इमरान, लोग इतना एफर्ट डालेंगे वोट करने के लिए?
4: नहीं, आई मीन टू स्टार्ट ऑफ आई थॉट दैट इट्स अ वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी एंड योर वोट रियली मैटर्स, बट देन तब सूट पहने हुए है, बट डाउन द लाइन एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सेम टर्म, राइट? आप देसी भाषा में देखो तो वही चोरी चकारी चल रही है, बट इन अ पॉलिश्ड वे. सो
2: इन अ पॉलिश्ड वे, या वाइट कॉलर.
1: या ऑसम, थैंक्स सो मच इमरान. या थैंक्स फॉर
2: टाइम. थैंक यू इमरान.
4: या थैंक यू.
1: All right, so now it's time कि हम आपके लिए straight from the heart लेकर आए. Oh no, मेरे को आज character के बारे में भी ढूंढना है क्योंकि आज character guess हम खेलने वाले हैं. Today is Tuesday.
2: It is Tuesday and गाना सुनेगा and message करके यहाँ पे बताइए 5599 पर कि would you like to have a talk back show anytime on hum regarding elections talk? Would you like to have one talk back show जहाँ पे talk back आपके आपके calls भी आ रही है, मतलब यहाँ पे टॉक बैक शो हो रहा है
1: प्रॉपर. Would you like a talk back show with Ruzbe hosting it? This is the question you need to ask.
2: हाँ, उसके लिए चलो होस्ट के बाद में तुम भी, मतलब वो तो बात अलग है, लेकिन पहले इंटरेस्ट तो आने दो उनकी ओर से कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं.
1: ऑडिशन देना पड़ेगा क्या हमको?
2: कि इलेक्शंस के लिए यहाँ पे टॉक बैक शो कितने लोग सुनना चाहते हैं यहाँ पे.
1: हाँ, और कब सुनना चाहते हो वो भी लिखकर
2: भेजो. 5599 इज द नंबर.
1: ऐसा मत बोलो ड्राइव शो के बदले टॉक बैक शो करो इलेक्शन वाला, ये बहुत.
2: नहीं, ड्राइव शो में नहीं, अलग.

0: की पार्टी खत्म है, चलो।
1: Accurate traffic.
2: Denza Premium Plug-in Hybrid SUVs.
3: Cloudy for Auckland overnight, a few showers and a low of 13 degrees. The northern, pretty good but heavy from the Oniwa Road interchange through to AUT. The northwestern, slow from the city to the Te Atatū off-ramp. On the southern, it's heavy in both directions between Sylvia Park and Green Lane. The southwestern is slow east from Puhinui Road to the southern and west from Massey Road to Onehunga.
2: Visit Denza Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
4: Want to go halves with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
5: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand, let's get connected.
6: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू, जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
7: JB Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5pm with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday, 5 to 9pm. JB, you've done it again.
8: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
9: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
10: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
11: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day, especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
12: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. A 41,000 strong petition is calling retirement village laws unfair. A resident who leaves is entitled to a significant refund through licensing fees, but the process has no time limit. Consumer New Zealand Chief Executive John Duffy says it should be capped at 3 months so the elderly don't go without.
14: Oftentimes people are leaving a retirement village because they need to advance to higher levels of care, and that's the exact point in time when they really need financial security.
13: There are calls for sustainable funding to employ proper teachers outside of mainstream schools. An Aero report has found fewer than half of teachers in alternative education are qualified, despite student numbers doubling. National Body Chair Joe Graham says it's been a long-standing issue.
15: We are willing to have teachers in, but we just can't afford it. And we get funded year by year. There needs to be some sustainability, or we need to have continued funding.
13: Council buildings are among those impacted by a series of bomb threats today. Tauranga City Council evacuated its office on Devonport Road, and Rotorua Lakes Council has closed its civic centre for the rest of the day. And Hill Morton High School in Christchurch has had to shut for 2 days after rodents damaged a fibre cable connection. The school's Wi-Fi has been taken out, along with the student management system, phones and servers. To football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, the star strikers have shone today. Lionel Messi, Kylian Mbappe and Erling Haaland all scored twice as their countries qualified for the round of 32 with a match to spare. Messi did show he was human. He missed a penalty. And the Warriors squad to play the Dolphins this weekend is due out in an hour. How will coach Andrew Webster deal with the loss of star forward Jackson Ford?
16: Sports News.
12: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
12: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: आज शाम से रात से बारिश शुरू हो जाएगी और कल परसों तरसों फ्राइडे तक ढेर सारी बारिश होने वाली है. सैटरडे संडे और मंडे मस्त ब्राइट ब्यूटीफुल सनी अब तक के लिए दिखा रहा है. आज सनसेट होगा 5:13 पे. द सन स्टिल आउट फील्स लाइक 16 degrees राइट नाउ. ओवरनाइट टेम्परेचर बी एज लो एज 13.
18: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
19: Power Drive at 5.
12: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
20: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
17: 5:03 हुए हैं. आप सुन रहे ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे. हाय सैंडी, गुड इवनिंग.
21: अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. एंड आज इस आवर में आपके साथ हम गेम खेलने वाले हैं थोड़ी देर में, जिसका नाम है करेक्टर गेस. करेक्टर गेस में रुस्बे हमें हिंट देने वाला है. ही विल हैव टोटल 5 hints और हमारे पास 5 सवाल होंगे आपके और मेरे पास. ओके गाइज, हमें साथ में मिलकर गेस करना है किसके बारे में रुस्बे ने सोच के रखा है, और रुस्बे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकता है. सो 5 hint वो देगा, 5 सवाल हम पूछेंगे कि किस वे से सवाल, एक हिंट के बाद एक सवाल, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब टोटली डिपेंड करता है हमारे फ्लो के ऊपर, हम कितने हिंट सुनना चाहते हैं उसके बाद सवाल पूछें.
17: या सो मैंने सोचा है एक कैरेक्टर.
21: तुमने ऑलरेडी सोच के रखा है.
17: सोचा है लेकिन मैं हिंट सभी नहीं दूंगा, मैं गाना सुनाऊंगा.
21: गाना सुनते हैं उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ द गेम.
17: बट उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा.
21: ओके या,
17: और वो है जो एक मैसेज आया निस्कॉल का. हमने बात की थी कि आपको पॉलिटिकल शो, टॉकबैक शो चाहिए क्या, और निस्कॉल के साथ में हूँ.
21: उसने लिखा, यस अ पॉलिटिकल शो वुड बी अ ग्रेट विद अ नॉलेजेबल होस्ट रुस्बे.
17: या नॉलेजेबल होस्ट
21: रुस्बे.
17: यस, वेरी नाइस.
21: स्पेलिंग सही नहीं लिखी उन्होंने, बाकी सब उन्होंने अपनी फीलिंग. आज पहली बार रुस्बे को बुरा नहीं लग रहा है
17: स्पेलिंग
21: पे.
17: स्पेलिंग चलेगा.
21: तो हमने सवाल पूछा था लास्ट आवर में गाइस, इफ यू मिस्ड इट, कि क्या आप एक टॉकबैक शो फॉर द टाइमिंग सुना चाहेंगे रिगार्डिंग पॉलिटिक्स. मतलब बिकॉज इलेक्शन ईयर है ना, सो इलेक्शन तक एक क्या आप टॉकबैक शो सुना चाहेंगे जिसमें यू कैन एक्चुअली कॉल एंड शेयर योर व्यूज, बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, डिबेट्स होंगी, ये सब चीजें एक्चुअली में
17: आई थिंक.
21: और ये ड्राइव शो में नहीं, ना ही ब्रेकफास्ट शो में, मतलब नॉट इन एनी अदर शो, बट एक डिफरेंट सेगमेंट होगा इसके लिए, एक डिफरेंट शो होगा, डिफरेंट टाइमिंग रहेगा उसके लिए.
17: राइट और आप हमें बताइए कि कब आपको लगता है कि ये हम मतलब आपको चाहिए भी कि नहीं. और मैं
21: पहले तो हमें वही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना है कि आर यू इंटरेस्टेड, बिकॉज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं
17: तो हम मेहनत करें,
21: तो हम मेहनत करें ना वो आपके लिए लेके आने के लिए.
17: बट मुझे ऐसा लगता है सैंडी के हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन एटलीस्ट प्रोवाइड करें अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, क्या चेंजेस होने वाले हैं. क्योंकि काफी बार क्या हो रहा है मालूम है, वोटिंग रेट बहुत कम होता है.
21: Yes.
17: और वो कम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है.
21: इन्फॉर्म्ड नहीं है, और स्पेशली हमारी जो नई जनरेशन है, मुझे लगता है जो हमारी नई जनरेशन है उनको काफ़ी बार चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है. उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ट्रेंड को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज में जो नई जनरेशन हैं ये बहुत नॉलेज रख रही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और सवाल पूछ रही है.
17: Gen Z's are taking over the world.
21: Yeah, so
17: इसलिए
21: why not in
17: तो है भी नहीं Gen Z.
21: Yeah, I mean why not in New Zealand? सवाल ये है कि आप आपके बच्चे, इनको भी नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर एक साल में इलेक्शन ईयर है तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. क्योंकि बाद में हम ब्लेम नहीं कर सकते ना कि ये गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया यार, ये तो ये कर रहे हैं. तो अभी हमारे हाथ में होता है. बट टू स्टार्ट विद, आप क्या टॉकबैक शो सुनना चाहते हैं यहाँ पे हम पे या फिर नहीं, पहले तो हमें वोटिंग चाहिए.
17: लाइक डू यू वांट टू बी मोर अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो इन न्यूजीलैंड? आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मोर अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जहाँ पे आपको मौका मिले टू हियर फ्रॉम द पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स मे बी, और एंड वी हैव द राइट टू आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट के भाई ये इसके ऊपर क्या तुम्हारा कहना है क्या नहीं. क्योंकि आइडियली तो यही होना चाहिए, अगर हम वोट कर रहे हैं फॉर अ गवर्नमेंट, वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन कि भाई हमको कौन सी पॉलिसीज चाहिए इन प्लेस बिकॉज वी आर वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट
21: समथिंग. एक ऐसा शो जिसमें द व्यूज आर वेरी न्यूट्रल लाइक दे आर नॉट प्रो या अगेंस्ट ऑफ एनी पार्टी बट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करना सो दैट आपको नॉलेज मिल रही है कि क्या चल रहा है
17: एंड देयर इज नो राइट एंड
21: रॉन्ग यू कैन सी आपको क्या करना है.
17: या सो एनीवे लेट अस नो ऑन 5599 वुड यू बी इंटरेस्टेड. और थोड़ी देर में आपके लिए कैरेक्टर गेस
21: तो यस और नो लिख के भेजिए 5599 पर.
0: द साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन and communication technologies between Namibia and Angola. The agreement seeks to strengthen collaboration in areas such as digital transformation,

0: Character Guess.
1: इट्स नाउ टाइम फॉर कैरेक्टर गेस, जहाँ पे हम आपको कुछ हिंट्स देंगे, मतलब मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, फिर आपके पास सवाल भी है कुछ पूछने के लिए, एंड इन द एंड यू हैव टू गेस कि ये कैरेक्टर जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो कौन है.
2: ओके, सो आर यू रेडी रुजबे?
1: आई एम रेडी, बट आर यू
2: रेडी? सो गाइस, आर यू रेडी? 0800 हम पर आपको कॉल करना है. 0800 004 866 इज अ नंबर, कॉल कीजिए एंड लेट्स गेस रुजबे के माइंड में आज कौन है. मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन कर रही हूँ, सो आई विल राइट एवरीथिंग.
1: ठीक है, तो हिंदू में पहला.
2: या
1: ओके, आई वंस मेड हेडलाइंस विदाउट रिलीजिंग अ मूवी सॉन्ग और लाइक स्कोरिंग रन्स इन क्रिकेट.
2: अच्छा, तो इसने हेडलाइन बनाई और हेडलाइन के वजह मूवी के गाने नहीं थे और ना ही क्रिकेट का स्कोर था,
1: या मूवी भी नहीं थी.
2: हेडलाइन बनी विदाउट द रीजन ऑफ मूवी या क्रिकेट,
1: मूवी सॉन्ग या क्रिकेट
2: के बिना इसने हेडलाइन बनाई. ओके, इंटरेस्टिंग.
1: नहीं, रिलीजिंग, विदाउट रिलीजिंग अ मूवी सॉन्ग, मतलब बेसिकली मेरी ना एक मूवी रिलीज हुई, ना मेरा गाना रिलीज हुआ, ना मेरे कोई क्रिकेट का स्कोर कुछ हुआ, फिर भी मैंने हेडलाइंस बनाई.
2: ओके, विदाउट रिलीजिंग इसने हेडलाइन बनाई.
1: That's right. ये है पहला हिंट.
2: तो मुझे लगता है ना गाइस कि सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए रुजबे से, विदाउट गेसिंग कि कौन है, कि ये जिंदा है इंसान के नहीं, इफ दिस पर्सन इज अलाइव और नॉट. तो क्या लगता है आपको, ये सवाल पूछना चाहिए? अरे एक ने बोला है जडेजा, बट वो तो क्रिकेट में उसने बनाए ना हेडलाइंस, विजय माल्या. पार्थ का आंसर आया है विजय माल्या. ऑलरेडी आंसर्स आ रहे हैं उसमें.
1: वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. बट आई थिंक
2: विदाउट रिलीजिंग अ म्यूजिक एंड विदाउट स्कोरिंग इन क्रिकेट इसने हेडलाइंस बनाई.
1: जी,
2: मेरे को इतना पता चल गया कि दिस पर्सन इज मेल.
1: ओके,
2: या सो माय क्वेश्चन टू यू इज दिस पर्सन अलाइव और नॉट?
1: यस, अलाइव.
2: यस, अलाइव. ओके, सो दिस पर्सन इज अलाइव.
1: या तो एक हिंट हो गया, एक सवाल हो गया.
2: या एक हिंट हो गया, एक सवाल हो गया है. और कॉल करो कोई यार, 0800 हम पर यहाँ पे डिस्कस करो क्या लगता है. दिस पर्सन इज अलाइव, इसने हेडलाइन बनाई विदाउट रिलीजिंग अ म्यूजिक और स्कोरिंग इन क्रिकेट. ये एक मेरे को लगता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है दिस पर्सन. अंबानी तो नहीं है ये.
1: गौरव, आपने तो यार जडेजा गेस कर लिया, मेरे को तो समझ में नहीं.
3: अजय जडेजा.
2: अजय जडेजा ने लेकिन तो क्रिकेट में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ना.
3: नहीं, वो एक्चुअली फेमस क्रिकेट रिकॉर्ड
1: मैच फिक्सिंग के कारण
3: हुआ था, जो मैच फिक्सिंग हुई थी.
2: ओके, तो लेकिन गाना क्या इसने फिर क्यों बोला होगा कि विदाउट
3: रिलीज? क्योंकि मूवीज में भी आया है, मूवीज भी आई है एज अ हीरो. तो आई थॉट बिकॉज ऐसा कोई पर्सन जो दोनों इंडस्ट्री में साथ साथ काम करता हो,
1: या ऐसा कोई पर्सन जो दोनों में ना हो.
2: एग्जैक्टली, मुझे वो भी लग रहा है जी गौरव, ऐसा पर्सन इसने ना बोला कि इसने हेडलाइन बनाई कि उसने गाना भी नहीं रिलीज किया. और आजकल कह रहा हेडलाइन कैसे बनती है, क्या म्यूजिक आया है, हेडलाइन बन गई. क्या मतलब सेंचुरी मार दी, हेडलाइन बन गई. इस बंदे ने ये काम नहीं किए
1: फिर भी हेडलाइन बन गई.
2: लेकिन फिर भी हेडलाइन बन गई, आप इस वजह से सोचो.
1: लेकिन ये मैं कंफ्यूज कर भी सकता हूँ आपको, आप शायद सही ट्रैक पे भी हो सकते हो.
2: ये सही ट्रैक है मैं जो बता रही हूँ, ये बहुत कंफ्यूज करेगा गौरव. मेरी सुनो,
3: अपार्ट फ्रॉम मूवीज और क्रिकेट के अलावा तो ऐसे पूरी दुनिया भरी पड़ी है काम करने के लिए हेडलाइंस के लिए.
2: वही तो हमें ढूंढना है,
1: तो अभी ढूंढना है,
2: वही तो काम है हमारा. और दिस पर्सन इज अलाइव. ओके,
1: अलाइव भी है ये पर्सन.
2: और दिस पर्सन इज वेरी फेमस. तो
1: क्या लगता है गौरव, क्या सवाल पूछना चाहिए अभी टू गेट मोर क्लैरिटी? क्योंकि आपने कहा ना अभी बहुत वाइड है, तो कैसे इसको नैरो डाउन करें?
3: तो जेंडर रिवील से कर देते हैं, इसी या फीमेल और मेल.
1: जेंडर रिवील सैंडी ने कर लिया,
2: हो गया मेल है.
1: सैंडी को लगता है मेल है.
2: हाँ, आप ये लेके चलो, ये मेल है, मेल है, अलाइव है. जेंडर रिवील भी है. हमें ये पूछना चाहिए मुझे लगता है कि इज दिस पर्सन कनेक्टेड टू एनी कॉमेडी?
1: एनी कॉमेडी? अच्छा, ओके.
2: मुझे लगता है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कॉमेडियंस बहुत हेडलाइंस बना रहे हैं.
1: समीर
2: रैना हो सकता है, वीरदास हो सकता है, जाकिर खान हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं.
1: ओके
2: सुनील का आंसर आया
1: है.
2: सुनील कह रहे समय रायना. एक ने एक बोला है कि इज दिस पर्सन इन्वॉल्व इन न्यूज और क्राइम्स.
1: दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन.
2: इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन.
3: अवार्ड मिला होगा तो पूछ सकते क्वेश्चन कि हाँ भाई वाज ही अवार्डेड बिकॉज ऑफ दैट हेडलाइन.
1: Awarded because of that headline. अच्छा, कौन सोच रहे हो आप ऐसा? कौन है आपके मन में?
3: ये तो मेरे को
1: सवाल तो सोच रहे हैं
2: अभी. Thinking out loud.
3: मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या पूछ सकता हूँ.
1: अभी सोच.
2: कोई चक्कर नहीं.
1: अभी देखते हैं.
2: सोचते हैं गौरव.
1: ये पूछेगी सैंडी. चैंपियन है ये सब चीजों में यार. अभी पूछो सैंडी, क्या सवाल पूछ रहे हो?
2: सवाल ये रहेगा रुजबे कि ये
1: सवाल ही पूछ रहा है कि हिंट चाहिए आपको एक और.
2: ऐसा करो एक और हिंट दे दो. तुमने एक ही हिंट दिया ना.
1: एक ही हिंट दिया अब तक.
2: सेकंड हिंट दो.
1: अच्छा ठीक है. सेकेंड हिंट मैं आपको देता हूँ.
2: पहले ही हंस रहा है ये.
1: अब मैं आपको ये एक एक बोनस हिंट है. ठीक है
2: बोनस हिंट. ओके
1: सो बेसिकली ये हिंट ये है द क्लाउड ब्रॉट रेन इन टू माई लाइफ.
2: द क्लाउड ब्रॉट
1: रेन इन टू माई लाइफ.
2: रेन इन टू माई लाइफ. ये बोनस हिंट है.
1: बोनस
2: मतलब
1: हिंट
2: ये काउंट नहीं होगा.
1: मतलब हाँ ठीक है चलो काउंट.
2: हाँ ये काउंट नहीं होगा ना.
1: चलो ठीक है.
2: द क्लाउड ब्रॉट रेन इन माय लाइफ. मेरे को लगता है जब हमारे पता चलेगा ना कि आंसर क्या है इट विल मेक मोर सेंस.
1: एग्जैक्टली. हाँ हाँ तो चलो एक और हिंट देता हूँ मैं. तो देखो क्या होता है पता है क्या? कुछ लोग ऑनलाइन अपने फोटोज सेव करते हैं. या ऑनलाइन फोटोज सेव करते हैं. इस इंसान ने ऑनलाइन अटेंशन सेव किया.
2: अटेंशन मिला इसको. खूब अटेंशन मिला.
1: हाँ
2: मतलब कुछ लोग अपना
1: और सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेशनल अटेंशन मिला उसे.
2: ओ इंटरनेशनल अटेंशन मिला है.
1: इंटरनेशनल अटेंशन.
2: डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं सोच रहा ये. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. ये पूछना चाहूंगी मेरे को लगता है ये. इज दिस पर्सन इन्वॉल्व्ड इन क्राइम और गोन टू जेल?
1: एक कोई सवाल होना चाहिए.
2: स्मार्ट खेलने की कोशिश की मैंने.
1: क्राइम पूछा ना तो जेल.
2: क्राइम में तो बहुत दुनिया है. जेल में कोई कोई गया है. ओके इज दिस ये बंदा कभी भी जेल गया है क्या? इसे कभी भी जेल के दरवाजे के अंदर ऐसे एंटर किया है क्या? मतलब वहां पे रहा हो ना रहा हो बात अलग है. बट जेल जाना
1: ऐसा बस टच करके आया है ऐसा ऐसा बोलते हैं.
2: हाँ मतलब यू नो जाते हैं कहीं अटेंडेंस भी देते हैं.
1: हाँ
2: यस. ओके देयर यू गो गाइस. इस पर्सन ने जेल देखी है. तो इसका मतलब इसके ऊपर केस हुआ है. दिस इज व्हाट वी नो. तो हेडलाइन जो इसने बनाई है वो किसी कंट्रोवर्सी के लिए बनाई है.
1: या
2: सो कंट्रोवर्सी के लिए हेडलाइन बनी है. मुझे लगता है विजय माल्या भी हो सकता है इसमें.
1: विजय माल्या. अच्छा ठीक है.
2: या मुझे ऐसा लग रहा है विजय माल्या भी हो सकता है. समय रैना भी हो सकता है. वो भी जेल टच करके तो आया ही है. वो रणवीर लापाती वो भी हो सकता है. वो भी तो गया है. राजपाल यादव भी मेरे पास आया है. लेकिन या मूवीज में इन्वॉल्व था ना वो. वी आर राइट नाउ हम मूवीज को साइड पे कर रहे हैं. मूवीज के बारे में मत सोचो आप. बट वी नॉट थिंकिंग अबाउट सलमान खान संजय दत्त बिकॉज मूवीज को आउट करते हैं. ठीक है. सो समय रैना मेरे पास काफ़ी आंसर आ रहे हैं. दिस पर्सन इज डेफिनेटली फ्रॉम कॉमेडी लाइन या फिर बिजनेस पर्सन. इतना मुझे श्योरिटी है कि दिस पर्सन इज.
1: कितनी कितनी क्लियर श्योरिटी है. क्या क्लैरिटी है सैंडी आपके लाइफ में. वाह.
2: सो सवाल पूछे गाइज. मैंने अभी एक ही सवाल पूछा ना.
1: अभी आपने दो सवाल पूछा ना मेरे को.
2: दो सवाल कैसे? अलाइव वाला पूछा मैंने
1: और जेल वाला पूछा ना.
2: वो जेल वाला भी पूछा यार. सो ओके
1: और तीन नहीं दो या तीन सवाल पूछे आपने.
2: दो सवाल पूछे.
1: दो सवाल पूछे. अच्छा ठीक है.
2: सो मेरा सवाल ये है कि
1: क्या आपको हिंट चाहिए एक और?
2: तुमने कितने हिंट दिए?
1: अभी आपको दो हिंट दिए. मैंने तीन हिंट दिए वैसे तो. बट
2: दो हिंट दिए एक बोनस था. हाँ तीसरा हिंट दो.
1: अच्छा ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको exactly.
2: किसी को क्लिक कर रहा है तो प्लीज कॉल करो या मैसेज करो. डिड यू डू एनी शूज इन पास्ट?
1: अच्छा कौन से शूज?
2: लास्ट ईयर गया था जेल या ये नहीं तो क्लैरिटी मांगी है कि लास्ट ईयर गया कि इस साल गया, जेल गया ये बंदा, इतना पता है. आप बोलो.
1: चलो ठीक है, मैं हिंट देता हूँ आपको एक और. सो माई नेम साउंड लाइक अ के पॉप सिंगर हु एक्सीडेंटली बिकेम अ वेबसाइट.
2: My name sounds like a K-pop singer.
1: Who accidentally became a website.
2: Wow, this is a very good hint. तो कुछ messages सुनते हैं और उसके बाद we'll get back to the hints okay. and the questions.
1: Okay, let's go.
2: सोचिए. छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी. The Drive Show with Sandy and Rizvi. मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
0: Accurate traffic. Wardrobes Direct 30th birthday sale on now. Cloudy overnight for Auckland, a few showers, a low of 13. The northern pretty slow through West Haven to AUT. The northwestern reports of delays at Rosedale Road. Traffic's heavy from the city to there. So on the southern, it is slow heading north from Princes Street to Green Lane. The southwestern is slow between Puhinui Road and Onehunga in both directions. And Upper Harbour, heavy westbound through Greenhithe.
4: Mega savings this month only at Wardrobes Direct 2 showrooms, Mount Wellington and Silverdale.
5: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
11: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
10: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: I'm Sam, and recently I injured my shoulder at basketball. I was gutted, but I got advice from my physio, and we figured out a recovery plan which I took super seriously. I even used things around the house, like milk bottles as exercise equipment. Then, shortly after I recovered, we had twins. And having both arms working meant I could hold our babies at the same time.
14: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recoversooner.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
17: Power Drive at 5.
18: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: It's getting quite hot in here in the studio right now.
2: So call now, guys. 0800-00-HUM. Pe. Kaafi log.

0: सो गाइस, हमारे पास सो फार जो इन्फॉर्मेशन है कि दिस पर्सन मेड हेडलाइंस विदाउट रिलीजिंग एनी म्यूजिक या फिर स्कोरिंग इन क्रिकेट. दिस पर्सन इज अलाइव. दिस पर्सन वेंट टू जेल. क्लाउड्स ब्रॉट रेन इन टू माई लाइफ, ऐसा इस पर्सन की लाइफ के बारे में बताया गया है कि बादल आए लेकिन इसकी लाइफ में बारिश हुई. ओके, हिज नेम साउंड्स लाइक के पॉप सिंगर विच इज अ वेबसाइट, राइट? जो कि एक वेबसाइट है.
1: नहीं, विच साउंड्स लाइक अ
0: वेबसाइट.
1: साउंड्स लाइक अ हाँ, मतलब मैंने क्या बोला था एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ यार. मैंने कहा था दैट हाँ, माई नेम साउंड्स लाइक अ के पॉप सिंगर हु एक्सीडेंटली बिकेम अ वेबसाइट.
0: एक्सीडेंटली बिकेम अ वेबसाइट. ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल ये है.
1: नेक्स्ट सवाल, हाँ, पूछो पूछो.
0: इज दिस पर्सन कॉमेडियन?
1: इज दिस पर्सन अ कॉमेडियन? नो.
0: चलो, जिन्होंने ये समय रायना वगैरह जो भी भेजा है सब गया. नहीं है,
1: नहीं है.
0: मुझे राज कुंद्रा बहुत क्लोज लग रहा है. मेरे को दो लोग लग रहे हैं अभी, विजय माल्या एंड राज कुंद्रा.
1: अच्छा, ये दो आपको लग रहे हैं?
0: हाँ, बिकॉज कंट्रोवर्सीज में अगर किसी ने हेडलाइंस बनाई हैं रिसेंट पास्ट में, अगर देखा जाए जो इन सब चीज़ों को फिट करते हैं, ये दोनों हैं. बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू क्रिकेट एज वेल, इसीलिए उसने वो क्रिकेट का स्कोरिंग बोला. दोनों की टीम है. विजय माल्या, हाउ इज इन्वॉल्व इन क्रिकेट?
1: विजय माल्या का पहले आरसीबी हुआ करता
0: था. पहले आरसीबी हुआ करता था. या
1: बेच दिया उसने, फिर
0: उसने बेच दिया. एंड राज कुंद्रा इज उसकी कौन सी टीम है?
1: राज कुंद्रा की मेरे को नहीं लगता कोई टीम है.
0: नहीं है?
1: नहीं.
0: ओके, पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी. आईपीएल में नहीं है क्या?
1: नहीं, मेरे को
0: नहीं
1: लगता.
0: ओके, नहीं है. नहीं, तो ये भी गए क्या? ललित मोदी भी आंसर आया है. ललित मोदी भी हो सकते हैं. ओ, ललित मोदी इज इन्वॉल्वड इन क्रिकेट ना.
1: चलो, एक और हिंट दूं.
0: या
1: लास्ट हिंट ना.
0: या राजस्थान रॉयल्स उसका है.
1: लास्ट हिंट?
0: या लास्ट, नहीं, फोर्थ हिंट.
1: फोर्थ हिंट,
0: या
1: चलो ठीक है. फोर्थ हिंट ये है, इफ योर इंटरनेट वाज फास्ट इन द अर्ली 2010s, यू हैव प्रोबेबली हर्ड माय नेम इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट.
0: ओह, तो दिस पर्सन इज लाइक 2010 का.
1: काफी स्ट्रॉन्ग हिंट है ये.
0: इफ योर इंटरनेट वाज फास्ट इन 2010, यू हर्ड माय नेम
1: इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट.
0: या बहुत टफ हो गया गाइस. कोई तो कॉल करो. इंटरनेट
1: आज कोई कॉल नहीं कर रहा है ज्यादा यार.
0: ना, सबके ऊपर से गूगल ही जा रहा है ये.
1: या वी नीड सम मोर कॉलर्स.
0: बाउंसर जा रहा है ये. अगर आपका इंटरनेट 2010 में बहुत फास्ट था, अच्छे जीबी का था, तो मतलब आपने ये नाम बहुत बार सुना है.
1: आपने ये नाम सुना है, आपको शायद याद नहीं होगा अभी, बट आपने पक्का सुना है.
0: अगर आपका इंटरनेट 2010 में बहुत चलता था,
1: हाँ.
0: अगर आप ब्राउजिंग करते थे, तो इसका मतलब है कि दिस पर्सन वाज क्वाइट वाज इन कंट्रोवर्सीज एंड हेडलाइंस अराउंड 2010.
1: एक और हिंट दूं, फाइनल हिंट.
0: या दे ही दो.
1: चलो, फाइनल हिंट है, I became famous by helping people get things faster than they probably should have.
0: Oh, connected to internet hai ye.
1: I don't know.
0: So you help people getting things faster.
1: Hi.
2: Hello.
1: Ji.
2: Ha, Parth bol raha hu.
1: Ha, Parth bolo.
0: Yeah, Parth, kya lag raha hai? Aapke to bahut sare answers aa rahe hain.
2: अरे ये कोई वो जो हुआ था ना, 2G कुछ हुआ था ना, स्कैम हुआ था.
0: क्या हुआ था?
1: 2G स्कैम.
0: 2G स्कैम कौन था उसमें?
2: कोई राजा शायद, मुझे याद है राजा कोई नाम था शायद.
1: अच्छा, ओके ओके.
0: ओ, आप कह रहे हो कि स्कैम में ये पर्सन इन्वॉल्व था,
1: इसलिए शायद जेल गया होगा.
2: वो तो डेफिनेटली जेल गया था राजा. मुझे पूरा नाम याद नहीं है, बट राजा कुछ नाम था.
1: चलो ठीक है, एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं. हाय, आपका भी स्वागत है.
3: इज दिस साबिर भाटिया?
1: क्या था?
3: इज दिस साबिर भाटिया?
1: साबिर भाटिया
0: नहीं, मुझे वो भी लगता है. मैं
1: क्या,
0: तो
1: किस,
0: ना?
1: क्यों, क्या किस चीज के लिए?
3: हॉटमेल.
1: ओ, हॉटमेल से. हॉटमेल. ओ, राइट राइट.
3: क्या
1: नाम है आपका?
3: आकृति
1: आकृति
0: आकृति आकृति मुझे ना ये जो जितना भी फिट हो,

0: हो रहा है ना, ये उस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा फिट हो रहा है।
1: जेल गया है क्या? हाँ? जेल गया है क्या वो सबीर भाटिया? हेलो
0: हेलो,
1: हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो जेल गया है क्या?
2: What about Pramod Mahajan?
1: Pramod Mahajan, okay, आपने guess कर change कर लिया आपका।
0: Pramod Mahajan,
2: yes, it could either be these two,
1: Pramod Mahajan,
2: Yahoo, या Sabir Bhatia।
1: अच्छा ठीक है।
2: Am I right?
0: पता नहीं अभी। अकृति आपको Kim.com के बारे में पता है?
2: Kim.com तो नहीं होगा, because he doesn't sound like a K-pop singer का Kim. website or you said something like a K-pop singer website.
0: हाँ, तो उसका नाम signed होता है like K-pop singer, like Kim. मैं वो सोच रही हूँ कि because this person was involved in this internet speed as well ना, वो क्या था उसका कुछ तो था, हाँ कुछ उसने स्पीड के ऊपर ही किया था, एंड देन ही वाज अरेस्ट Kim.com ने
1: स्पीड के ऊपर
0: इंटरनेट का ही उसका कुछ ऐसा था लेके, एंड देन ही वाज अरेस्टेड। हेलीकॉप्टर लेने आया था भाई उसको,
1: राइट? ओके,
0: एंड मतलब अच्छा जो हिंट है ना, जैसे हमारे सूट कर रहे हैं कि जेल भी गया, क्लाउड्स ब्रॉट रेन इनटू माय लाइफ, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कनेक्टेड टू न्यूजीलैंड हो सकता है?
1: क्योंकि हाँ इंडिया में तो रेन आ रहा नहीं है।
0: क्या चीज?
2: बट वुड इट बी जेफ बेजोस? बट वो जेल नहीं गया होगा।
0: वो जेल नहीं गया ना, क्लाउड्स ब्रॉट रेन इनटू माय लाइफ।
1: आखिरी तुम बहुत कमाल कर रही हो यार, तुम थोड़ी देर और बात करो सैंडी के साथ।
0: घुमा दिया इसने। थैंक यू आकृति,
1: उसने ढाई मिनट में पांच नाम दे दिए।
0: मैं क्यों सोच रही हूँ गाइस, जिन्होंने Kim.com लिखा है यहाँ पे, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि इंटरनेट 2010 में इन्वॉल्व रहे वो तकरीबन, बिकॉज ही वाज आई डोंट रिमेम्बर किस साल में ही वाज अरेस्टेड, बट उनकी वजह से चीजें इंटरनेट पे फास्ट जरूर हुई जो उन्होंने किया, ठीक है। हिज नेम साउंड्स लाइक के पॉप सिंगर Kim, एंड ही वेंट टू जेल, मेल अलाइव, या ही मेड हेडलाइंस, तो ऐसा मेरे को ऐसा आइडिया हो रहा है।
1: तो एक काम करते ना, यहाँ पे जिसने Kim.com भेजा था उसको कॉल लगाते हैं, पूछते उनसे
0: पहले जिन्होंने कॉल किया इससे तो बात करो।
1: अच्छा हाँ, हाँ। पार्थ बताइए क्या हुआ फिर, आपने कुछ सोचा इसके बारे में?
3: नहीं अभी तो कुछ, आपने इस बार आप एकदम
0: हटके
3: लेके आए हो,
0: है ना, बहुत ही मुश्किल लेके आए ये बंदा।
1: हटके में ले तुम लोग हमको।
0: नेक्स्ट टाइम और गेम पुल करनी पड़ेगी।
1: चलो एक काम करते हैं हम, एक यहाँ पे जो एक आंसर आया है सैंडी,
0: तो Kim.com जिन्होंने आंसर लिखा है ना यहाँ पे, 12 नविंदर सिंह सराव, ओके Kim.com 2012, बनेफो ने क्या लिखा है, नविंदर सिंह सराव 2010, दूसरा नाम नहीं मुझे पता है नविंदर बेनेफर, लेकिन मेरे को Kim.com जरूर पता है।
1: अच्छा ठीक है, तो
0: तुम
1: अभी
0: किसी
1: इनको,
0: एक को कॉल करो जिन्होंने Kim.com की लिखा है,
1: इनको कॉल करते हैं। एक एक जो आया है होपफुली।
0: कितने लोगों ने लिखा है Kim.com?
1: काफी लोगों ने लिखा है यार, दो तीन लोगों ने लिखा है
0: एक्चुअली में,
1: हम इनसे बात करते हैं पहले।
0: तीन लोगों ने लिखा है, चार लोगों ने।
1: हाय क्या नाम है आपका?
0: मेगा अपलोड्स या
4: अभी
1: अभी
0: अभी अभी अभी आपने हमारे अभी हो क्या? Kim.com लिखा है ना? नहीं नहीं ये वो अभी तो कनाडा है।
1: अरे वो कनाडा में है। अच्छा हाँ बताओ अभी क्या लगता है अभी?
4: Kim.com ना वो मेगा अपलोड वाला,
0: मेगा अपलोड, थोड़ा और बताओ क्यों लग रहा है ये?
4: वो फाइल शेयरिंग वगैरह उसका कुछ हुआ था उसमें इंटरनेट पहले।
0: और कौन से ईयर में हुआ था आपको याद है? बिकॉज इसने बोला कि 2010 में तुमने बोला कि अगर आपने इंटरनेट बहुत यूज किया है
1: तो आपने मेरे नाम के बारे में सुना होगा,
0: तो मेरे नाम के बारे में सुना होगा, बिकॉज Kim.com वाज अ पास, इज अ पास ना नाउ
4: 2005
0: ऐसा कुछ हुआ है। ओके ओके अराउंड दैट्स। ओके
1: आपने यूज किया था कभी उसका मेगा अपलोड या जो भी है?
0: आपने यूज नहीं किया? ओके मुझे ऐसा लग रहा है Kim.com ही है आफ्टर, बिकॉज क्या है कि Kim नाम भी के पॉप सिंगर की तरह है ना,
1: ये एक पकड़ के बैठी है।
0: हाँ ना यार, नहीं इंटरनेट का भी ना वो मेगा अपलोड
4: हो सकता है।
1: तो क्या बोलते हैं अभी, गेस करना है कि नहीं?
0: वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, गलत हो जाएगा।
1: Kim.com है, चलो ठीक है, थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो बताओ एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। हाय हाय आपका स्वागत है, जी हेलो, प्रशांत बोलिए। हाँ प्रशांत,
0: प्रशांत बताइए।
5: ओह दैट्स अ किम डॉट कॉम।
0: दैट्स अ किम डॉट कॉम।
1: क्यों ऐसा लगता है आपको?
5: क्योंकि वो बहुत बड़ा इश्यू था, मैंने उसका बंगलो देखा है नोस्ट्रो में।
0: हाँ इसी के घर के ऊपर हेलीकॉप्टर आया था ना पुलिस का।
5: अरे मैंने उस वक्त मैं कार पार्क करके रोड पे बाहर खड़ा था।
1: वो आपने देखा था वो
5: अटैक हुआ था न्यूजीलैंड पुलिस का।
1: हाँ। न्यूजीलैंड नहीं यूएस की पुलिस आर्मी आई थी, एफबीआई थी यहाँ पे।
5: ओ हाँ बट ऊपर हेलीकॉप्टर था
0: या।
5: और मैं वहीं पे था कि भाई ये बहुत बड़ा बंगलो है उसका
1: नॉट श्योर में ना।
5: मैं एक बार गेट के अंदर भी गया हूँ।
1: अरे क्या बात है,
0: क्या बात है। तो वही लग रहा है कि आपको वही हो सकता है। ये
5: यही है,
0: यही है,
1: है भाई।
5: लगता है वो सिंगर। I have 100% confident।
1: ये मेरे को एक बात बताओ, ये तो ठीक है।
5: मुझे तो मेन क्वेश्चन भी पता नहीं है। But I just joined the radio and I was listening the communication. You guys are communicating with the other people. And I said I know this guy.
1: तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो ये आभा सूर्यवंशी कौन है?
5: ओ मेरा नहीं, वो मेरा फर्स्ट
0: गेस
5: था, हुआ था बाय मिस्टेक मेरा आंसरिंग।
1: जब ऑटो करेक्ट हो गया,
5: कभी कभी मैं मोटरवे पे ड्राइव करता हूँ और जो
1: समझ आए, समझ आए,
5: टाइपिंग में जो भी वो दिख लेता था वही वो हुआ था। मेरा मतलब उस समय मेरा मतलब वो था कि वैभव सूर्यवंशी है नहीं है।
1: हाँ वैभव सूर्यवंशी।
5: फिर जो आपने जो जो अभी अगले बंदे से बात किया
0: तो क्लियर हो गया।
5: तो मेरे सामने, मैं तो बहुत सालों से हूँ न्यूजीलैंड में, तो मेरे सामने पूरा सिनेरियो आ गया।
0: सही है,
1: राइट, ओके।
5: पूरा सिनेरियो की
0: तो लॉक करते हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट हो ना प्रशांत, तो लॉक करते ही हम
5: 100%।
0: ठीक है
1: चलो, ठीक है। एंड दी क्या लॉक किया?
0: आंसर इज kim.com।
1: एंड दी आंसर इज kim.com। दैट्स करेक्ट, वेल डन, वेल डन।
0: मैं हैरान हूँ जिन्होंने इतनी जल्दी गेस कर लिया। धृति का पहले मैसेज आया था,
1: धृति ने बहुत पहले गेस कर लिया।
0: कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच प्रशांत।
1: थैंक यू प्रशांत, थैंक यू यार,
5: थैंक यू,
1: बाय बाय
0: बाय। धृति ने यहाँ पे आंसर दिया था, रुजबे नरेश ने यहाँ पे एक्चुअली में सबसे पहले आंसर दिया था
1: जी। तो
0: kim.com इज द आंसर। एंड जैसे इन्होंने बोला कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए थे उनको अरेस्ट करने के लिए, यार
1: था भी यहाँ पे कि मैंने बेसिकली पहले तो मेरा एक और हिंट था कि आई समहाउ टर्न डाउनलोडिंग फाइल्स इनटू इंटरनेशनल न्यूज। तो ये इंटरनेशनल न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये फाइल शेयरिंग मेगा अपलोड इन्होंने चालू किया था, जो टॉरेंट है आज के जमाने में। वैसे उन्होंने वैसा चालू किया था वो जमाने में, और तभी उनको काफी वो स्क्रूटिनी में आ गए थे। मेरा एक और हिंट था कि
0: Is he out of jail now? Because वो काफी ट्वीट करते हैं ना, मतलब आई एम नॉट श्योर कि
1: इन्होंने न्यूजीलैंड में इंटरनेट पार्टी भी लॉन्च किया था 2014 में। इन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया था न्यूजीलैंड में एक्चुअली। एंड देन एक और हिंट था, न्यूजीलैंड गेव मी रेजिडेंसी बट नॉट अ क्वाइट लाइफ। हेलीकॉप्टर वंस बिकेम अ पार्ट ऑफ माई बायोग्राफी। बट आपको पता था हेलीकॉप्टर स्टोरी, इसलिए मैंने वो हिंट नहीं दिया आपको।
0: नाइस,
1: बट वेल डन गाइस,
0: वेल डन गाइस। सो kim.com वाज द आंसर टुडे। अच्छा खेला।
6: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम। ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।
7: यू शुड डन दिस सॉन्ग यार।
8: डांसिंग पागल है यार।
7: क्यों?
8: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल।
7: बट व्हाई, इट्स आइकॉनिक।
8: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे। आजकल जनता ना बहुत
7: डेंजरस हो गई। बट इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी।
8: यू गाइस वांट ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: Power Drive at 5 जारी है आपके लिए और हमने आज कैरेक्टर गेस में Kim.com के बारे में मैंने गेस किया, मतलब मैंने सोचा था और आपने गेस कर लिया सही. Well done.
4: तो वहां पे मैं ऐसा ट्वीट किया करती थी, उसके ट्वीट्स का रिप्लाई किया करती थी. आई जस्ट रियलाइज ही फॉलोज मी बैक,
3: बट यू डोंट फॉलो हिम नाउ.
4: आई डोंट फॉलो Kim.com, बट ही फॉलोज मी.
3: क्या बात है यार. और सैंडी को एक्चुअली काफी सेलिब्रिटीज ट्विटर पे फॉलो करते हैं,
4: बिकॉज या जब आप एक्टिव होते हो ट्विटर पे देन होता है वो लाइक वन इज बिशन सिंह बेदी, लेजेंड बिशन सिंह बेदी, बिकॉज उनके साथ भी क्रिकेट की मैं बहुत लाइक ट्वीट करना, बातें करना, कोई भी वर्ल्ड कप या कुछ भी मैच हो रहा है, एनी रैंडम क्रिकेट मैच आई यूज टू वॉच एंड देन ट्वीट ओवर देयर कि इसने ये क्या किया, वो सब कमेंट्री वहां पे करती थी.
3: ओह अच्छा.
4: या
3: वाओ यार.
4: अभी क्रिकेट देखना कम हुआ है बिकॉज टाइमिंग थोड़ा
3: ऑफ हो गया ना.
4: ऑफ हो गया है, ज्यादा ही ऑफ हो गया टाइमिंग. वर्किंग भी ऐसा इंक्रीज हो गया ना, लाइफ गोज ऑन.
3: वैसे
4: क्रिकेट पीछे रह गया है.
3: वैसे आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद आपके लिए हम एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आने वाले हैं फॉर यश जौहर स्पेशल.
4: लेकिन 6 बजे के इंट्रो में आपको मौका देने वाले हैं राहत फतेह अली खान के शो के लिए. अगर आपको टिकट जीतनी है, रैपिड फायर क्वेश्चन रहने वाला है. So stay tuned.
3: Oh, so you have to give us a call. यहाँ पे call करके आपको rapid fire questions answer करने हैं and you will be in the draw to win a double pass for Rahat Fateh Ali Khan live in concert in Auckland. तो make sure के आपने number save कर लिया है 0800-004-866. Call करना है आपने 6 बजे के बाद.

0: Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: What's my house value.co.nz.
3: Cloudy with a few showers tonight for Auckland, a low of 13. Pretty good on the northern. The northwestern is still heavy from the city to the Te Atatū off ramp. The southern slow northbound from Sylvia Park to Market Road. The southwestern, we've got reports of a crash at the northwestern off ramp at Waterview. And trains tonight, the Western Line buses replacing trains from 9:30.
2: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
4: White Dwarf free-range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: The global phenomenon returns.
9: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
10: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
8: Watch the series the world will be talking about.
11: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
9: This is the moment you become queen.
8: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
12: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
13: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
14: Sorry about that.
13: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
14: Kogan Mobile, true Aussie value.
13: Terms and conditions apply.
15: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
16: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
15: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
16: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
17: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
0: हम टाइम चेक, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
18: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 6. An investigation is being launched into the Chief Human Rights Commissioner, Stephen Rainbow. Justice Minister Paul Goldsmith confirmed the probe regards alleged conduct concerns. He says Christy McDonald KC has been appointed to investigate and report back. A 40,000-strong petition is calling for a better deal for retirement village residents. Currently, there is no time limit for those who leave to get their money back. The government has proposed a 12-month deadline, but Consumer New Zealand Chief Executive John Duffy says it's too long and won't act retrospectively.
19: The ones who have actually done the fighting to get some fairness into their arrangements with retirement villages would not benefit from the coalition bill at this stage.
18: A major supplement retailer has pulled products from shelves and apologised to customers. An internal review of New Zealand Muscle found labelling and packaging issues across three of its lines, including no brand. New Zealand Food Safety says it's investigating claims of Food Act breaches. And an Auckland police officer has been slapped with an infringement notice for watching a video while driving. They were spotted with a phone propped up on the dashboard. It was filmed and circulated on social media late last week. To Rugby League with Machinery House, the Warriors are having to replace the injured in-form Jackson Ford for this weekend's clash with the Dolphins. The Dolphins are on a 7-match winning streak. And moving day at the Football World Cup today, Argentina, France and Norway all had wins. All three move into the round of 32 with a match to spare. In the late game, Algeria beat Jordan 2-1. Jordan has no chance of getting out of the group stage.
0: Sports
20: Breakfast News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
21: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
22: सूचित किया जाता है नगम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचारी उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए आप ट्यूसडे 23 जून को 7 से 8 के बीच जा सकते हैं. अंतिम संस्कार वेनसडे 24 जून दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर कॉल कर सकते हैं. नगम्मा देवी के पति मोनिका प्रिया क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचारी उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम दर्शन के लिए आप 23 जून को 7 से 8 के बीच जा सकते हैं और अंतिम संस्कार 24 जून को 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर कॉल कर सकते हैं. ऑकलैंड की किरण राव रोहिणी देव और उषा राय की माँ चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी. श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापा टोटो जा सकते हैं या 2793894 पर कॉल कर सकते हैं. ऑकलैंड की किरण सिंह रोहिणी देव और उषा राय की माँ चार्ल्स स्ट्रीट सुवा के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी चंद्रवती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार की सूचना बाद में दी जाएगी. श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापा टोटो जा सकते हैं या 2793894 पर कॉल कर सकते हैं. भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट जय नारायण जोखन की पत्नी रजनी सेन अंजनीश जयंत मोहिनीश और रोविन जोखन की माँ हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को 1:00 बजे वाटुवाका सेमेट्री में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0223326843 पर कॉल कर सकते हैं. भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के लेट मिस्टर जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन अंजनीश जयंत मोहिनीश और रोविन जोखन की माँ हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार सैटरडे 27 जून को 1:00 बजे वातुवाका सेमेट्री में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0223326843 पर कॉल कर सकते हैं. एलिजली की चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रमलू नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार थर्सडे 25 जून को 11:00 बजे मनोकाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. सहानुभूति के लिए कॉल करें 0272003343 पे. एलिजली के चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रमलू नायडू की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार थर्सडे 25 जून को 11:00 बजे मनोकाव मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. सहानुभूति देने के लिए कॉल करें 0272003343 पे.
21: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
23: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम हाँ।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Good evening. Training baatein topic gaane aapke liye. Ye to rahenge, lekin isse saath trend makers mein.
5: Yeah, trend makers mein. Aaj hum Yash Johar inki movies ko celebrate kar rahe. Yash Johar jinhone Dharma Productions open kiya, जो कि आज तक हमें बहुत ही हिट सिनेमास दे रहा है।
4: Actually, करण जौहर ने उसको रिवाइव किया काफी।
5: सिनेमा से याद आया, मैं वापस आऊंगा, वापस स्क्रीन्स में आ चुकी है।
4: Yeah, हमारी सुन ली किसी ने, मुझे लग रहा है।
5: I know, man. मतलब मेरे को लगता है वर्ड ऑफ माउथ ऐसा काम किया इस मूवी के लिए कि लोगों ने बोला कि यार मूवी इतनी चल रही है, हमें तो सिनेमा में जाके देखनी है, और स्क्रीन्स नहीं थी। एंड नाउ इन न्यूजीलैंड, मुझे नहीं लगता ज्यादा मूवीज के साथ कभी ऐसा हुआ है,
4: वो री-रिलीज हुई है।
5: री-रिलीज इन अ वीक, मतलब कि मूवी खत्म होती है, जाती है, कोई जा नहीं रहा है, लोग जाना चाहते हैं, दोबारा सिनेमास में आ चुकी है। सो नाउ इससे बेहतर कि बाद में आप यू नो रिग्रेट करें कि भाई सिनेमा में देखनी चाहिए थी ये मूवी। नाउ इज द टाइम गाइस, गो एंड वॉच दिस मास्टरपीस।
4: एंड आई थिंक द अदर रीजन टू एक्चुअली वॉच दिस मास्टरपीस इज आल्सो कि ऐसे टाइप के मूवीज फिर और बनने चाहिए।
5: एग्जैक्टली,
4: जो डीप है, इमोशनल है, मीनिंगफुल है, समवेयर अराउंड आवर हिस्ट्री।
5: या और क्रेडिट्स तक बैठना, दिस इज व्हाट आई विल से, क्रेडिट्स तक जरूर बैठना, बिकॉज यू विल गेट ऑसम थिएटर एक्सपीरियंस।
4: आई जस्ट वांडर, आई हैव वन रिक्वेस्ट टू द थिएटर पीपल कि क्रेडिट्स आने के बाद फिर लाइट ऑन करना।
5: हाँ, उन्होंने लाइट्स पहले ऑन कर दी थी ना जहाँ पे हम थे।
4: इतना ऑकवर्ड हो जाता है ना कि मतलब अभी तो आंसू निकले ही है और लाइट
5: और लाइट आना, अभी मेरे आंसू, मुझे लगा कि थोड़ा ऐसा साफ कर लेंगे, लेकिन देन लाइट ऑन होगी, एवरीवन वाज, मेरे को लगता है वहाँ पे बैठे थोड़ा टेरी
4: आए, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इमोशनल मूवी। बट एनीवे, अभी सैंडी जो काम करने के लिए हम आए हैं वो काम कर लेते हैं,
5: वो काम करते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इज, अभी आपको यहाँ पे कॉल करना है, राहत फतेह अली खान इज कमिंग इन योर सुपर सिटी बहुत ही जल्द, तो इनके रिलेटेड कुछ सवाल है हमारे पास जो आपसे हम पूछने वाले हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन। 3 सवाल होंगे, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहां पे आप डबल पास जी सकते हैं फॉर द शो। सो शो के बारे में अभी ज्यादा हम नहीं बताएंगे, फर्स्ट विल इनवाइट योर कॉल, क्योंकि मैंने रुजबे को भी देखा, बोलने ही वाला था वो, अभी नहीं रुजबे,
4: नहीं अभी नहीं बोलेंगे।
5: या 0800 00 हम 0800 00 4866, अगर आप राहत फतेह अली खान के शो के लिए फ्री टिकट जीतना चाहते हैं, इस ड्रॉ में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कॉल कीजिए।
4: आपका स्वागत है, गुड इवनिंग।
6: गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू?
4: गुड गुड
5: गुड। तो रेडी है कि आप सवाल के लिए?
6: 100%।
5: ठीक है, तो 5 सेकंड्स के अंदर आपको ये सवाल का जवाब देना है।
4: मैं टाइमर खोला नहीं आज 5 सेकंड वाला, लेकिन खोलू क्या?
5: तो आपके लिए पहला सवाल, इन विच पाकिस्तानी म्यूजिक प्लेटफॉर्म डिड राहत फतेह अली खान परफॉर्म मल्टीपल आइकॉनिक सीजन्स?
4: टाइम स्टार्ट्स नाउ।
6: सॉरी,
5: पास,
6: आई डोंट नो।
5: ओके, यू डोंट नो। चलो एक और सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी कोई और कॉल तो नहीं है रुजबे।
4: अच्छा, लेकिन अभी प्रशांत आपने ऐसे कॉल किया क्या? एक चलो एक और सवाल पूछो, देखते
5: हैं। चलो ठीक है, आपको ये बताना है कि राहत फतेह अली खान का शो ऑकलैंड में किस दिन हो रहा है?
6: 27 जून।
5: नो, इनका शो 25 जुलाई को हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रशांत, ऑल द बेस्ट।
6: थिंकिंग वाज लाइक गुज्जू भाई, ओके, या 27 जून, 3rd जुलाई, या ओके,
5: हाँ गुज्जू भाई वाला 3rd जुलाई को हो रहा है, जा रहे हो आप?
6: 3rd जुलाई को, हाँ, मैं उनको बहुत बार मिलता हूँ।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
6: कैन आई हैव वन मोर चांस?
5: अभी तो टाइम ओवर हो गया, 2 सवाल गलत हो गए ना।
6: ओके ओके,
5: कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रशांत,
4: नेक्स्ट टाइम करेंगे प्रशांत, कोई नहीं।
5: थैंक यू,
4: थैंक यू, बाय। अच्छा, तो ये अब तक हमारे ड्राइव शो में कोई अब तक पास थ्रू नहीं हुआ है?
5: पास थ्रू अभी तक नहीं हुआ है। सो दिस इज द ओनली ट्रिक, कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, आपको जवाब देना होता है, एंड जवाब सही देते हैं तो आपका नाम इस ड्रॉ में जाता है जहां पे डबल पास आपके नाम हो सकता है। वी स्टिल हैव फ्यू एंट्रीज, We have so far Amandeep, Sara, Sapna, Hardeep jo hai, ye abhi tak shortlist hue hain.
4: Acha, to aapka bhi mauka ho sakta hai.
5: Yeah.
4: But for that you have to call us earlier. अभी के लिए हम यश जौहर के मूवी के गाने आपको सुनाएंगे.
5: यश जौहर जिन्होंने के से बहुत मूवीज बनाई, शाहरुख खान के साथ बहुत मूवीज बनाई वैसे इन्होंने, बट टू स्टार्ट ऑफ आई थिंक डुप्लीकेट का गाना है.
4: डुप्लीकेट का गाना है. देखो के से नाम नहीं देखा ना इसके, इसलिए फ्लॉप हो गई थी मूवी.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits Trend Makers. में आज यश जोहर जी को हम दे रहे हैं शाउट आउट, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, बिकॉज इसी हफ्ते उनकी डेथ एनिवर्सरी होने वाली है.
1: या ही वॉज बॉर्न इन दैट पार्ट ऑफ पंजाब जो कि उस समय पर एक्चुअली ही वॉज बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया पंजाब बोल लिए. आई वाज थिंकिंग कि दूसरी साइड से ये मतलब पार्टीशन के टाइम पे दूसरी साइड से थे. नहीं, वो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट से ही थे. बट या सिनेमाज में एंट्री इनकी हुई 1950s एंड 60s में. रुजबे लाइक ही वर्क विद अ मेजर बैनर सुनील दत्त के, यू नो, अजंता आर्ट्स के साथ, देवानंद की नवकेतन फिल्म्स थी उनके साथ उन्होंने काम किया. सो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन लाइक गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, दीज काइंड ऑफ आइकॉनिक मूवीज.
0: आपको पता है बिफोर गेटिंग इन बिकमिंग अ ग्रैंड फिल्म प्रोड्यूसर, इन्होंने ओन करते थे एक वेल नोन स्वीट शॉप इन अमृतसर कॉल्ड जोहर चाट भंडार.
1: अरे वाह, वो भी है कि नहीं है.
0: और इनके पिताजी चाहते थे कि ये इसको रन करे एज अ फैमिली बिजनेस, लेकिन उनको ग्लिट्स और ग्लैमर और मुंबई चाहिए था. तो वो तब मुंबई फिर मूव हो गए थे. तो उन्होंने करियर इन फिल्म चूज किया ओवर हिज जोहर चाट भंडार.
1: ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग.
0: जोहर चाट भंडार, हाँ. या तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका लाइफ रहा एक्चुअली. यश जोहर के बारे में एक और चीज़ है, इन्होंने जो मार्शल आर्ट्स लेजेंड ब्रूस ली है, इनके साथ भी काम किया है.
1: ओके, वहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, जौहर चाट भंडार जो है ना वो अभी भी है वहाँ पे एक, लेकिन नॉट श्योर कि ये यही वाली है. वो वहाँ पे एक माल रोड है वहाँ पे अमृतसर में.
0: अच्छा.
1: वहाँ पे है ये मॉल रोड है वहाँ पे.
0: ना, माल रोड क्या होता है यार ये?
1: वो पंजाबी में बोलते हैं ना,
0: माल रोड बोलते हैं.
1: हाँ, मतलब पंजाबी में थोड़ा ए के ऊपर ज्यादा हो जाता है ना फोकस.
0: अच्छा.
1: तो या लेकिन वो इन्हें की है कि नहीं,
0: हम लोग भी माल बोलते हैं बट वो रोड को नहीं, मतलब.
1: तो भी करेक्ट किया मैंने कि इधर गलत हो जाएगा.
0: Cool. Anyway, तो अभी यश जोहर के गाने आपको सुना रहे हैं. सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे एक से गाने हम लेकर आते हैं और आज यश जौहर के सुपरहिट सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं, उनके मूवी के गाने लेकर आ रहे हैं आपके लिए।
2: यश जौहर के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो इनका जो फिल्मिंग स्टाइल था, एक मॉडर्न बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग जो है ये वो लेके आए थे इनटू द बॉलीवुड। यू नो जो इनकी मूवीज रही हैं, जैसे कुछ कुछ होता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेक था, देन कभी अलविदा ना कहना, ऑल दिस काइंड ऑफ मूवीज, एक मॉडर्न जो इन्फ्लुएंस है वो अपने मूवीज में इन्होंने ऐड किया।
1: या और एक्चुअली मैं उनको ये भी कहते थे, उनको अल्टीमेट हॉलीवुड फिक्सर कहते थे इन इंडिया।
2: ओह वाओ।
1: तो जैसे मैंने पिछले लिंक में कहा था कि ब्रूस ली के साथ इन्होंने काम किया है, तो ब्रूस ली की एक मूवी बनने वाली थी द साइलेंट फ्लूट। यश जौहर को उसके लिए हायर किया गया था ताकि वो इनके क्रू को इंडिया दिखा सके, ताकि वो लोकेशंस फाइनलाइज कर सके। और इनके सीमलेस मैनेजमेंट तभी बहुत लोगों ने पसंद किया था। वो मूवी तो नहीं बनी, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले, एंड ही वॉज कॉल्ड द अल्टीमेट हॉलीवुड फिक्सर इन इंडिया।
2: ओ क्या बात है।
1: तो जैसे जंगल बुक आई थी 1994 में, वो उसमें एसोसिएट प्रोड्यूसर थे फॉर जंगल बुक 1994, और वो इंडियन प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स हैंडल करते थे फॉर मैसिव हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स लाइक आर्मागेडॉन 1998 में ये रिलीज हुई थी मूवी, और एक थ्रिलर द लास्ट डांस 1996 में जो रिलीज हुई थी। इसका जो इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो सब यश जौहर ऑर्गेनाइज करते थे।
2: वाओ इंटरेस्टिंग। वैसे धर्मा प्रोडक्शंस जो है रूस में, इन्होंने 1976 में फाउंड किया ये प्रोडक्शन हाउस। विजन बहुत सिंपल था, मेक इमोशनली रिच फैमिली ड्रिवन एंड ग्रैंड हिंदी मूवीज, ये इनका विजन था जो हमें इनके मूवीज में दिखाई दिया।
1: या सो या एनीवे बहुत ही बढ़िया इनका विजन रहा है। उनको इतना सक्सेस नहीं मिला एट दैट पॉइंट, काफ़ी उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो इतने नहीं चले जितने

0: वो चलना
1: बिकॉज उनका फोकस था फिल्म मेकर्स को ट्रेंड को फॉलो नहीं करना. पहले उनका जो फोकस रहा था वो था कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है लेकिन फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना है. उनका वो ट्रेंड हमेशा मतलब उनके माइंड में वो एक रहा था जिसकी वजह से उन्होंने पहले नाम इतना नहीं कमाया अंटिल ही ओपन हिज प्रोडक्शन हाउस.
0: या और उसके बाद भी प्रोडक्शन हाउस भी इट डिडंट डू दैट वेल.
1: इट डिडंट डू. ही स्टार्टेड इन 1980s लाइक दोस्ताना मूवी के साथ. इट डिडंट डू लाइक प्रीटी गुड लेकिन लेटर ऑन धीरे-धीरे इट पिक अप.
0: करण जौहर ने उसको पिक अप किया एक्चुअली मैं वापस आके. बट या आई थिंक सम ऑफ हिज एपिक मूवीज एक्चुअली डिडंट टर्न आउट दैट वेल. बात करेंगे और भी इनके बारे में बट अभी के लिए उन्हीं की मूवी का ये गाना आपके लिए.

0: accurate traffic.
1: 15% off airport parking.
2: Cloudy overnight for Auckland, a few showers, a low of 13. All good on the northern now to Silverdale, taking 35 minutes from the city. The northwestern is heavy from Grafton to the Te Atatū off-ramp, but to Massey it's 27 minutes. On the southern, a quick 23 to Manukau to Drury, taking 35. And southwestern, still a bit slow around Mangere Bridge, heading west.
1: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
5: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
9: TradeDepot.co.nz.
10: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
11: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.

0: Trend Makers.
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits 104.2 FM और Rova app के जरिए और website के जरिए आप हमें सुन सकते हैं from anywhere in the world.
2: Yeah, और आज यश जौहर इनको हमने celebrate किया, इनकी movies, इनकी produce की गई movies के हमने गाने play किए. जाते जाते जो गाना play करने वाले हैं, इनकी debut movie है under his production house. दोस्ताना. और इसके गाने बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे रूस में, एंड दिस वन सॉन्ग स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हिट गाना रहा था. ये दोस्ती के ऊपर ही इस गाने को बनाया गया था.
1: एक्चुअली मैं करण जौहर ने बाद में उनके डैड के बहुत सारे मूवीज को रिक्रिएट किया, मतलब एटलीस्ट नेम को रीयूज किया,
2: रिक्रिएट किया.
1: दोस्ताना उन्होंने फिर से बनाई. एक्चुअली मैं अग्निपथ की भी एक कहानी है. अग्निपथ एक फेलियर रही थी. 1976 में धर्मा प्रोडक्शंस के थ्रू ये आई थी मूवी, और अमिताभ बच्चन भी थे उसमें, लेकिन फिर भी एक मैसिव कमर्शियल फेलियर रहा ये बॉक्स ऑफिस पे, जिसने इनको बहुत ही सैड कर लिया था. लेकिन फिर उसके बाद डेकेड्स लेटर उनको तो मिला ही, मतलब वो वापस से, मतलब कल्ट स्टेटस मिल गया वो मूवी को, और बच्चन को नेशनल अवार्ड मिला उसके लिए. एंड देन उसके बाद करण जौहर ने उसको सक्सेसफुली रीमेक भी बनाया उसका 2012 में, और वो एक मैसिव ब्लॉकबस्टर रहा था.
2: या और एक्चुअली मैं उस समय पर यू नो दो हीरोज को लेके कहानी बनाना बहुत माना जाता था. तो ये जो मूवी दोस्ताना मूवी में बाद में उन्होंने अगेन उसको लिया, विजय क्या नाम है, अमिताभ बच्चन करेक्टर का नाम विजय था ना, तो उसको लिया अमिताभ बच्चन को अलॉन्ग विद शत्रुघ्न सिन्हा. तो उनके दोनों की दोस्ती दिखाई थी, वो फॉल इन लव विद द सेम गर्ल, तो इस वजह से उनकी कहानी थी. एंड काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू जो करण जौहर ने दोस्ताना बनाई थी, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे थी वो दोस्ताना की. पिक्चराइजेशन बहुत डिफरेंट थी, बट कॉन्सेप्ट सेम था.
1: वो कॉन्सेप्ट सिमिलर था.
2: या अगर देखा जाए उसमें जॉन अब्राहम, प्रियंका चोपड़ा एंड
1: अभिषेक बच्चन खा गया था वो शो.
2: सो मतलब इट वाज वेरी नाइस. एनीवे सो आज
1: हमने कौन था मालूम है उस मूवी में सैंडी?
2: कौन?
1: बॉबी देओल.
2: इमेजिन ना, बॉबी देओल को उस समय पर हम कितना इनविजिबल मान लेते थे.
1: चॉकलेट बॉय, एकदम ही ऐसा,
2: इतना हाईलाइट नहीं हो रहा था उस समय पर बॉबी देओल. मैंने उसका रिसेंट अभी पॉडकास्ट किया है, देखा है मैंने, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. या वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आई विल से. ही गॉट इमोशनल एज वेल इन दैट पॉडकास्ट, बिकॉज वेन एवर ही टॉक्स अबाउट हिज फादर ही गेट्स इमोशनल. बहुत अच्छा है एक्चुअली, मेरे को पॉडकास्ट लगा वो. तो मौका मिले तो आप जरूर देखना उसकी वीडियो. बट फॉर नाउ आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस. नेक्स्ट ईयर ईस्टर 2027 विल नॉट जस्ट बी अ लॉन्ग वीकेंड फॉर यू, इट कैन बी सन स्टोरीज एंड अ क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर.
1: ओहो, क्योस भूल गए आप उसमें.
2: क्योस तो रहने ही वाली है, फुल क्योस रहने वाली है. सो ईस्टर 2027 के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं
1: तो थोड़ा थम जाइएगा.
2: हफ्ते बाद आपको थोड़ा बताएंगे हम अब क्या प्लानिंग कर सकते
1: हैं. कुछ एक्साइटिंग हो सकता
2: है. समथिंग या वेरी एक्साइटिंग फॉर यू.
1: ईस्टर 2027.
2: या
1: नॉट माता रिकी.
2: ईस्टर 2027. ईस्टर 2027 बिकॉज प्लानिंग एडवांस में चाहिए ना हमें.
1: सो विद दैट थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. मुलाकात होगी आपसे कल. ख्याल रखिए अपना.
2: बाय.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम दिल के बुरे नहीं बस एक खराबी है

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिलाव उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई टिप्पणी पे ना करो टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: Happy Hour on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
1: और कानों में जस्ट

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

कोक स्टूडियो रिलोडेड आपके लिए जारी है, जिसमें कोक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान के गाने आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। कोक स्टूडियो पाकिस्तान के बारे में रेफएक्स में बताऊं तो पाकिस्तान का वर्जन काफ़ी फेमस हुआ देन द ओरिजिनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट, और कहा गया है कि कोक स्टूडियो एक्चुअली स्टार्टेड इन ब्राज़ील इन 2007, लेकिन पाकिस्तानी एडिशन जो 2008 में लॉन्च हुआ था ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और इफेक्टिव रहा और इफेक्टिवली डिफाइन किया द ब्रांड वर्ल्ड वाइड, जिससे बहुत सारे और भी लोग इंस्पायर हुए और लेटर वर्जन निकले इंडिया, बांग्लादेश और द मिडल ईस्ट और अफ्रीका में। फर्स्ट सीजन में लाइव ऑडियंस थे, क्या आपको पता है ये? मोस्ट फैंस जो कोक स्टूडियो के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं, ये क्लोज स्टूडियो फॉर्मेट में था, लेकिन सीजन वन जो पाकिस्तान में हुआ था ये लाइव ऑडियंस के सामने फिल्म किया गया था। और अभी फेमस जो इंटीमेट स्टूडियो सेटिंग है वो रखा गया है, लेकिन सबसे पहला जो था वो लाइव ऑडियंस के बीच में हुआ था। किसने क्रिएट किया कोक स्टूडियो पाकिस्तान, ये एक रेफएक्स में मैं आपको जानकारी बहुत ही जल्दी दूंगा। कुछ और बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको सुना रहा हूँ। कोक स्टूडियो रिलोडेड जारी है, क्रिश का साथ है।

0: Studio Reloaded on Hum.
1: कुक स्टूडियो रिलोडेड, आप सुनते रहो, रे एफ एक्स के बारे में बातें हो रही है और मैं क्रिश आपको ये बता रहा हूँ. कुक स्टूडियो, द आर्किटेक्ट ऑफ कुक स्टूडियो पाकिस्तान का नाम रोहिल हयात है. को फाउंडर और लेजेंडरी पाकिस्तानी बैंड वाइटल साइंस के ये बिलोंग करते हैं और इसका आइडिया था कि एक म्यूज़िकल लेबोरेटरी बनाया जाए जिसमें फोक, सूफ़ी और रॉक म्यूजिशंस कोलैबोरेट कर पाएंगे और ऐसा ही हुआ. नतीजा आपके सामने है, बहुत प्यारे प्यारे गाने आए हैं. जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक और रे इफेक्ट ये कि इन्होंने काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस को सर्वाइव कराया, रिवाइव किया, जैसे सराइकी, बलोची, बारूई, सिंधी और पश्तो जैसे रीजनल लैंग्वेजेस को इन्होंने रिवाइव किया है, ग्लोबल रीच दिया है थ्रू कोक स्टूडियो सॉन्ग्स. और काफ़ी लिसनर्स जो पाकिस्तान के बाहर हैं, इन्होंने ये लैंग्वेज को पहली बार के लिए सुना और कनेक्ट कर पाए या फिर अप्रिशिएट किया कि ऐसे भी लैंग्वेजेस है, ऐसे भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस है जो उर्दू और हिंदी के अलावा भी है. कुछ रेफिक्स अबाउट कुक स्टूडियो भारत बहुत ही जल्दी आपके लिए हम लेकर आएंगे. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और कुक स्टूडियो सॉन्ग्स मैं आपको सुनाता हूँ.

0: कॉक स्टूडियो रीलोडेड ऑन हम।
1: कॉक स्टूडियो रीलोडेड जारी है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग रे एफेक्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें जो कॉक स्टूडियो भारत और पाकिस्तान में कुछ रेया है, रे एफेक्ट्स है, वो शेयर कर रहे हैं। कॉक स्टूडियो भारत के बारे में बताएं तो ये अब ओल्ड इंडियन कॉक स्टूडियो की तरह नहीं है जो अभी कॉक स्टूडियो भारत है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ कॉक स्टूडियो एट एमटीवी, जो लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। इट इज़न्ट, क्योंकि आफ्टर एट ईयर गैप के बाद ये फ्रेंचाइज को रिबूट किया गया था और 2023 में कॉक स्टूडियो भारत आया कम्प्लीटली डिफरेंट डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी लेकर। और इंडिया को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला विद इंडियाज फर्स्ट रीजनल कॉक स्टूडियो। कहा गया है कि कॉक स्टूडियो भारत के अलावा कोका कोला ने लॉन्च किया कॉक स्टूडियो तमिल, जो एक फर्स्ट रीजनल कॉक स्टूडियो एडिशन रहा है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पहले नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ इंडिया में हुआ है, जहां पर कॉक स्टूडियो तमिल भी रिलीज़ किया गया था या लॉन्च किया गया था। और सॉन्ग्स काफ़ी इंडिविजुअली रिलीज़ होते हैं, कोई ट्रेडिशनल एपिसोड नहीं होता है। जैसे क्लासिक पाकिस्तान फॉर्मेट अगर देखा जाए तो कॉक स्टूडियो भारत ने शिफ्ट किया है टू रिलीजिंग स्टैंड अलोन ट्रैक्स, जिससे YouTube पर काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है ऑफ इंडिविजुअल स्टैंड अलोन ट्रैक्स जब रिलीज़ होते हैं, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता है इंस्टेड ऑफ ए फुल टेलीविजन स्टाइल एपिसोड्स जो पहले रिलीज़ होते थे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और गाने कॉक स्टूडियो से आपके लिए।

0: the moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: एक के बाद एक आपके लिए आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करेंगे. कोक स्टूडियो रिलोडेड जारी है और आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ऐसे गाने जो कोक स्टूडियो में आप सुनते हैं. रिलोडेड प्रोग्राम ऐसा होता है कि सारे प्यारे प्यारे कोक स्टूडियो सॉन्ग्स हम लेकर आते हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत के प्यारे गाने हैं. कोक स्टूडियो भारत के रेफेक्स में देखा जाए तो कहा गया है कि कोक स्टूडियो भारत वॉज बिल्ट अराउंड इंडियाज इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन और इंस्टेड ऑफ depending heavily on film music stars, इस project को design किया गया था कि इनको independent artist को ये प्राथमिकता देगा, spotlight देगा, fame देगा और folk musicians को भी appreciate किया जाएगा. rappers और regional performers across India को भी recognition दिया जाएगा, appreciation मिलेगा through this platform. और ऐसा ही हुआ क्योंकि India में इतने सारे प्यारे प्यारे singers है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है फिल्मी गानों के अलावा, तो कोक स्टूडियो ने वो कर दिखाया है. एक फैसिनेटिंग इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन करेंगे बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: Cafe on Hum. Driving you home.
1: Drive show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला.
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार.
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
6: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
5: दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari koi branch nahi hai.

0: स्टूडियो रिलोडेड ऑन हम
1: कुक स्टूडियो रिलोडेड जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। फैसिनेटिंग इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन। पाकिस्तान की बात करें तो 2008 में शुरू हुआ था, वहीं पर भारत 2023 में। बिल्ट अराउंड लाइव स्टूडियो कोलैबोरेशन इन पाकिस्तान, वहीं पर बिल्ट अराउंड डिजिटल फर्स्ट रिलीजेज इन इंडिया। पाकिस्तान गाने, पाकिस्तान कोक स्टूडियो इज़ फेमस फॉर सूफी फोक कवाली फ्यूजन, वहीं पर इंडिया में फेमस फॉर रीजनल लैंग्वेज एक्सपेरिमेंटेशन। और पाकिस्तान कोक स्टूडियो में काफ़ी पाकिस्तानी म्यूज़िक ग्लोबली एक्सपोर्ट किया गया था, तो वहीं पर इंडिया में इट शोकेसेस इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और फाइनली कोक स्टूडियो पाकिस्तान बिकेम द फ्लैगशिप कोक स्टूडियो ब्रांड वर्ल्ड वाइड, तो वहीं पर कोक स्टूडियो भारत रीइन्वेंटेड द फॉर्मेट फॉर स्ट्रीमिंग ऑडियंसेस। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड में। आज के लिए बस इतना ही।

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: Professional Financials है साथ आपके. Loan और Insurance एक छत के नीचे. No broker charge. Bus trusted advice. हर deal बनाए perfect right.
2: Refinance के लिए compare करें different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business Finance या Income Protection हो. हर step पर guidance perfect हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना future secure बनाए.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 098469934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: At Spotlight, it's the final day to save a mega 30% off store-wide, including Manchester Home Decor, Fabric Craft, Knitting Yarn, Curtains and Blinds. Yes, that's 30% off. Sale must end tonight. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
4: Bunnings Traders here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
5: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
6: अच्छा,
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
6: मिसेस सिंह का
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: हम टाइम चेक. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you. With the latest at 9, I'm Jeff Bryan. Both the two major parties have taken hits in the latest political poll. The One News Varian result puts Labour on 32%, down 5, and National on 29, down 1. All up, the current coalition would lose power. Justice Minister Paul Goldsmith has confirmed an investigation will be carried out into concerns raised about the conduct of Human Rights Commission Chief Commissioner Dr. Stephen Rainbow. And the Auckland City Centre Business Association, Heart of the City, has had a mass exodus of its board this evening. 6 voting members of the Executive Committee, including Chairman Malcolm McCracken, have resigned. In Sport, Rugby League with Machinery House, the Warriors squad to take on the Dolphins late on Saturday afternoon. Informed prop Jackson Ford is out for 10 to 12 weeks with that pectoral injury. Tanner Stowers-Smith coming into the starting front row. And in half an hour, the White Ferns and Scotland get underway at the T20 Cricket World Cup in Bristol. After some wasteful performances in the field, the White Ferns' title defence is on a knife edge.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
11: 9 कैफे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, हिट और हॉट गाने, बॉलीवुड्स लेटेस्ट हिट्स वो भी लेकर आते हैं. कुछ पुराने गाने, कुछ नए गाने, आपके अलग अलग सिंगर्स के गाने जो आप पसंद करते हैं. अलग अलग अप्रिसिएशन ऑफ आर्टिस्ट होता है. कभी आप नए गानों में अरिजीत सिंह को पसंद करते हैं तो वहीं पर पुराने गानों में अलका याग्निक के गाने आपको अच्छा लगता है. तो ये सभी कुछ ध्यान में रखकर हम ऐसे गाने लेकर आते हैं. स्पीकिंग ऑफ विच, अभी 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक में बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के गाने मैं पेश करने जा रहा हूँ. बहुत ही खूबसूरत सा लिस्ट है ये. 30 मिनट्स तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. एंजॉय कीजिएगा.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं. एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलन आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए. ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे, इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है. बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है. 25th of July को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने जा रहा है. ड्राई टिकट्स.com से आप टिकट्स ले सकते हैं. डबल पास जीतना है तो एक रैपिड फायर

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप वेस्ट साइड है ना वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में
4: किधर है हुनुआ
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं रिश्तों को और करीब लाएं कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
8: From friends to lovers to chaos. Get ready for a crazy ride. Cocktail 2, starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika Mandanna.
9: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
10: सब अपनी अपनी expiry date के साथ आता है. और expiry date के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, right?
8: Cocktail 2, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TVC.
11: Okay, listen up, team. Don't forget your bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
12: From DC Studios, Supergirl is crashing into cinemas this Thursday. Starring Millie Alcock with David Corenswet as Superman and Jason Momoa as Lobo. Don't miss this epic galaxy-hopping blockbuster. Supergirl in cinemas Thursday.
13: Let's get to it.
12: Rating TBC.
0: Bollywood ka asli blockbuster.
14: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Hum.
0: Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
15: Let's go!
16: You're listening to Krish on your number one, hum playing Bollywood's biggest hits. हम के साथ जब भी आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होते रहता है कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हम लेकर आते हैं जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होता है वॉट इफ ये ईस्टा सिर्फ एक लॉन्ग वीकेंड नहीं रहता लेकिन सन स्टोरीज केओस और ए क्र्यू साथ में कहीं पर जाते एंड ए क्र्यू हेडिंग ऑफ टुगेदर तो अगर आपको थोड़ा कुछ हिंट मिल रहा है या आप सोच रहे हैं क्या किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हमें सुनते रहना है बिकॉज यू वुड नॉट वांट टू मिस दिस ये सूचना ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको सुनना है हमारे साथ होकर इसलिए आपको हम के साथ चिपके रहना है हमें सुनते रहना है क्योंकि ये ईस्टा सिर्फ जस्ट अ लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा लेकिन सन स्टोरीज केओस और अ क्र्यू हेडिंग ऑफ टुगेदर इसके लिए आप हमें सुनते रहो मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ जारी है आपके लिए हम पर नाइट कैफे

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम podcast के बारे में जितना बातें करें उतना ही कम है interesting information इनके साथ होता है. Unfiltered Drive में recently रिज़बे और सैंडी ने बातें किया निवेदिता विज के साथ में discussing thalassemia and its impact on the South Asian community. तो podcast में ये इन बातों पर गौर फरमाया गया है और आप ज़रूर सुने. One simple screening family का future बदल सकता है. तो आप last minute तक इंतज़ार ना करें, too late तक इंतज़ार ना करें. Silent carriers एक hidden जेनेटिक थ्रेट होता है जो साउथ एशियन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बन चुका है. क्यों अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूरी है? वाइटल कन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए. और क्यों साउथ एशियंस हायर रिस्क होते हैं फॉर थैलेसीमिया और क्या आपको जानना ज़रूरी है? निवेदिता शर्मा विज के साथ ज़रूर जो बातें हुई है ये आप सुने. ये एक सीजनड हेल्थ प्रोफेशनल है, अ मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस पायनियरिंग सेल्फ केयर. और साथ ही में अगर और जानकारी के लिए आप ड्राइव टेक्स्ट करते हैं 5599 पर तो फुल ऑडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगा. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये सुनने के लिए आप BF टेक्स्ट करें 5599 पर और कैचअप कीजिए अपने आप को या अपने साथ ऑन पॉडकास्ट जो हम पर आपके लिए जारी है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं
4: है. Night Cafe.
6: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करेंगे आपके लिए। ओकलैंड के लिए सूचना है फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन की ओर से कि वेंसडे टू फ्राइडे यानी 24th to 26th June ऑफ दिस ईयर दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक वोटर रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके लिए। मैंगरी सेंटर पार्क आप जा सकते हैं, 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी। तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं मैंगरी सेंटर पार्क, 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी। दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक होगा, 24th to 26th of June तक। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए। नाइट कैफे जारी है।

0: Murphy on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा साथ देते रहे, क्योंकि ऐसे गाने हैं जो आपको पसंद आते हैं, ऐसे गाने जिसकी फरमाइश आप हमेशा करते रहते हैं और डेडिकेशन और शाउट आउट भी आप करना चाहते हैं। तो वैसे ही गाने मैं लेकर आया हूँ बैक टू बैक सॉन्ग्स में, जो अभी 30 मिनट्स के लिए आपके लिए बजेगा। इस घंटे पर मैं आपको इंटरेस्टिंग खबरें बताऊँगा, स्पेशली गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर जो एक इवेंट होने जा रहा है, इस पर भी आपके साथ बातें होगी। बहुत कुछ हम लेकर आए हैं आज प्रोग्राम में आपके लिए। इस घंटे पर ये हमारा फाइनल आवा है और इसमें भी बहुत कुछ रहेगा। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। क्रिश के साथ है और मिडनाइट तक हम आपका साथ देंगे। बैक टू बैक सॉन्ग्स में अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, मीका और कानिका, दिलजीत दोसांझ, बादशाह, तनिष्क बागची जैसे कलाकारों को आप सुन पाएंगे। अमेजिंग अमेजिंग लिस्ट सॉन्ग्स और आर्टिस्ट यहाँ पर आपके लिए।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Auckland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer, jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer, jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega, dekhne को मिलेगा. एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierticket.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है, 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: play on Hum.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Cafe on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ke saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date. Ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए, और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम

ट्यूजडे नाइट नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है कल वेंसडे को, हम आ जाएंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग खबरें लेकर जो कि रात 12 तक चलेगा। 8 to 9 कल रहेगा आपके लिए मिड वीक मसाला, जहां पर बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अपना बहुत ही ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला? कौन बोला?

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 27 99 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट इन सेट।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Budget gaane.

ਮਾਲਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰਾਜ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ।

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम हाँ।

0: do.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with
3: क्या?
4: The cold weather.
3: क्या? कौन है? अरे
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: Night Flight.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: Night Flight

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रिस्पांस. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: Reliance Ventilation System।
7: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: Moisture और ventilation का problem लगता है।
7: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
6: Oh, that's not good। हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer। और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
8: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111। Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
9: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
10: And who Tejal Vyas?
9: हमें अभी रहा छे हमारू नवो नक्कोर सुपर हिट कॉमेडी नाटक गुज्जूबाई नी
10: एक्सचेंज ऑफर।
11: Friday 3rd July Victory Convention Center पर Learning HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria नू नवो नाटक गुज्जूबाई नी एक्सचेंज ऑफर। हसी हसी ने लोटपोट थवा तैयार थे जाओ। टिकट्स जल्दी बुक कर ले जाओ। फोन करो 0212446278 पर।
0: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Businesses are being urged not to dismiss the bleak results of an employment survey. The Westpac McDermott Miller Index shows that confidence has fallen to a 22-year low. Economist Michael Gordon says people are wary.
13: Their cost of living has gone up. They don't expect to be able to get a pay increase to offset that. And I think that's accurately reflecting the state of the labour market at the moment.
12: It's believed changes in maternal population are helping driving up C-section rates. It had a record high of 34% in 2024, up 8% from a decade ago. College of Midwives at Te Pāia Bradshaw says several factors are at play.
14: The average maternal age is increasing. There's more complex health profiles. We're also seeing more assisted reproduction.
12: A fleeing driver on the wrong side of the road collided with several vehicles and narrowly missed pedestrians in Auckland. The drama began when the Eagle helicopter crew sighted a vehicle connected to a man sought by police in the Mount Roskill area yesterday afternoon. Damage to the vehicle eventually caused it to stop and a 54-year-old man was arrested. A UN agency is planning to help evacuate 11,000 stranded seafarers in the Strait of Hormuz. The operation will be carried out with help from Iran, Oman, the US and wider maritime industry. And sport, Cristiano Ronaldo scored twice as Portugal lead Uzbekistan 3-0 approaching halftime of their FIFA World Cup Group K match in Houston. Football updates brought to you by Hisense. And the White Ferns have kept their T20 World Cup title defence alive with a 6-wicket win over Scotland in Bristol. They chased down 132 with 10 balls to spare, Izzy Sharp scoring a career-best 62 runs.
15: Coming into today, we knew we needed a win. Now we can move to England game, which is another must-win for us.
4: Sports News,
0: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं, Anne's Funeral Home and On-site Cremations.
17: चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी यानी ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोयटोय जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। चार्ल्स स्ट्रीट सुबह फीजी के स्वर्गीय मनीराम की पत्नी यानी ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा राय की मां चंद्रवती सिंह की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप 19 रीगन रोड पापाटोए टोए जा सकते हैं या 279-3894 पर संपर्क कर सकते हैं। नगम्मा देवी के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर संपर्क कर सकते हैं। नगम्मा देवी के पति यानी मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉब हैंडीमैन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0211-771-181 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुबह फीजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुअंगा सुबह शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहिनीश और रोविन जोखन की मां होटन स्ट्रीट सुबह फीजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शनिवार को 1 बजे वतुअंगा सुबह शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। एलेजली की चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 2 बजे मेनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0272003343 पर संपर्क कर सकते हैं। एलएसडी की चंद्रा नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र यानी अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामलू नायडू की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 2 बजे मेनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 0272003343 पर संपर्क कर सकते हैं।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
18: शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
17: 14.5 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 12 degrees आज होने वाला है। आज दिन भर बारिश होगी, रह रहकर गंभीर बारिश होगी। शाम के वक्त इट शुड ईज आउट अ लिटिल बिट। सनराइज 7:34 AM पर, सनसेट 5:14 PM पर होगा।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
1: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
2: वक्त आ चुका है कि अपना वादा जो हमने कल आपसे किया था उसे निभाएं और चार घंटे का एक और दिलकश सफर जो है ये शुरू करें आपके लिए। ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवा पर आपका स्वागत हम कर रहे हैं। आज की ये सुबह आपको मुबारक हो और आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, जहां पर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आज सुबह सुबह आपका साथ देने के लिए हम तो एकदम तैयार हैं, एकदम एक्साइटेड हैं, पर उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ आज इस सफर में बने रहेंगे।
2: बिल्कुल बने रहेंगे, क्योंकि ये सफर जो है हमारे और आपके साथ मिलकर एक साथ होने से ही पूरा होता है। और ये सफर आज का आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बनाने की अपनी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे।
3: तो बस आप भी हमारे साथ रहिएगा और ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ, जबकि हम भी करेंगे क्विक कैचअप, तो उम्मीद है कि आप भी काफी कुछ आज जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे हमारे साथ ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

0: Sunny Side Up.
1: So, आज की सनी साइड स्टोरी आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, या सनी साइड अप स्टोरी, सॉरी, इट्स समथिंग रियली ब्यूटीफुल एंड दिस टाइम अराउंड एक बार फिर आपके लिए ये कहानी जो है, इट्स नॉट इन रिगार्ड्स विद जस्ट द फैक्ट कि किसी इंसान ने किसी इंसान के लिए कुछ किया, बट द फैक्ट कि कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में जो रिश्ता होता है वो दरअसल यू नो इतना बेहतरीन और इतना गहरा हो जाता है कि वो चीज़ें खबरें तक पहुंच जाती है और फिर खबरों के जरिए हम तक जो पहुंचती है तो वो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं. सो आज की स्टोरी, आज आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, दिस इज़ अबाउट ब्राज़ील. ब्राज़ील में अपेरेंटली कहा गया है कि एक ऐसा लॉ जो है ये पास किया गया था 2020 में. Now, I don't know how many of you know this, but 2020 में एक लॉ पास किया गया था जिसे सेंसाओ लॉ जो है ये कहा गया है, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ डॉग जिसे इतना अब्यूज़ किया गया था कि जब उसके अब्यूज़ के किस्से जो हैं ये पूरी यू नो ब्राज़ील में सामने आए तो लोग बहुत अपसेट हो गए थे ये जानकर कि किस तरह से उसे टॉर्चर जो है अब्यूज़ जो है ये किया गया. तो ये लॉ बनाया गया था, क्रुएलिटी अगेंस्ट डॉग्स एंड कैट्स इन अ सीरियस क्राइम, जो एक पनिशेबल प्रिजन टाइम फाइन और बैन ऑन ओनिंग एनिमल्स जो है ये लागू किया गया था. Prison time, I think, was around 5 years in the prison. And Brazil didn't just stop there. Because in 2025, mein, the country apparently expanded protections by banning cosmetic tattoos and piercings on pet as well. And if someone has done this, then they will have to face harsh penalties. Ka samna jo hai, ye karna padega. A powerful reminder that animals are not just objects. But they also feel pain, they also feel scared, they also feel love, and they also deserve protection. So it was a historic move that Brazil had made in 2020, around 6 years ago. और जब उन्होंने ऐसा एक लॉ पास किया उसके बाद चलकर उसे एक्सपेंड करते हुए जस्ट लास्ट ईयर उन्होंने और भी चीज़ें इसमें ऐड की, बिकॉज पीपल वर एक्चुअली यू नो अब्यूजिंग देयर पेट्स, अब्यूजिंग द एनिमल्स अराउंड.
2: यू नो इंसान और जानवर के बीच में जो रिश्ता होता है, जो आप ओवर टाइम बनाते हैं, आप एक जानवर को लेकर आते हैं अपने घर पर, वी कॉल इट अ पेट, और फिर उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, एंड इन रिटर्न वो भी आपको बहुत प्यार देता है. नॉट ओनली प्यार देता है, वो हमारे वेलबींग का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वेज रिसर्च जो किए गए हैं ना कि आपका पेट जो है ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, और भी कई चीज़ें जो हैं अक्सर कही जाती हैं. तो यूँ कह सकते हैं कि ये रिश्ता जो होता है बहुत ही पाक होता है, एंड इट्स रियली गुड कि यू नो इस रिश्ते को अप्रिशिएट किया गया, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए. एंड ऑब्वियसली किसी भी समुदाय को आप देख लें, किसी भी कंट्री को आप देख लें, किसी भी सोसाइटी को आप देख लें, एक दो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उस सिस्टम को या फिर उस रिश्ते को या कोई भी चीज़ हो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं या उसको गलत तरीके से पेश करते हैं. तो ये भी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं इनको कायम रखा जाए और उनको सुरक्षा जो है ये भी दी जाए. सो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप.
1: यस, तो डेफिनेटली ऐसी और भी जो स्टोरीज है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आपके लिए हम लेकर आते हैं, एंड वी स्टार्ट विद सच पॉजिटिव न्यूज, सच पॉजिटिव स्टोरीज, ताकि हमारे सुबह की, हमारे दिन की शुरुआत भी ऑन अ पॉजिटिव नोट जो है ये हो.

0: चाहे आप हमके दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Whether you have a tickly or razor blade sore throat, there's a Difflam sore throat lozenge to soothe or numb your pain. Definitely Difflam. Sore throat sorted. Always read the label. Use as directed. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health Auckland.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
5: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
6: As a baby, I was burnt in hot water.
7: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
8: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
9: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari good brands bhi hai.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
13: Subah ke mukhya samacharon mein. Trump administration claim kar rahi hai ki Iran nuclear inspections of free trade par maan gaya hai, par Iran isse puri tarah deny kar raha hai. Ye sari badi baatein signed मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहीं नहीं है और अनफ्रीज्ड असेट्स का पैसा यूएस क्रॉप्स पर खर्च होगा या नहीं, इस पर दोनों साइड्स के बीच झगड़ा चल रहा है। ट्रंप के पुराने झूठे दावों और ईरान के अथॉरिटोरियन नेचर की वजह से अब दोनों में किस पर भरोसा किया जाए, ये बड़ा सवाल विश्वव्यापी तौर पर उठ रहा है। भारत के जम्मू और कश्मीर कांग्रेस में चल रही एंटी पार्टी एक्टिविटीज और आपसी लड़ाई की जांच के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 3-member पैनल बनाया था, वो जल्द ही अपनी प्रोब रिपोर्ट कांग्रेस हाई कमांड को सबमिट करने वाला है। इस मामले में 2 सीनियर लीडर्स पर पब्लिक स्टेटमेंट्स देने के चलते एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि तारा चंद और विकाल रसूल वानी के रेबल फैक्शन ने प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा पर करप्शन और सेपरेटिस्ट एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। फिजी में एक चाइनीज नेशनल जो $20 million से ज्यादा टैक्स फ्रॉड केस में फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स के इन्वेस्टिगेशन के घेरे में था, स्टॉप डिपार्चर ऑर्डर के बावजूद फिजी से फरार हो गया, जिसकी जांच अब फाइकिक और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री कर रही है। फिजी वलिज की एक रिपोर्ट के अनुसार इमिग्रेशन मिनिस्टर विलियामे नोपोतो ने कन्फर्म किया है कि इस मामले में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स 2019 से चल रहे इस टैक्स इवेजन केस पर काम कर रही है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत फिलहाल एक मैच ग्रुप के का पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दूसरे हिस्से में ये खेल जारी है और अभी पोर्चुगल की जीत उज्बेकिस्तान के खिलाफ 4-0 से हो रही है। आज बाकी के मैचेस जो खेले जाएंगे उनकी ओर अगर देखें तो सुबह 8 बजे इंग्लैंड और घाना के बीच मैच होगा, 11 बजे पनामा क्रोएशिया से खेलेगा और 2 बजे कोलंबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच खेल होगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
12: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
10: Bollywood's most wanted.
14: Gundi khadao ya seedha andar aao.
12: Na A game.
10: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आज का पहला चैट बस्टर जो आपके लिए ऑन द शो हम लेकर आ रहे थे फ्रॉम द फिल्म बेफिक्रे, 2016 में ये फिल्म आई थी. फिल्म तो खैर अगर देखा जाए तो काफी बुरी तरह से पिटी थी बॉक्स ऑफिस पर, विद रणवीर सिंह एंड वाणी कपूर जिन्होंने लीड रोल्स प्ले किए थे इसमें. बट दिस वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग पापोन की आवाज में आज आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम शामिल कर रहे थे. फिलहाल खबरों में अगर देखिए बॉलीवुड की ओर भी काफी तरह की चीजें हो रही यार. आए दिन तो यू नो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन बॉलीवुड की हर एक चीज जो है ये खबर बनती जा रही है. बट वेरी इंटरेस्टिंग मूवी दैट हैज बीन अनाउंस्ड और जो ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता भी चल गई है, जब वो मैं वापस आऊंगा ये देखने के लिए सिनेमाज में गए. बिकॉज जब आप ये फिल्म सिनेमा में देखने गए तो शायद आपने एक टीजर भी देखा होगा एक फिल्म का जिसका नाम है ईटा. और ईटा जो है ये इसका टीजर जब कि रिलीज किया गया तो श्रद्धा कपूर का लुक इज व्हाट पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. द मच अवेटेड टीजर ऑफ ईटा हैज फाइनली रिलीज्ड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जहां पर आप श्रद्धा कपूर का एक ग्लिम्स देख सकते हैं इन व्हाट अपीयर्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रोल्स ऑफ हर करियर. क्योंकि ये जो कैरेक्टर ये प्ले कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ द लेजेंडरी मराठी तमाशा आर्टिस्ट विट्टा भाई. और विट्टा भाई का जबकि किरदार ये निभा रही हैं तो ये 28 अगस्त को अराउंड रक्षाबंधन के वीकेंड ये फिल्म रिलीज होने वाली है जिसे मैडॉक फिल्म्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं.
1: सो लेट्स सी और इस फिल्म के बारे में क्या हमें देखने पढ़ने सुनने को मिलता है. दूसरी तरफ आज एक ऐसे पर्सन के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं जिनको बॉलीवुड में ब्रेक मिलने में, इंडस्ट्री में ब्रेक मिलने में 20 साल लग गए.
0: 20 साल
1: 20 years.
0: Wow, that's a very long time just to get a break.
1: 2006 or 2007 was the time, I think. 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 जो है ये आया था.
0: हाँ?
1: उस समय पर दीपाली सहाय की उम्र 18 साल थी जहां पर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. बट शी गॉट एलिमिनेटेड. लेकिन उस टाइम पर जो होस्ट है मिनी माथुर, उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भर में लोग दीपाली
0: की गाने गुनगुनाएंगे.
1: हाँ, आपके साथ आपका गाना जो है ये गुनगुना.

0: इनका एक विश था अपेरेंटली इनके जन्मदिन से या जन्मदिन के ही दिन जब ये केक कट करने जा रही थी तो इनके हस्बैंड ने इनसे पूछा कि ऐसी कोई एक विश जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, एनी सच विश ऑफ योर्स. तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे अय्या रहमान के लिए एक गाना गाना है. एंड सच अ थिंग हैपेंड कि उन्होंने ये विश मांगा अपने जन्मदिन के ही दिन केक कट करने से पहले. एंड ऑन द सेम नाइट उनको अय्या रहमान की टीम जो है इन्होंने इंस्टा पर फॉलो करना शुरू किया. व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग दैट अ मंथ लेटर इनके पास कॉल आया कि अय्या रहमान उनके साथ एक गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं. एंड दैट्स व्हेन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग हैपेंड. इनफैक्ट 20 मिनट्स में इन्होंने ये जो गाना है ये रिकॉर्ड कर दिया था.
1: वाओ, 20 मिनट्स.
0: यस, तो आपके लिए वो बहुत ही पॉपुलर वायरल सॉन्ग जो है ये हम जरूर लेकर आएंगे बस थोड़ी देर में.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: 15% off airport parking.
6: A high of 17, wet with a heavy rain watch all day. Southern coming in, a crash blocking lanes after Gillies Ave has been sorted. We're just slow on the motorway Papakura to Mount Wellington, half an hour at Manukau to the city. Southwestern, quite slow southbound from Onehunga right to the airport terminal, especially slow before the turn off to Manawa Bay. Northwestern, 30 minutes in from Massey, just slowing down at Northern, looking okay.
5: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
7: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
8: Kyun? Kya hua?
7: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne hi documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
9: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
10: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
11: We've got double glazing.
10: Have you still got that cold, damp feeling?
12: Yeah, we do.
10: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
13: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
14: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
15: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
14: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
16: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
17: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 20 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आज 24th ऑफ जून है. बर्थडे और एनिवर्सरी मैसेजेस अगर आपने नहीं भेजे हैं, रिमेंबर 7:30 से पहले आपके मैसेजेस जो हैं कि हमारे पास आ जाने चाहिए ताकि हम आपको इस प्रोग्राम में विश कर सकें. गुड मॉर्निंग के मैसेजेस दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो 2-3 लोग ही अब रेगुलर्स जो है ये बाकी रह गए हैं. Starting off with Mandy. Good morning, guys. आपको भी a very good morning.
3: आज भी शायद जिम जा रही है सुबह सुबह, तभी इनका मैसेज आया. सुबह 4 बजे के अराउंड, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव अ नाइस डे, गणेशा ब्लेसिंग्स. ये मैसेज हमारे पास भेजा बॉबी मान जी आपने, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
2: राम राम, जय श्री कृष्णा, हैप्पी वेंसडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर माटा माटा, आपको भी हर सुबह हमें याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू आप सभी के साथ, आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर.
2: तो एक और मैसेज है, राम राम, जय श्री गणेश, विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड वेंसडे. विमलेश और प्रिया, इनका भी मैसेज जो है गया है. तो अब यू नो एज टाइम मूव्स ऑन, पहले

0: एक दिन में लगभग 10-15 मैसेजेस जो है गुड मॉर्निंग के आते थे, अभी 3-4 ही बाकी रह गए हैं। बट थैंक यू सो मच आपके वक्त, आपके मैसेज के लिए।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए भी, रियली एंड ट्रूली अप्रिशिएटेड। बाय द वे, इधर चलिए ब्रेकफास्ट कैचअप जबकि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो क्विक कैचअप आपको याद दिला दे, आज वेंसडे है और आज लोटो पावरबॉल $12 million है, डोंट फॉरगेट टू ट्राई योर लक ऑन दैट। और दूसरी ओर आज आपको बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन पर 10 सेंट्स टू 12 सेंट्स ऑफ पर लीटर फ्यूल जो ये मिलेगा, सो इफ यू हैव टू फिल अप टुडे मेक श्योर आप चेक कर ले कहां कहां पर ये डील आपके लिए अवेलेबल है।
0: और आइए वो गाना जो है ये भी सुना देते हैं आपको ना।
1: जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे इस गाने के बारे में और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक आपके लिए, दीपाली सहाय की आवाज में, या रहमान की म्यूजिक पर, फ्रॉम द फिल्म मैं वापस आऊंगा।

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
7: Papakura Toyota, fuel saver month.
8: A heavy rain watch all day, a high of 17 degrees. Southwestern motorway slower than normal southbound this morning, basically the whole journey, including if you break off to the airport terminal, quite a bit of traffic before the Manawa Bay turn off. Southern motorway, 28 minutes in from Manukau, we're slow Papakura through to Mount Wellington. Northwestern, 30 in from Massey, slow patches from there. Northern, slow Constellation to Takapuna.
7: Buy a used Toyota, get a $500 fuel voucher. Terms apply. Visit Papakura Toyota.
9: Professional financials hai saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
10: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
9: Business finance, इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
10: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। India's first 2000 crore fake film, Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
11: Ek zabardast kahani hai.
12: Aur title kya hai film ka?
11: Welcome to the Jungle.
3: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner, Forum Films, rating TBC.
13: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
14: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki, all together Auckland.
15: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
16: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast Catch Up. Throwback.
17: अभी 11 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। 11 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपकी खातिर इस प्रोग्राम में हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन अभी एक स्पेशल मौका है आपके पास।
18: आज एक सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, जबकि फीफा वर्ल्ड कप जो है ये जारी है, और ऐसे में यू नो फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज वी मस्ट से इट्स एवरीवेयर। मतलब आप सोशल मीडिया ओपन कर देखो, आपको ऐसा पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर मैच जैसे फिनिश होता है एंड यू सी द क्रेज आउट देयर, पीपल जो है कितना लव करते हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को। तो इसके बारे में तो हमेशा बातें जो है ये होती रहती है। तो आज का हमारा सवाल जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है हमारा। आप को हमें बताना है इस सवाल का जवाब, जिसका आंसर आप 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा आपको ये बताना है कि वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट भी किया था और उसे जीता भी था। द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट किस कंट्री ने होस्ट किया था और उस कंट्री ने इसे जीता भी था।
17: ओके, दैट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से आपको इसका जवाब जो है ये मिल जाना चाहिए। और आपको सबसे पहले लिखना है BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम। जितने सही जवाब आएंगे आपको इस हफ्ते के ड्रॉ में हम शामिल करेंगे, जहां पर फोर्टून की ओर से हैम्पर जो है ये जीतने का मौका है आपके पास। 10 kg चक्की फ्रेश आटा, 5 kg बिरयानी राइस, और साथ में 5 liter ऑयल, सिंपली कैनोला ऑयल, टमेटो पेस्ट और भी तमाम चीज़ें इस बहुत ही शानदार हैम्पर में इस वीक का आप जीत सकते हैं फोर्टून की ओर से। बट राइट नाउ सवाल अच्छी तरह से सुन ले आखिरी बार, और उसके बाद जवाब आपको भेजना होगा।
18: तो सवाल हमारा वेरी इजी, आपको बस इतना बताना है कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था और उसे जीता भी था. एंड द ईयर दे होस्टेड द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, चलो वो भी आपको बता देते, इट वॉज 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था, लेकिन बाय विच कंट्री. एंड दे हैड ऑल्सो वोन द वेरी फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एज वेल.
17: तो अभी से लेकर 7 बजे तक का टाइम है आपके पास, न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद जो करेक्ट आंसर है ये भी हम आपको देंगे. इन द मीन टाइम बी एफ आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 14.5 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 12 डिग्रीज। आज दिन भर बारिश होती रहेगी, रह रहकर कुछ तेज हवाएं चलेंगी। सनसेट सनराइज 7:34 AM पर और आज का सनसेट 5:14 PM पर होगा।
0: Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Good morning, morning madness.
1: Good morning and welcome to Morning Madness on Hum, playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए जारी है। RPS Styles की ओर से Morning Madness हर सुबह हम लेकर आते हैं। इस घंटे तो तमाम चीजें होंगी। Starting off with your Rashi vibes.
3: बिल्कुल, आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा ये पता करेंगे हम। यू नो, नॉट जस्ट यू गाइज, आई डोंट नो अबाउट आपके बारे में, मुझे ज्यादा नहीं पता, बट आई ऑल्सो फॉलो माई हॉरोस्कोप्स। जिस दिन हॉरोस्कोप में मेरे लिए भी कुछ ऐसी यू नो नेगेटिव चीज़ें थोड़ी बताई जाती, मैं थोड़ा ऐसे केयरफुल हो जाती हूँ। एंड जिस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ओके माई डे विल बी सच। तो ऑल ऑफ अ सडन वो पॉजिटिव माइंडसेट जो ये बन जाता है कि यार आज तो मेरा हॉरोस्कोप में बताया कि मेरा दिन ऐसा ऐसा जाएगा, तो पूरा दिन वैसा जो ये दिमाग में बना रहता है एक्चुअली में वैसा जाता है। इट कुड बी द पावर ऑफ माइंड ऑल्सो, बट यू नो वट एवर द सिचुएशन इज, वेदर यू बिलीव इट और यू फॉलो इट क्लोजली, आपके लिए राशि वाइब्स थोड़ी देर बाद हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले, ये मैंने कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में पढ़ा एंड आई वॉज लाइक कि कितने लकी है ना हमारे कंट्री के जो कुछ ऐसे MPs हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कुछ भी कर ले और उनसे जब सवाल पूछा जाए तो कितनी आसानी से अपने सवाल का जवाब देकर वो सिचुएशन से बच जाते हैं।
1: ओके,
3: नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज़ आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टोरी जिसे काफी यू नो लार्ज सेल पर कवर भी किया गया था। आई डोंट नो इफ वी हैड डिस्कस्ड दिस ऑन द ब्रेकफास्ट शो नॉट, बट मैंने सोचा कि ना आप सबके साथ इस घंटे की शुरुआत में इसके बारे में बातें की जाए। सो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स एंड ए पर्सनल लिमोजीन ड्राइवर ऑन स्टैंड बाय फॉर आवर्स, और ये हुआ था शेन जोन्स के लिए, जिसकी वजह से उनका जो बजट है ऑन हिज मिनिस्ट्रियल ट्रिप टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग कॉन्फ्रेंस जो कनाडा में हुआ था इन मार्च लास्ट ईयर, वो बजट से ओवर बजट चले गए। बहुत ज्यादा वो और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ये ऑब्टेन किए गए थे बाय अ वेरी यू नो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, जिन्होंने से शेयर भी किया द डिटेल्स बेसिकली, जिसमें बताया गया कि कैबिनेट ने अप्रूव किया था अ बजट ऑफ $33,068 इंक्लूडिंग $15,600 फॉर प्रीमियम इकोनॉमी फ्लाइट्स फॉर टू पीपल और $10,000 फॉर फोर नाइट्स अकोमोडेशन के लिए एंड फॉर टू, उन्होंने ये जो अकोमोडेशन इसके लिए ये अप्रूव किया था, एंड $2,200 फॉर मील्स, साथ में $3,193 फॉर टू VIP ऑल एक्सेस पासेस, $500 फॉर ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा आई थिंक $1,575 जो है ये एक और एक अप्रूवल जो है ये दिया गया था, बट द फाइनल बिल वॉज नियरली डबल द अमाउंट। सो अ बजट ऑफ $33,000 जो है रफली अराउंड $33,000 ये अप्रूव किया गया था, लेकिन बिल इनको आया डबल दैट अमाउंट, $63,000 जो है ये शेन जोन्स ने स्पेंड किए थे ऑन दिस ट्रिप एंड डिस्पाइट द कैबिनेट हैड अप्रूव $33,000। सो जब उनसे सवाल किया गया, वन ऑफ द जर्नलिस्ट वेंट लाइक उनको मौका मिला उनसे पूछने का कि आपने यू नो एक लिमोजीन जो है तीन दिनों तक आपने ये स्टैंड बाय पर रखी थी, तो उन्होंने बताया बोले कि
1: क्या बोले
3: व्हाई डिड यू नीड अ प्राइवेट लिमो, ये जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, ऑन स्टैंड बाय फॉर 24 आवर्स ओवर 3 डेज, ये जर्नलिस्ट का सवाल था। उनका रिप्लाई, उन्होंने कहा आई प्रिज्यूम दैट्स व्हेन आई वाज इन चिली, साथ में कोल्ड स्नो ब्लिजर्ड रिडल्ड टोरंटो, दैट वाज हिज एक्सक्यूज कि वो चिली स्नो कोल्ड और ब्लिजर्ड टोरंटो में थे। ब्लिजर्ड रिडल्ड टोरंटो में थे जहां पर स्नो हो रहा था, बहुत ठंडी थी एंड इसी वजह से उनको वो लिमोजीन 3 दिनों तक स्टैंड बाय पे रखना पड़ा।
1: अरे मंत्री महोदय तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनको गाड़ी के अंदर ही सोना था।
3: हाँ, अभी आगे सुनो ना।
1: हाँ,
3: फिर उसके बाद जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कुड यू टेक अ टैक्सी, तो उन्होंने सुना नहीं उनका सवाल, उन्होंने बोला आई बेग यू पार्डन, तो जर्नलिस्ट ने वापस से बोला कुड यू हैव टेकन अ टैक्सी, तो उस पर उनका रिप्लाई आया ओ लुक These matters, they are attended by the officials. इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है. वो तीन दिनों तक जो लिमोजिन खड़ा था उसमें उनकी कोई हामी नहीं थी. भले ही वो इनिशियली उन्होंने जवाब कुछ और दिया था, वो ऑफिशियल्स द्वारा हुआ, ये इनका रिप्लाई था. फिर उन्होंने जर्नलिस्ट ने ये पूछा, डिड द ऑफिशियल्स बुक इट फॉर यू? तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि आई प्रिज्यूम दे डिड, या ये उनका रिप्लाई था. एंड जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आपने इसकी मांग की थी, डिड यू आस्क फॉर इट, तो उन्होंने कहा कि ऑल दोज डिटेल्स आई एम अप इन द व्हील हाउस बेसिकली, एंड ऑल दोज डिटेल्स वुड हैव बीन बेसिकली अटेंडेड टू बाय द ट्रिप ऑर्गेनाइजर. तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं, बल्कि ट्रिप ऑर्गेनाइजर ने ये सारी चीजें की है, तो आप उनसे वो डिटेल्स ले लीजिए. फिर उनसे सवाल पूछा गया, व्हाई डिड यू गेट अ साइन ऑफ फॉर $15,000 वर्थ ऑफ फ्लाइट्स फॉर टू ऑफ यू, जहां पर आपने $40,000 बिजनेस क्लास पर फ्लाइट्स पर स्पेंड किया. 15,000 इकोनॉमी के लिए थे, तो 40,000 बिजनेस क्लास में क्यों आपने स्पेंड किया?
1: क्यों?
3: तो उस पर उन्होंने कहा, टू माई बेस्ट नॉलेज, वो दरअसल उनकी गलती नहीं थी, वो कुछ किसी तरह का कॉकअप हो गया था, ये उन्होंने कहा. ओरिजिनल बुकिंग के साथ कुछ गलतियां हो गई और इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास की बुकिंग हो गई.
1: आई थिंक मैंने भी कहीं पर उनके बारे में पढ़ा था, जहाँ जब आई डोंट नो इफ दिस इज द सेम ट्रिप जहाँ पर उसके उन पर सवाल उठाया गया था, आई कांट रिमेम्बर. तो उन्होंने कहा था कि जो बिजनेस क्लास टिकट्स वगैरह हैं वे बुक्ड प्रायर टू द अप्रूवल, और बाद में चलकर अप्रूवल जो है ये आया था. बट क्या,
3: आई मीन वही मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स सो इजी फॉर देम, कि कुछ भी जब उनसे सवाल किया जाता है वो कोई भी आंसर देकर बच जाते हैं, निकल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या सिंपली आंसर ही नहीं करते हैं. एंड इट्स नॉट रियली फेयर, यू नो, बिकॉज ऑल दिस मनी इज नॉट बेसिकली कमिंग फ्रॉम एनी वेयर, ऐसे ही झाड़ पे नहीं लगे हैं. दीज आर द टैक्स पेयर्स मनी विच आर बीइंग यूज्ड इन सच थिंग्स, एंड इट्स अकाउंटेबल फॉर. आपको सही तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए. बजट आपका जितना भी अप्रूव था, डबल द अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया, एंड यू आर नॉट इवन टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. यू जस्ट यू नो शविंग इट ऑफ योर शोल्डर, जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है. बट इफ यू लुक एट इट, अगर एक इतने बड़े मिनिस्टर के बजाय कोई और ऑफिशियल जो छोटे पद पर होता, अगर वो ऐसा कुछ करता, तो उसका एक बहुत बड़ा इशू बनता. बट इस मामले में
1: okay, what we can do, maybe let's try sending some questions across to Honorable Shane Jones और देखें कि क्या उनकी ओर से या उनके ऑफिस से कोई जवाब जो है ये आता है या नहीं. तो we will try and send some questions across and see कि क्या हमारे सवालों के जवाब वो देते हैं या फिर ऐसे ही टाल जाते हैं. सो वी विल ट्राई एंड गेट इन टच विद हिम. इन द मीन टाइम, आपने कभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया है इन अ फ्लाइट?
3: हाँ जी किया, एक बार किया, आपकी मेहरबानी से. बट आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे मजा नहीं आया उतना, बिकॉज आई थिंक वो एक्सपीरियंस मेरे लिए फन से ज्यादा थोड़ा डरावना था, बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग विद माई 2-year-old एट दैट टाइम. एंड जिस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में मैं थी, वहाँ पर सीट्स के बीच में एक बड़ा सा ऐसे देयर वाज अ पार्टीशन, एंड टू रीच आउट टू द सीट नेक्स्ट टू यू, आपको पूरा आगे से घूम कर जाकर उस सीट को एक्सेस करना होता है. एंड इट वाज क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही हो, जब लैंड कर रही हो, यू गाइज हैव टू बी ऑन योर ओन सीट. सो माई 2-year-old हैड टू बी ऑन ओन सीट अवे फ्रॉम मी, एंड आई वॉज लाइक रियली स्केर्ड. तो मेरा वो बिजनेस क्लास वाला एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं गया था. But the service and everything was really nice. But I enjoy flying economy. I don't know why. सस्ता okay. होता है तो मेरे को खुशी होती है कि यार इतने सस्ते में टिकट्स मिल गए. फिर खाना भी मेरे को जमता है. It's fine with me. मेरे को business class का ऐसा कुछ है नहीं. But experience किया and I'm glad for that.
1: Okay. चलो आप भी हमें बताइए. Have you ever travelled in a business class? किसी एक flight में. मैंने तो अभी तक experience नहीं किया है. और बस देखा ही है कि what business class looks like.
3: आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किस फ्लाइट के, किस एयरलाइन के फ्लाइट में बिजनेस क्लास ट्रेवल कर रहे हो. वो भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो.
1: तो चलो
3: अलग अलग का अलग अलग होगा.
1: आप बताओ, क्या आपने कभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया है या नहीं? एंड इफ यू हैव, व्हाट वाज इट लाइक? 5599 हमारा नंबर है.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: चलो भैया देख लेते हैं कैसा रहेगा आज का आपका दिन. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आप क्या बोलते हैं इस पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें. हेल्थ आपका थोड़ा कमजोर रहेगा, समझदारी से काम करना इम्पोर्टेंट होगा. प्रॉपर्टी के डील्स से आपको बड़ा फायदा हो सकता है और ट्रेवल एंटरटेनिंग होगा.
3: और इसके बाद आज वृषणी टॉरस, आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि ये दिन जो है आज आपके लिए काफी हैवी रहने वाला है, लेकिन एंटरटेनिंग भी रहेगा एट द सेम टाइम. आज आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको सफलता दिलाएगी. द मोर पॉजिटिव यू आर द बेटर यू विल फील. मनपसंद कुछ खाने का भी मौका मिलेगा एंड यू विल बी लाइक ओह माय गॉड आफ्टर सो मेनी डेज, एंड आप बहुत खुश रहेंगे उस टेस्ट से जिसका मजा आज आप उठाने वाले हैं.
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज दौड़ धूप कुछ ज्यादा आपको करनी पड़ेगी. वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखें, काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिल सकता है.
3: कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, थकान और कमजोरी जो है ये थोड़ी बहुत रह सकती है. खाने पीने पर आप अपना ध्यान रखें, बिकॉज दिस इज द मेन इशू जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है ये खराब हो सकती है. घर परिवार की चिंता बनी रहेगी और प्रोग्रेस जीवन में देख रहे हैं आप, तो उससे काफी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे विद ऑल दैट यू आर रिसीविंग इन लाइफ.
2: सिंह यानी लियो, झगड़ा झंझट को बढ़ावा ना दे. कोई एक्साइटिंग खबर आपको मिलेगी, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है या फिर कुछ नए फ्रेंड्स भी आप बनाएंगे और बिजनेस ठीक ठाक चलेगा.
3: कन्या यानी कि वर्गो, आपके लिए कहा गया है उन्नति के रास्ते चल पड़े हैं. यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर गेटिंग इन लाइफ राइट नाउ. प्रोग्रेस देख रहे हैं और ज्यादा हासिल करने की इच्छा भी आपकी जरूर जागृत हो रही है. कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे सीख ऐसी मिलेगी जो जीवन भर आपको याद रहेगा. आज आपके लिए ये भी बताया गया है कि कोई बड़ा काम करने से, आज उसको पूरा करने से, एक पॉजिटिव रिजल्ट पाने से आप बहुत खुश रहेंगे.
2: तुला यानी लिब्रा, आज आपका हेल्थ थोड़ा कमजोर रहेगा, बनते काम बिगड़ सकते हैं, इसको लेकर आप काफी टेंस रहेंगे. इसका ख्याल रखें कि आप किसी के उकसाने में ना आए. जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है या जो आपको बोला जा रहा है करने के लिए, अच्छी तरह से सोच समझ लें तभी अपना डिसीजन बनाएं.
3: एंड आफ्टर दैट वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, दूर से अच्छे सब जो खबर है ये सुनने को मिलेंगे एंड यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. जीवन साथी का सहयोग मिलेगा जिसकी वजह से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे. डूबे हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, यू फील गुड अबाउट इट कि फाइनली आपके पैसे बच गए.
2: धनु यानी सेजिटेरियस, पैसों के लेन देन में सावधान रहें. कोई वैल्यूबल या इम्पोर्टेंट चीज समय पर नहीं मिलेगी एंड इसकी वजह से आपको गुस्सा भी आ सकता है. काम पर कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम आप गुजारेंगे.
3: मकर यानी कैप्रिकॉन, बातों में किस तरह के शब्दों का, किस तरह के टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा तो ख्याल रख लो यार, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट इज गोना अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स. और कुछ ऐसे बहुत जरूरी रिश्ते आपके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इनको बुरा लग गया, पर जिसको बुरा लगता है उसका दिल जानता है कि आपकी बातों का, आपके उस टोन का क्या असर पड़ा है. तो थोड़ा ध्यान रखो उस पर. और आपके लिए ये भी बताया गया है, लीगल मैटर्स जो है आपके, लीगल प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे. यू'ड फील हैप्पी विद द रिजल्ट्स यू गेट टुडे. फायदे के बहुत से मौके हाथ लगेंगे.
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, जल्दबाजी या केयरलेसनेस आप पर भारी पड़ सकती है. हेल्थ आज थोड़ा कमजोर रहेगा. झगड़ा झंझट जो है ये किसी के साथ तो हो सकता है या कोई बहस हो सकती है और आज कोई आपसे अपसेट रहेगा एंड यू वोंट बी फीलिंग गुड अबाउट इट.
3: और आज फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आप जरूरी फैसले सही तरीके से कैसे करते हैं, क्या करते हैं ये जरूर लेंगे और इससे आपका फायदा होगा. कोई एक ऐसी समस्या है जिससे आपको छुटकारा मिलेगा, ऑल बिकॉज ऑफ द डिसीजन यू टुक. तो आप अपने यू नो स्ट्रॉन्ग माइंड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, सोच समझ कर सारे फैसले जो है जरूर ले. पैसों के मामले में फायदा हाथ लगेगा जिसकी वजह से भविष्य में चलकर आपको काफी बेनिफिट्स जो है ये देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे.
2: अभी 21 मिनट हो रहे हैं 7:00, हम पूछ रहे थे, हमने पूछा था आपसे कि क्या आपने कभी बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया है या नहीं. तो सबसे पहला मैसेज जिनका आया, उन्होंने नाम नहीं लिखा, नहीं भाई प्लेन में पीछे ही बैठो तो बेहतर रहेगा.
3: फ्रंट में नहीं, इट्स जस्ट अ जोक इन्होंने कहा है. राम राम जी, नहीं भाई, नो बिजनेस क्लास ट्रेवल, कांट इवन सिट एट द बैक सीट ऑफ माय कार, वाइफ सेइंग सिट इन फ्रंट, आई एम नॉट योर ड्राइवर. नीत ने मैसेज किया है, वेरी नाइस. बाय द वे पिछले घंटे हमने क्वेश्चन पूछा था, वो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट भी किया था और उसे जीता भी था। सो, काफी लोगों ने हमारे पास अपने आंसर्स भेजे। दिवनेश ने अपना जवाब भेजा था इज मेक्सिको, अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। फिजा आपका आंसर आया है, विकेश है साथ में, ऐश थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल। असद आपने हमारे पास, मोहम्मद असद जी आपने हमारे पास अपना जवाब भेजा। फ्रेंसीना गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल। निलेशनी का आंसर आया है, ज्योति है, शैलीन है मनुरेवा से, आपका भी जवाब हमें मिला है। कुछ लोगों ने जवाब भेजे हैं, नाम नहीं लिखा है, बट द करेक्ट आंसर इज उरुग्वे। और उरुग्वे जो है इन्होंने 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था, अर्जेंटीना के खिलाफ फिनाले में खेला था और 4 गोल्स टू 2 से इनकी जीत जो है ये हुई थी।
2: फिलहाल 22 मिनट हो रहे हैं 7:00, आप भी हमें बता सकते हैं, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन बिजनेस क्लास इन अ फ्लाइट। 5599 हमारा नंबर है, और अगर चाहें तो अपना एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हैं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers 199. 32-inch smart TVs 199. Ceramic cooktops 199. Laundry tub and cabinet 199. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: कहानी of Indelible Homes.
9: Media Works complaints. How can I help?
10: My kids won't shut up.
9: I'm not sure that's our problem.
10: They keep reciting lines from one of your radio ads.
9: Aw, cute.
10: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
11: What do you want, son?
12: I want me some of that real southern chicken.
10: 28 times.
9: So where are you now?
10: Eating chicken.
13: Advertise with
14: Media Works.
13: New Zealand listens to us.

0: 26 मिनट हुए हैं 7 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जारी है। सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त अब हो चुका है।
1: कल जो आवाज थी विल स्मिथ की थी ना मेरे ख्याल से।
0: हाँ
1: तो काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि I had a different answer in my mind, but apparently all of you got it right, जब आपने अपने answers जो है कि भेजे थे। And देखते हैं कि आज किन की आवाज़ है और वो आप पहचान पाते हैं या नहीं। Because if you don't get the answer correct today, then we will get a new voice tomorrow. But अगर आपने if you don't get the answer correct today, then we'll continue with the same voice tomorrow. लेकिन अगर आपने सही पहचान लिया तो फिर हम कल कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे आपके लिए।
0: मेरे ख्याल से आज एक भी जवाब जो है ये गलत नहीं आएगा।
1: ओह यू आर दैट कॉन्फिडेंट।
0: या लिसन टू द
1: वॉइस। मतलब इसका मतलब ये कि ये इतना इजी है टू आइडेंटिफाई।
0: हाँ बहुत इजी है। सुने पहले।
2: हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
0: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी।
1: आई गेस यू आर राइट। एक भी गलत आंसर आना नहीं चाहिए क्योंकि इतना ईजी है और इसके बारे में हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं। सिर्फ इतना कि अगर आपने आवाज पहचान ली है BF लिखे, अपना आंसर लिखे 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट कर दे।
0: अगर आवाज अच्छी तरह से आपने नहीं सुनी है लीजिए एक बार फिर हम आपको सुना रहे हैं।
2: सूरज चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
0: तो अब शुरू हो जाए। नॉर्मली इतनी देर में कम से कम एक दो आंसर्स तो आ जाते थे लेकिन आज एक भी नहीं आया। लगता थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। सबने कहा अरे छोड़ो रहने दो।
1: इतना इजी कोई ना कोई तो सही बता ही देगा, तो रहने दो हम नहीं करते। बट लेट्स सी अगर आप पहचान चुके हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी की आवाज BF योर आंसर योर नेम 5599 पर अभी हमारे पास आप मैसेज कर दे।
3: अपना A-game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: SENZ.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में लेटेस्ट वन न्यूज वेरिएंट पोल में लेबर 32% और नेशनल 29% हैं, दोनों नीचे गिरे हैं, जिससे दोनों बड़ी पार्टीज का कॉम्बाइन टोटल 1996 के बाद सबसे कम 61% हो गया है। इस पोल के मुताबिक ग्रीन्स, न्यूजीलैंड फर्स्ट और अपॉर्चुनिटी पार्टी जैसे छोटे दलों को फायदा हुआ है और अब लेफ्ट ब्लॉक यानी लेबर, ग्रीन्स और तेपाती माउरी मिलकर कॉलिशन गवर्नमेंट को हराकर सरकार बना सकती हैं। प्रीफर्ड प्राइम मिनिस्टर की रेस में क्रिस्टोफर लक्सन थोड़ा सुधार के साथ 18% पर टॉप हैं, जबकि क्रिस हिपकिंस गिरकर 16 पर पहुंच गए हैं। माउंट ईडन प्रिजन के एक और कोरेक्शंस स्टाफ मेंबर को सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप के बाद सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे इस डिपार्टमेंट में चल रही जांच के घेरे में अब 3 सीनियर स्टाफ आ गए हैं। जिस टीम में वो काम करते हैं वो प्रिजनर्स की हेल्थ और

0: जवाब में न्यूजीलैंड टीम ने 18.2 ओवर्स में चार खिलाड़ी खोकर 132 रन बनाए, जिससे उनकी जीत 6 विकेट से हुई। आज सुबह श्रीलंकन विमेंस टीम की जीत आयरलैंड के खिलाफ 9 विकेट से हुई। एक मैच अभी खेला जा रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 7 खिलाड़ी खोकर 199 रन बनाए। अभी पाकिस्तानी विमेंस टीम बैटिंग कर रही है, 3.5 ओवर्स में 2 खिलाड़ी खोकर 30 रन बनाने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 97 बॉल्स में 170 रन की जरूरत है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम बारी बारी से लेकर आएंगे। उधर फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप के एक मैच में आज सुबह पुर्तगाल की शानदार जीत उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से हुई। इसके बाद आज बाकी के जो मैचेस खेले जाएंगे उसमें सुबह 8 बजे इंग्लैंड घाना से खेलेगा, 11 बजे पैनामा और क्रोएशिया की भिड़ंत होगी, जबकि 2 बजे कोलंबिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से खेलेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz.
2: For show with Vijay and Pooja,
1: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
3: Dry July starts next week.
4: Rain today, heavy at times, a high of 17. A slow southwestern motorway both ways, particularly southbound from Mount Roskill on and off to the airport. So add time if you're heading to the terminal today. Southern at 50 minutes in from Monaco, heavy dreary on and off to Papatoetoe, then slow to the city. Northwestern 55 in from Massey, heavy from Upper Harbour to the Causeway, then slow from there. Northern heavy Constellation to the bridge.
3: Go alcohol free this July for cancer support. Search Dry July to register.
5: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का, और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
6: Brace Off Road, greater than ever.
7: South Auckland's buses just became a lot better.
6: MIT, A-OK.
7: With better bus routes, more frequent buses, and more.
6: Airport, got your transport.
7: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
8: Smart Pay
9: is now.
8: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local service.
9: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
8: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local
10: Super Cheap Auto's big brand sale is on now. Save big on Turtlewax car detailing chemicals and accessories, now 25% off, and Raptor spray paints, now 20% off. Sale ends June 28th. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.

0: NZ.
1: Birthday greetings.
2: Iska birthday bhai?
3: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
2: Happy birthday to you.
4: 24th of June, आज आपका बर्थडे है या शादी की सालगिरह है, ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। सबसे पहले पापाकुरा में आज अर्चना भाकू जी हैं, अपनी सालगिरह आप मना रही हैं। खुशी के इस मौके पर आज आपके तमाम परिवार वाले जो यहाँ न्यूजीलैंड में हैं, बैक इन इंडिया हैं, सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी की ओर से आज का ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
5: के अलावा आपको वेरी हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं सरिता जी, अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रही हैं हार्वर्ड कैलिफोर्निया में, और आज आपके जन्मदिन के मौके पर आपको ढेर सारा प्यार, लव एंड बेस्ट विशेस आपके समस्त परिवार वालों की ओर से हम पहुंचा रहे हैं।
4: अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा,
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून, विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द

0: मॉर्निंग मैडनेस में अभी 18 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. अब वक्त है देखे आज के सेलिब्रिटी अलार्म का क्या हुआ.
1: मैसेजेस तो काफी आए और फिर जैसे कि आपने अंदाजा लगाया था कि एक भी गलत आंसर नहीं आएगा, वो आपका अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया, क्योंकि आई कुड सी अ फ्यू पीपल आउट देयर जिन्होंने थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया. जैसे किसी ने
0: एश है वेलिंगटन से मेरे ख्याल से.
1: हाँ, तो इन्होंने मैसेज किया है माधुरी दीक्षित. इसके अलावा एक और एक मैसेज आया, नाम नहीं इनका, इन्होंने भी माधुरी दीक्षित कहा है. और किसी ने तो अलग ही मतलब पता नहीं क्या ही मैसेज दिया, दीपाशना पड़ियाची इन्होंने कहा है. मुझे नहीं पता क्या मतलब है. हाँ, शायद अपना नाम बता रहे हैं ये कि इन्होंने ये मैसेज भेजा है, बट आई कुडंट सी एनीवेयर एल्स.
0: अरे उससे पहले उन्होंने अपना आंसर भेजा था ना.
1: हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, मेरे को नहीं दिखा कहीं पे इनका आंसर, सिर्फ इनका ये वाला मैसेज.
0: उनका आंसर जो है ये आया था राउडी कोचर के बाद.
1: ओह
0: नहीं, राउडी कोचर के बाद कहाँ गया राउडी कोचर.
1: हाँ हाँ हाँ, नाउ आई हैव रिफ्रेश्ड द मैसेज वाला जो है, देन आई कैन सी इट राइट. सो अनफॉर्चुनेटली आपका ये अंदाजा कि किसी का गलत आंसर नहीं आएगा, ये गलत हो गया, बट पीपल हैव गोन अहेड एंड टेक्स्टेड द करेक्ट आंसर. सो अभी बता दें कितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने सही जवाब जो ये भेजे हैं. शिमल है, राउडी कोचर है, साथ में काजल है, दीपाशना पड़ियाची, थैंक यू सो मच, आपका भी सही जवाब ही है. लविका चौहान है माउंट ईडन से, और उसके अलावा विधि है, आपका भी जवाब हमें मिल चुका है विधि, थैंक यू. मोनिशा है, साथ में कल्पेश है, नव है, सोम का भी सही जवाब आया है, स्वाति ने भी करेक्ट आंसर दिया है, अविशाल है, मेघना ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया है, और गुड मॉर्निंग कहा है सनी ने, और जवाब भी बिल्कुल सही दिया है.
0: सो थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस जो है ये भेजने के लिए. अभी ज़रा सोचिए ना, अभी यहाँ पर तो विंटर है, ठंड काफ़ी है. जस्ट इमेजिन, सोचिए खूबसूरत यू नो सनराइज आप एंजॉय कर रहे हैं, नए दोस्त आप बना रहे हैं, यू हैव अ रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, यू नो लजीज खाना, या लजीज खाना, हंसी मजाक, इट साउंड्स लाइक अ मूवी ना.
1: समथिंग लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा.
0: लेकिन ये आपका ईस्टर 2027 हो सकता है. ईस्टर 2027 आपका हो सकता है. अगर ये बात आपने सुनी है तो अभी BF लिखे और आप कहां से हमें सुन रहे हैं वो हमें बताएं 5599 पर. यू नो खूबसूरत सनराइज चाहे पहाड़ियों में या फिर यू नो एक
1: बीच पर.
0: हाँ खूब बीच पर सनसेट हो,
1: सनराइज भी होता है यार. सनसेट हो सकता है तो सनराइज क्यों नहीं हो सकता.
0: नहीं दिखने में सनसेट ज्यादा.
1: चलो सनराइज नहीं, सनसेट देख लेना.
0: ओके अच्छा चलो, सनराइज व्यूज, नए दोस्त, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, लजीज एकदम लजीज खाना, हंसी मजाक, ये सब कुछ आपका हो सकता है ईस्टर 2027. अगर ये बात आपने सुनी तो BF और कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये दो चीजें लिखें और 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करें. Right
1: okay, now. Get started. जल्दी जल्दी अपना मैसेज हमारे पास आप सेंड करें. And we'll see कि actually आपका जो भी you know situation है अभी फिलहाल, आपने हमें सुना कि नहीं सुना, कि हम क्या आपको बता रहे हैं. And उसके बाद we'll do a shout out as well.

0: on NZ. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
2: Throwback. 8 मिनट रह गए हैं फिलहाल 8 बजने में. आप में से कई लोगों ने अपने मैसेजेस जो है ये हमारे पास भेजे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री.
3: बहुत सारे मैसेजेस इनफेक्ट आए हैं. हमने कहा था शाउट आउट देंगे, सो वी आर डेफिनेटली गोना डू दैट. सबसे पहले तो मोनिशा मिडिल मो हॉस्पिटल से हमारा साथ दे रही है. उसके अलावा ताकिनिनी से कोई सुन रहा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है. पापा टोई टोई से किसी ने अपना मैसेज जो है ये भेजा है, इन्होंने कहा ड्राइविंग, सो ऑल गुड. फ्लैटबुश से सोनम हमारे साथ जुड़ी हुई है. फ्लैटबुश से एक और एक मैसेज आया है बट नो नेम अनफॉर्चुनेटली. काजल का मैसेज आया है, फिलहाल ये काम पर जा रही है.
2: Priya from Manurewa, 9426 Flatbush, 6270 Mount Eden, Mala, Remuera me, Aifaz, Takanini me, 7731 Papatoy Toy me hai.
3: राधिका का मैसेज आया है, इन्होंने ऑकलैंड लिखा है. उसके अलावा दिव्या ने कहा है तकनीनी से, अनिहांगा से 1248 आप सुन रहे हैं, और हाविक से 9787 आपका मैसेज आया है.
2: देवंजन कराका में है, और अरिता मनुरेवा में, साथ में 1500 हुआपाई में.
3: और इसके साथ दीपाशना परियाची है जो हमारे साथ फिलहाल प्रोग्राम में शामिल. उन्होंने कहा हाई लिस्निंग फ्रॉम माई माउंट वेलिंगटन हाईवे, सॉरी माई वेलिंगटन हाईवे driving to work.
2: नहीं, वो उनका टी की जगह वाई आ गया.
3: ओके, आई थॉट ये वेलिंगटन से मैसेज कर रही है. बट दीपाशना, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. इसके अलावा प्रनीश सिंह है तकनीनी से, पुके कोहे से रजनील सिंह है, रतीश कुमार क्लेंडन पार्क से आपका मैसेज आया है.
2: शालिनी फ्लैटबुश, स्वाति तकनीनी, 8922 न्यूलिन, नक्श मैंगरी में है.
3: मिशन हाइट्स फ्लैटबुश से मैसेज आया है 4943 आपका. रणधीर पापा टोयोटा से सुन रहे हैं फिलहाल. एयरपोर्ट ऑकलैंड से हमारे पास मैसेज आया है 6243 आपका.
2: अतीश पापा टोयोटा, राज लिसनिंग फ्रॉम क्वींसटाउन, साथ में नितिका लिसनिंग थ्रू रोवा एप फ्रॉम द गार्डन्स.
3: ऑकलैंड एयरपोर्ट से एक और एक मैसेज आया है 1509 आपने हमारे पास मैसेज किया है. साथ में माइकल लाल लिसनिंग फ्रॉम माय रिसाइक्लिंग ट्रक हेडिंग टुवर्ड्स पुकिको हे, थैंक यू सो मच माइकल. जय शिव शंभू विजय भाई एंड पूजा जी, बोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे. राजू थैंक यू फॉर योर मैसेज टू.
2: और अंकित मैंगरी में है, गुडवुड हाइट्स मेनिकाओ में जेनिस कुमार आपका भी मैसेज आया है.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 14.5 degrees अभी आप temperature feel कर रहे हैं. आज का high 17, overnight कम से कम 12 degrees होगा. दिन भर आज बारिश होती रहेगी. Sunset शाम 5:14 पर आज होगा. The breakfast show with

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: 3 मिनट हो रहे हैं 8:00 और द रश आवर में आपका स्वागत कर रहे हैं और हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और ट्रेंड पेट्रोल से पहले कुछ और मैसेजेस आए हैं. कुसुम पापाटोयटोए ड्राइविंग कर रही हैं, उमेश भी एयरपोर्ट में हैं. राम राम विजयन पूजा जी, ऑन माय वे टू वर्क लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल प्रोग्राम विम. अच्छा, विम का मैसेज है. आज सुबह में दो लोगों के बारे में सुबह से सोच रहा हूँ. एक विम थे, मैंने सोचा था कि आज आफ्टर द शो आई विल सेंड हिम अ मैसेज. और दूसरे जो शख्स जिनके बारे में आज सुबह से मैं सोच रहा हूँ इज जुबेर.
2: जुबेर,
1: हाँ
2: अच्छा.
1: जुबेर याद है आपको?
2: I'm trying to remember. नाम सुना सुना लग रहा है.
1: अरे वो ट्रक चलाते थे हमेशा, हमें कॉल करते,
2: हमेशा कॉल करते थे. यस
1: हाँ,
2: मुझे बहुत परेशान करते थे वो.
1: तो सुबह से
2: अभी बहुत बिजी होंगे ना, इसीलिए शायद.
1: Maybe, hopefully you are okay, Zubair. And सुबह इन दो लोगों के बारे में
2: आप सोच रहे थे.
1: yeah.
2: देखो ना, आपकी टेलीपैथी, आप सोच रहे थे और इधर विम ने आपके पास मैसेज भी अपना जो है कि भेज दिया.
1: मेरी टेलीपैथी 1% एट अ टाइम ही काम करता है लगता है.
2: वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, आज का ट्रेंड पेट्रोल, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, आई स्टिल नीड टू डू माई रिसर्च ऑन दिस, बट एक वीडियो जो है ये सामने आया है एंड दिस इज अबाउट अ गाय फ्रॉम कीनिया. अपेरेंटली एक वीडियो जो एक कंटेंट क्रिएटर ने बनाया और उसने क्या किया, आई थिंक एट अ प्लेस जब वो कीनिया घूमने गई थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो इंग्लिश बात करते थे, उनसे उन्होंने बात की और फिर उनसे उन्होंने उनके नाक के बारे में जो ये पूछा, द स्ट्रक्चर ऑफ पीपल्स नोज जब आप डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट कल्चर उसको बिलोंग करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस इन योर लुक ऑल्सो, राइट? एंड आपका नाक जो होता है उसके स्ट्रक्चर को लेकर भी काफी डिफरेंस जो ये होता है. सो दिस लेडी डिडंट मीन एनी हार्म, उन्होंने बट उनसे वेरी नाइसली जो ये पूछा उनके नाक के बारे में, एंड शी एक्चुअली आस्क्ड इफ आई कुड टच योर नोज. तो ये जो कीनियन व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि अच्छा बिल्कुल आप छू सकते हो. जब उन्होंने उनका नाक छू तो इस महिला को पता चला कि इस व्यक्ति के नाक में हड्डी नहीं है. तो जब उनका नाक ऐसे पुश करती है तो उनका जो नाक है ये एकदम ऐसे पीछे चला जाता है. इट बिकम्स फ्लैट, लाइक नॉट लिटरली फ्लैट फ्लैट बट ऐसे थोड़ा चिपक जाता है. डू यू नो व्हाट आई मीन?
1: या या, आई नो व्हाट यू मीन.
2: हाँ, तो जब इन्होंने ऐसा किया तो ये महिला तो थी ही सरप्राइज्ड कि कि क्या ऐसा होता है कि कीनियन लोग जो होते हैं उनके नाक में हड्डी नहीं होती, कि इतना कैसे चिपक सकता है किसी का नाक अगर आप ऐसे दबाओ तो. तो फिर इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने इस महिला से पूछा, शी वॉज ऑफ कोकेशियन, आई थिंक शी वॉज अ कोकेशियन लेडी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका नाक छू सकता हूँ. तो जब इस महिला ने बोला हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने उनका नाक छुआ ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि नाक में हड्डी भी होती है.
1: हाँ.
2: क्योंकि उन्होंने जब पुश करने की कोशिश की महिला के नाक को अपनी उंगली से तो मूव नहीं हुआ ज्यादा ना, लाइक इट डिडंट पुश बैक. तो ही वाज रियली सरप्राइज्ड और ये पर्टिकुलर वीडियो फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है. Do you have anything to say?
1: नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना.
2: क्या सोच रहे? मैं वही बोल रही हूँ, मैंने भी रिसर्च नहीं किया है कि क्या ऐसा होता है या नहीं, बट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है अफ्रीकन फेशियल फीचर्स में देखी जाती है. जो कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर उनका जो नेजल बोन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर पीपल ऑफ अदर एथनिसिटी. तो आई डोंट नो अबाउट द बोन और नॉट बीइंग देयर और नॉट बीइंग देयर, बट डिफरेंस होता है. और आपको ना ये वीडियो अगर मिले कहीं पर आप देखिएगा, दिस गाय उनका जो एक्सप्रेशन है कि लाइक यार नाक में भी हड्डी होती है, लाइक यू हैव गॉट बोन्स इन योर नोज, शी वाज, आई मीन ही वाज सो सरप्राइज्ड टू फाइंड इट आउट.
1: ऐसी और भी ट्रेंडिंग खबरें आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आते रहेंगे थोड़ी देर बाद. व्हाट्स योर टेक, तैयार रहें इसके लिए.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
2: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
3: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
4: It's the final days to get a massive 30 months interest-free store-wide at Big Save. Do you need a washing machine, dryer, fridge or dishwasher today? Big Save's big whiteware deals are on today. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98 or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. We have heaps of stock. Take it home today. Get New Zealand's best value whiteware from only $3.98. Must end Monday only at Big Save.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
6: हाँ। अच्छा
5: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
9: The Breakfast Show.

0: Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: What's your take?
2: अभी 18 मिनट हो रहे हैं 8:00 द रश आवर आपके लिए जारी है लीगल एसोसिएट्स एक्यूट से. व्हाट्स योर टेक का टाइम अब हो चुका है और प्रोग्राम में आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं एंड वुड लव टू फाइंड आउट व्हाट्स योर टेक ऑन इट. ये जो टॉपिक है इनफैक्ट मैं स्टोरी जैसे ही मैंने एक स्टोरी के का हेडलाइन जो है ये पढ़ा उतने में ही ये टॉपिक मेरे मन में आ गया. तो द हेडलाइन ऑफ दिस स्टोरी बेसिकली रेड Bengaluru woman says she hated the city at first. Now moving elsewhere does not feel right. तो ये कहीं बाहर से आई थी बेंगलुरु में और शुरू में उनको जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी. बहुत लोनली फील कर रही थी वो सारी चीज़ें. रिया नाम है इनका. इंस्टा पर जाकर उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है. लेकिन अब उनको लगता है कि बेंगलुरु से कहीं और शिफ्ट होना ये मुश्किल होगा उनके लिए और सही भी नहीं होगा उनके लिए. तो ओवर टाइम कैसे इनका जो परसेप्शन है और इनका जो एक्सपीरियंस है ये चेंज हुआ. आज हमने सोचा आपसे पूछते हैं न्यूजीलैंड के बारे में. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटे शहरों से या फिर छोटे देशों से आए हैं और हमारे शहर या देश के मिलान में न्यूजीलैंड या ऑकलैंड या जहाँ कहीं भी आप रहते होंगे इट माइट बी इवन बिगर. तो आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस. और कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े देश या बड़े शहर से आए हैं उसके मिलान में न्यूजीलैंड या जिस भी शहर में आप रहते हैं वो छोटा है. तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑकलैंड के बारे में या न्यूजीलैंड के बारे में जो भी है वो आज हम आपसे जानना चाहते थे. ओवर द टाइम जब आप आए थे जैसे इस लेडी ने फील किया, इस लड़की ने फील किया दैट शी हेटेड द सिटी एट फर्स्ट बेंगलुरु जब ये गई. अब उनको लग रहा है कि मैं कहीं और शिफ्ट ही नहीं हो सकती, ये मेरे लिए सही नहीं होगा. गुड मॉर्निंग अहफाज.
3: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों?
4: बढ़िया अहफाज, आप बताइए आप कैसे हो?
3: मैं भी ठीक हूँ. टॉपिक अच्छा है. मैं पहले जब न्यूजीलैंड आया था तो मेरे लिए एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं तो ऑकलैंड ही आया था, मैं कहीं और नहीं गया. तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है वो जल्दी बंद हो जाता है ना, जैसे वी यूज टू इन इंडिया के रात तक सब कुछ खुला हुआ है. और दिन भी लेट शुरुआत होती थी और स्टार्ट ऐसे लेट होता था. तो मुझे ऐसा लगता था यार क्या सिटी है यार, यहाँ तो लोग जल्दी सो जा रहे हैं, शॉप बंद हो जा रही है, रात को खाना है तो कुछ मिल नहीं रहा है कि मैकडोनल्ड्स के अलावा. तो मेरा वो था पहले. बट अभी जैसा पिछले 10 सालों से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए और अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पीस ऑफ माइंड है वो मुझे इंडिया में नहीं मिलता था.
2: okay.
3: तो अभी मेरा वो परसेप्शन चेंज हुआ है. बट आई वुड से के आई एम मोर इंजॉयिंग इन ऑकलैंड. बट मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं ऑकलैंड से मूव कर जाऊँ कहीं और न्यूजीलैंड में विद इन न्यूजीलैंड तो माई बी इज गोना बी टफ फॉर्म.
2: अच्छा, वैसे इंडिया में आप कहाँ से हैं?
3: वैसे इंडिया में मैं 2-3 जगह रहा हूँ बट सबसे ज्यादा टाइम मैंने पुणे में बिताया. तो पुणे इज लाइक बड़ी सिटी है.
2: okay.
3: तो वही है कि पुणे मुंबई अभी जैसे फील तो एक जैसा ही होता है. बट हाँ, बट वो एक ऐसा था कि चहल पहल ज्यादा थी एंड यू नो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, लॉट ऑफ फ्रेंड्स. और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो वही आती है कि पहले आप जब नए आते हो तो कहीं भी जाने के लिए आपको फ्रेंड्स और जानने वाले बहुत जरूरी चाहिए होते हैं, नहीं तो आपको यू फील अलोन. तो वो सबसे ज्यादा टफ होता है आई गेस. और एक एज भी मेरे हिसाब से मैटर करती है क्योंकि एक सर्टन एज के बाद में फिर हार्ड फॉर द पीपल टू मूव ऑन और जस्ट सेटल डाउन इन अदर कंट्रीज और अदर प्लेसेस.
2: ओके, थैंक यू अहफाज आपके कॉल के लिए. तो व्हाट्स योर टेक, वी डेफिनेटली लव टू नो. और 800-004-866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं. आई थिंक यू ऑल्सो डिड नॉट लाइक न्यूजीलैंड एंड
4: यस एब्सोल्युटली नॉट जस्ट न्यूजीलैंड. आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड, मुझे फिजी से बाहर कहीं नहीं जाना था एंड आई ऑब्वियसली हैड दैट फील कि मुझे ये कंट्री प्यारा है एंड आई स्टिल लव टू लिव इन यू नो फीजी. I'd never would want to move out of Fiji. मुझे पसंद है. And initially जब मैं आई थी, I think I had struggled a lot emotionally. और मुझे करीबन पाँच छः साल तो लगे ही थे to accept New Zealand openly. In fact, the first trip that I had made to New Zealand, Fiji after coming to New Zealand, मैं New Zealand आई उसके दो तीन साल बाद मैं गई Fiji for the first time. एंड वहाँ पे जाने के बाद भी मेरे को यही फील था कि मुझे वापस न्यूजीलैंड नहीं जाना है. आई फील लाइक मुझे फिजी में ही रहना है. बट द सेकंड ट्रिप विच आई मेड आफ्टर स्टेइंग इन न्यूजीलैंड फॉर ऑलमोस्ट 6 years और समथिंग, उसके बाद आई स्टार्टेड मिसिंग न्यूजीलैंड. मुझे ऐसा लगा कि येस आई लव फिजी, बट वो वहाँ पर मेरा घर है. एंड देन आई स्टार्टेड यू नो मिसिंग इट सो मच कि वो एक्सेप्टेंस आ गया खुद से ही. तो बाद में थोड़ा टाइम लगा, बट बाद में मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो फीलिंग है टूवर्ड्स द होल आइडिया, ये चेंज हुआ. सो नाउ आई लव गोइंग टू फिजी, बट आई लव कमिंग बैक होम एज वेल.
2: ओके, तो आपकी राय जो है ये भी हम जानना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है ये कैसा रहा?
4: इनिशियली जब आप यहाँ पर आ नहीं रहे थे, मतलब मूव करने के बारे में शायद सोच रहे थे, कुछ बातचीत चल रही थी, हाउ वाज इट फॉर यू? वर यू इन अग्रीमेंट? वर यू लाइक कि यस इट्स अ गुड आइडिया, चलो चलते हैं? वर यू इन डिसएग्रीमेंट कि नहीं मुझे नहीं लगता कि यार इट्स अ गुड मूव, अभी नहीं जाना चाहिए? नोल
2: गुड मॉर्निंग. हेलो,
1: या हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू विजय एंड पूजा?
4: गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग, हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बढ़िया, माय सेल्फ किरण. तो मुझे भी कुछ शेयर करना था.
2: जी किरण
4: जी बोलिए.
1: या जैसे जैसे वो आपने पोस्ट के बारे में बोला, बेंगलुरु के बारे में, तो मोस्टली अभी मैं भी अभी तक मोस्टली 5-6 सिटी घूम के फिर ऑकलैंड आया हूँ. तो मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि जब हम लोग जाते कोई भी नए सिटी में ना, तो हम लोग जल्दी लाइक नहीं करते वो सिटी को, क्योंकि हम लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अलग जोन में जाते हैं और वहां जाके फिर हमको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. वहाँ दोस्त बनाना या वहाँ की चीजें समझना, वहाँ का शॉपिंग, एवरीथिंग, लाइक to get it safe in that place, it will take some time. और जब तुम वहाँ सेटल हो जाते हो 1-2 साल में, तो फिर अपना एक्सपीरियंस होता है कि वो सिटी से हम जुड़ने लग जाते हैं. तो जब छोड़ते कोई भी सिटी तो बहुत दुख होता है, क्योंकि फिर से तुम एक कम्फर्ट जोन छोड़ के अलग सिटी में जा रहे होते. तो वैसे ही न्यूजीलैंड के बारे में भी हुआ था. और ये प्रीवियस सिटी जैसे मैंने मुंबई, पुणे और दिल्ली, 3 जगह, और मेरा कॉलेज टाइम, तो हर जगह अलग अलग जगह पे गया, तो हर जगह ऐसा ही एक्सपीरियंस फील हुआ. जब जाता हूँ तब जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि तुम एक जगह पे सेट होते हो, फिर वो छोड़ के तुम दूसरी जगह जाना चाहते हो, और फिर वहां जाके वापस से तुम सेट होते हो 2-3 साल में, और फिर तुम वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हो.
2: Okay.
1: तो वो लगा. और यहाँ न्यूजीलैंड आके भी वही हुआ कि न्यूजीलैंड पहले था कि चलो जाते कुछ समय के लिए, बट फिर जब टाइम बीतते गया फिर तुम उस टाइम से फिर कंफर्ट जोन बढ़ते जाता है, फिर दोस्त बढ़ते हैं, सोशल लाइफ बढ़ती, यहाँ के बारे में जानते हो, और फिर ऐसा होता है कि वो सिटी से, वो कंट्री से फिर पैर होने लगता है. तो ये मेरा टिप था.
4: थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच.
2: गुड मॉर्निंग. हेलो,
5: हाय.
2: हाय,
4: हेलो.
5: आई एम सॉरी, हेलो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गोइंग ऑन. आई थॉट टू जस्ट आई गिव माय opinion as well. I won't give my name, but for me, I came from Fiji as well, and my reason of coming here was getting married.
2: Okay.
4: Oh, okay.
5: It was interesting, but what I felt was that because I come from Fiji, and nobody ever told me that okay, there is a transition from becoming a single girl to a wife.
4: And hello. Excuse me, sorry, आपने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ. बट आई जस्ट लाइक टू से कि आपकी आवाज थोड़ी ऐसे डिस्टर्ब्ड हो रही है. इट्स लाइक प्रोबब्ली नेटवर्क इशू और समथिंग. सो इफ यू गो बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड सेइंग, लाइक कि नोबडी टोल्ड यू, वो आपने जो बोला था वहां से.
5: अपोलॉजीज. यस, सो आई ऑल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम फिजी, एंड माई रीजन ऑफ माइग्रेशन वॉज आई गॉट मैरिड हियर.
4: या
5: सो ऑफ कोर्स Fiji is Fiji, nothing can beat that. And of course, coming to a new country, it's just not a new country, a new family, and settling here, understanding a new family, understanding a whole new country is a whole next level. And I think that was the most challenging part for me, departing away from my family,
4: right,
5: and coming here and adapting to a brand new family with a brand new country. You don't know what's coming up. You don't know which sort of job you will be able to get at the very start. And then on top of that, becoming a daughter-in-law, a wife. Wife is fine because my husband has always been great. But, you know, those transitions for a girl getting married and especially going to a new country and there is no family of yours. So that's quite a challenge, I think. And then slowly, yes, it took me quite a while to understand that, okay, this is my home. And then I started liking it and, you know, I had my baby and then it just brought more joy in my life. And then I just loved it. Now I don't think that I can move out of New Zealand. Yeah.
2: Oh. Beautiful story. Beautiful experience aapka. Thank you so much, ma'am. Aapke call ke liye.
4: Thank you. Have a wonderful day. Thank you.
2: Yeah, तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों का रहा है. अभी कॉल्स लेने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है.
4: तो आप मैसेज कर सकते हैं बिकॉज वी वुड स्टिल लव टू हियर फ्रॉम यू. और वी डू अंडरस्टैंड एट टाइम्स आप कॉल नहीं कर पाते बिकॉज वो हेसिटेंस भी होता है ना, जब आपने कभी रेडियो पर कॉल करके कभी बात ना की हो तो थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा हेसिटेंस भी होता है. और अगर ऐसी फीलिंग आप में है तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए. वी आर वेरी कूल. We'd love to talk to you. Yeah, we are very cool and calm, you know. But अगर आप फिर भी नहीं कॉल कर पा रहे तो आप टेक्स्ट कर दीजिए 5599 पर.
2: तो आज का जो व्हाट्स योर टेक है, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम अ लेडीज एक्सपीरियंस जो शिफ्ट हुई थी बेंगलुरु और उन्होंने कहा कि शुरू में
4: initially she hated it.
2: हाँ, and now moving elsewhere does not feel right.
4: हाँ, वो ऐसा ऐसा लग रहा है कि she has to be very loyal to Bengaluru now.
2: Yeah.
4: वो होता है ना, वो लॉयल्टी वाली बात आ ही जाती है at the end of the day. You feel like you are so loyal towards a country that you move and you know you start your life there. And not just country, in fact मेरे मामले में तो इस कंट्री के शहर की बात छोड़ दो, सिटी छोड़ दो, सिटी में जो अलग अलग सबर्ब्स है उसको लेकर भी ये फीलिंग आती है. इनफैक्ट बहुत से लोगों को ये फीलिंग आती है.
2: एक सबर्ब से दूसरे सबर्ब में जाकर रहना भी मुश्किल होता है. दैट्स आल्सो ट्रू. तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं. समय देख लें, फिलहाल अब 8:30 बज रहे हैं और मैच पर अपडेट्स वगैरह जो है ये भी हम आपको बारी बारी से देते रहेंगे. जो फीफा वर्ल्ड कप मैच है, फिलहाल इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है. स्टिल इन टू द अर्ली स्टेजेस, फर्स्ट हाफ में मैच खेला जा रहा है एंड द स्कोर्स आर लॉक्ड एट 0-0.
0: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz. Bollywood's most wanted.
6: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
7: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। आपको क्या करना है, रोवा ऐप पर जाना है। अगर आप अभी रोवा ऐप पर हमारा प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं, सो यू व्हाट यू नीड टू डू इज गो ऑन टू द रोवा ऐप एंड लिसन टू हम ऑन रोवा।
1: Okay.
0: थोड़ी ही देर के लिए सही, अगर आप रेडियो पर सुन रहे हैं, जहां कहीं पर भी जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट अभी हम करने जा रहे हैं, से फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स जो भी टाइम लगेगा, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारे पास हमारे सामने आता है, एंड वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट अगर आपके पास रोवा ऐप है, व्हाट यू नीड टू डू इज ओपन द रोवा ऐप एंड ओपन हम ऑन दैट ऐप।
1: फिर
0: बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं।
1: अच्छा, आपको बस रोवा ऐप सुनना है, जो भी एक्सपेरिमेंट है इधर से आप कर रहे हैं, मतलब आप मॉनिटर करने वाले।
0: एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, एंड लेकिन उसमें सबसे की रोल आपका होगा, क्योंकि आप करेंगे तो ही तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है ये हमें मिलेगा।
1: एब्सोल्युटली।
0: सो हॉप ऑन टू रोवा, ओपन हम, एंड इट शुड बी प्लेइंग ऑन योर, क्या बोलते हैं, डिवाइस।
1: ओके, राइट। सो रोवा ऐप नहीं है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहां पे जाकर बस हम टाइप कीजिएगा आप सर्च बार पे, आपको हम का जो प्रोफाइल है मिल जाएगा। पर ऑन द अदर हैंड, इफ यू गॉट द ऐप, सो यू नो व्हाट यू कैन डू विद दैट, एंड इधर से बाकी चीजें हम कर लेंगे खुद।
0: और अगर आपको लिंक चाहिए तो ROVA लिखकर 5599 पर आप भेज दें। रोवा पर भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, इनाम जीतने का मौका। आवर लास्ट वन वॉज हम फ्लाई अवे फ्रेंजी। I cannot remember the name of the winner, but उन्होंने ट्रिप जीता था टू फिजी ना।
1: हाँ जी।
0: सो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने दरअसल ऐसा किया है।

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Accurate traffic.
3: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
4: A high of 17, heavy rain all day today. Still quite heavy on motorways. Southern, an hour, Manukau to the CBD, heavy most of the way in from Papakura. Northwestern, 50 in from Massey, we're heavy on and off all the way in from Upper Harbour. Southwestern, heavy northbound through Whitty. Slow southbound Mount Roskill right to Mangere Bridge. Northern, 33 from Constellation. Slow at Silverdale. Crawling Rebel to Constellation, heavy to the bridge.
3: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, egged and bowled.
5: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
6: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
7: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: Award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
12: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
13: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000.
14: Better.
13: Bank better, New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Harper Toy and Hamilton. Throwback.
17: 8 मिनट रह गए हैं 9 बजने में 8 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपकी खातिर हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में.
18: फिलहाल आपने कहा था कि आप भी जल्दी से रोवा ऐप पर जाकर हम जो है ये सुनिए और फिर एक्सपेरिमेंट जो इधर से होगा. इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस ऑन रोवा ऐप राइट नाउ एंड जैसे कि मैं आपको रिमाइंड करा, इफ़ यू हैवंट डाउनलोडेड द ऐप तो आप रोवा लिखकर ROVA लिखकर 5599 पर भेजिए और आपके पास ऐप जो है ये आ जाएगा, मतलब लिंक आ जाएगा, नॉट द ऐप, बट देन उसके अलावा आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आपको हम ये भी याद दिला दें कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास हमारे साथ, आप भी पार्टिसिपेट कर सकें इन दिस अमेजिंग कॉन्टेस्ट. राहत फतेह अली खान जो है इनको लाइव देखने के लिए डबल पासेस जीतने का मौका है आपके पास. सो ऑल यू नीड टू डू इज सुनते रहना है. जैसे हम आपको इनवाइट करेंगे हमारे पास कॉल करने के लिए, आप हमारे पास कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जो है ये दीजिए जो हम आपसे पूछेंगे और बदले में आप ड्रो का हिस्सा बन सकते हैं. मंडे और ट्यूजडे को हमने कॉम्पिटिशन किया, दो लोगों ने ट्राई भी किया पर अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट बी पार्ट ऑफ द ड्रो बिकॉज दे मिस्ड आउट ऑन इट.
17: आज एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. स्टे ट्यून्ड. एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू टू डू. बस इतना ही करना है, रोवा पर जाना है और हम सुनना है थोड़ी देर के लिए आपको. एंड उसके बाद जैसे ही रिजल्ट्स आएगा वी विल लेट यू नो अबाउट इट. ये थ्रोबैक आप एंजॉय करें, इसके बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट होगा.

0: accurate traffic.
1: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
2: 17 hour high, very wet with heavy rain all day. Into the city, we're starting to ease. Southern, still a slow journey into the city. 55 minutes from Manukau, heavy most of the way from Papakura to town. Southwestern, heavy northbound through Whitty and slow southbound through Mount Roskill. Northern, 30 minutes in from Constellation. We're heavy from Greville to the bridge. Northwestern, 45 in from Massey. Heavy patches there to the city.
1: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
3: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
4: क्यों? क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
6: Okay, everyone, don't forget our bloody important meeting this National Blood Donor Week to give blood or plasma. If you want to get involved, go to nzblood.co.nz, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood, give plasma, save lives.
7: Dad, I feel sick.
8: Yep, we've all been there, and so has Sealeaks. For over 55 years, Sealeaks has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sealeaks and enjoy the journey. Sealeaks is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
9: Karan Ojra brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Ojra live.
10: As a baby, I was burnt in hot water.
11: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
12: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
13: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
14: Hum, time check.
15: Good morning, Isamitik, now we're here.
14: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Morning, I'm Grace Conker with the latest at 9. The government believes mental health and addiction support is turning a corner. 84% of people are accessing primary mental health support within 1 week, and there's been an 11% increase in frontline workers. But the Mental Health and Wellbeing Commission has today launched a new roadmap at Parliament calling for faster, more focused action. And unions are crying foul. The Education Minister is taking control of appointments at the Teaching Council, but Erica Stanford told Parliament the bill, now passed, gives the body more power.
17: High standards for teacher preparedness will only bring improvement if those standards are implemented with fidelity and consistency.
16: An employment survey shows people are feeling down about the economy. The Westpac McDermott Miller Index fell to its lowest level in more than two decades. Economist Michael Gordon says that fuel prices hit household budgets and businesses across the board.
18: Accordingly, they took a much dimmer view of job prospects, wage growth prospects for current conditions and for the year ahead.
16: In sport, England cricket coach Brendan McCullum again denies there's a rift between him and Ben Stokes. The captain will return for tomorrow's decisive third test against the Black Caps at Trent Bridge after being stood down for breaking team curfew.
19: We talked about that this morning. I said, do you know where this has come from, the conversations around sort of our relationship over the last 6 months? He said, no, I have no idea.
16: US President Donald Trump will help present the FIFA World Cup trophy at the final in New Jersey next month. Football updates brought to you by Hisense.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
20: World's best, hamari good brands bhi hai.
14: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: 14.3 degrees temperature abhi Auckland mein aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17, overnight kam se kam 12 degrees rahega. Barish hogi rehkar gambhir barish hogi. Should ease out this evening. Sunset sham 5:14 par aaj hoga.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
21: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
14: What's going on? Kya bakte ho?
22: A
0: What's going on की शुरुआत हम करते हैं हमेशा हमारे क्या बकते हो स्टोरी के साथ, और ऐसी स्टोरी जो आपको भी क्या बकते हो बोलने पर मजबूर कर दे, ये हमारी कोशिश होती है, यही हम आपके लिए लेकर आए टू कीप यू एंटरटेन एंड इन्फॉर्म. बट टुडेज क्या बकते हो स्टोरी इज नॉट जस्ट यू नो समथिंग टू यू नो हार्ड टू बिलीव, बट ऑन द सेम नोट अ बिट सैड एज वेल. तो ये स्टोरी जो है शायद यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस, बट इफ नॉट देन दिस इज समथिंग फॉर यू टू नो. तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है, और वहां के इस छोटे से गांव में एक शख्स है जिनका नाम पेच्चियामल जो है ये बताया गया है. और पेच्चियामल के बारे में बताया गया है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की काफ़ी ऐसे साल, इनफैक्ट नियरली 37 ईयर्स ये इन्होंने बिताए हैं एक अलग आइडेंटिटी जो है ये अपनाते हुए. इनके बारे में बताया गया है कि शी गॉट मैरिड एंड वॉज विडोड जस्ट आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स ऑफ हर मैरिज, एंड शी वॉज लेफ्ट टू रेज अ डॉटर अलोन. जिसके बाद चलकर उनको कॉन्स्टेंटली फिया और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा जब वो नौकरी पर भी जा रही थी, एंड शी हैड टू वर्क टू सर्वाइव और अपने बच्चे को पालने के लिए भी. और एक इंसिडेंट ने उनको इतना ज़्यादा डरा दिया जिसके बाद उन्होंने अपना एक फैसला लिया और उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ये बदल गई. तो ये जो महिला है इनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने वहाँ से एक फैसला लिया, इन्होंने अपने बाल काट दिए बिल्कुल मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल कर लिए, और इन्होंने शर्ट और धोती जो ये पहनना शुरू कर दिया, और पेच्चियामल से ये बन गई मुत्तू. और उसके बाद में इन्होंने एक मेल आइडेंटिटी मुत्तू जो है ये अपनाई, और फिर 37 इयर्स तक इसी आइडेंटिटी के साथ इन्होंने सर्वाइव किया. मुत्तू मास्टर जो है इस नाम से फिर ये जानी जाने लगी, और इन्होंने उस नाम से उस आइडेंटिटी में सेफ्टी भी पाई, एक नौकरी भी पाई जहाँ पर इन्होंने एज अ कुक एज अ फार्म लेबरर ये सारे काम किए लेकिन विद डिग्निटी. और इसके बाद एक क्लोज रिलेटिव और उनकी जो बेटी है दे वर द ओनली पीपल हु न्यू हर ट्रू आइडेंटिटी. विलेज में भी लोगों ने उन्हें एज मुत्तू जो है ये एक्सेप्ट कर लिया, अलाउइंग हर टू लिव एंड वर्क पीसफुली विदाउट कोई भी सस्पिशन फॉर ईयर्स इवन आफ्टर उनकी बेटी की शादी हो गई उसके बाद भी. लेकिन पेच्चियामल जो है इन्होंने मुत्तू रहना ही चूज किया, रिमेन किया कि ये आइडेंटिटी ही ये अपनाएंगी, एंड दैट आइडेंटिटी हैड बिकम हर शील्ड अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड सेफ्टी जो इन्होंने चुना था खुद, अपनी ये पहचान इन्होंने खुद चुनी थी तब जाकर उनको वो फ्रीडम और आजादी जो है कि मिली.
4: क्या कुछ नहीं करते हैं लोग अक्सर जिंदगी में, या करना पड़ता है.
0: आई थिंक दैट वुड बी द करेक्ट वे, बिकॉज या इट्स नॉट फॉल्स और अननोन की लोग जो है करने के लिए, मतलब अपनी मर्जी से भी कई बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं लोग, बट इन सम सिचुएशंस पीपल दे हैव नो अदर ऑप्शंस टू सर्वाइव, और इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है. इनके केस में ऐसा ही हुआ, इनके पास कोई और रास्ता नहीं था. बिकॉज एज अ वुमन शी वॉज बींग हरेस्ट आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, एज अ वुमन शी फेस्ड अ लॉट ऑफ यू नो ऐसे सिचुएशंस जहां पर इनको खुद की सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स थे, अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स थे, एंड दैट्स व्हेन उन्होंने ये फैसला लिया. बाय द वे इन्होंने उसी गांव में रहकर नहीं अपनी पहचान बदली थी, बट शी हैड टू चेंज हर विलेज, किसी और गांव में जाकर इन्होंने बसना पसंद किया जहां पर इन्होंने अपनी इस नई पहचान के साथ अपनी जिंदगी जो है ये बिताई.
4: तो ऐसी और भी कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें आपके लिए होंगी इस प्रोग्राम में.
22: शादी कर सकते हैं
23: क्वीन विक्टोरिया की.
22: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: कम्युनिटी की खबरों का वक्त अब हो चुका है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। सबसे पहले फिजी इलेक्शन वोटर रजिस्ट्रेशन, ये आज से शुरू हो रहा है और फ्राइडे तक जारी रहेगा। सेंटर पार्क मैंगरी में दिन में 12 से लेकर 8 बजे तक आप जाकर फिजियन इलेक्शंस के लिए यहां पर रजिस्टर हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
4: दूसरी ओर ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा इसी फ्राइडे को होगी 26 जून को 7:15 PM से ISD कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरीज के लिए आप पहुंच सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं।
3: न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए ला रहे हैं श्री राम लीला, और अगर आप टीम में शामिल होना चाहते हैं एज ए विजुअल क्रिएटिव डायरेक्टर या फिर स्टॉल इंक्वायरीज हैं आपके पास तो मास्टर अशोक से डेफिनेटली आप बात ये कर सकते हैं 0211795459 पर।
4: एंड दूसरी ओर डोंट फॉरगेट प्रीमियर टिकट्स.co.nz विजिट करते हुए सिद्धार्थ रंडेरिया की गुज्जू भाई प्रोडक्शंस, जबकि ये लेकर आ रहे हैं गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर, एक बहुत ही अमेजिंग हिलेरियस क्लासिक गुजराती ह्यूमर के साथ इनका गुज्जू भाई प्ले, तो आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं। कैन विटनेस इट फ्राइडे 12 जुलाई को 7:30 PM से एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर, जहां पर इनका ये जो ब्रांड न्यू कॉमेडी शो है सिंस गुज्जू भाई जो है ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट अप इन एन अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर, और ये जो एक्सचेंज ऑफर है उनके लिए कैसा साबित होता है, क्योंकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जो भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स होंगे, ये आपके लिए हंसने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। बट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, premierticket.co.nz से टिकट जरूर ग्रैब कर लीजिएगा।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Mary didn't think she needed a DVS system.
2: I've got a heat pump.
1: That should do, but it didn't do it. Did it, Mary?
2: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
1: So Mary got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
4: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
3: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
5: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
6: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आम छे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
7: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
8: Bunnings brings you the lowest prices on Solid Energy 15-litre kindling box, just $13.40. Where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
9: The global phenomenon returns.
10: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
11: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
9: Watch the series the world will be talking about.
12: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
10: This is the moment you become queen.
9: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी समय की ओर देखें तो 19 मिनट हो रहे हैं, अब 9:00 और आपने कहा था कि राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट 25 जुलाई को दी ट्रस्ट एरिना में ये रहेगा और इसके लिए टिकट्स dryTickets.com पर बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश है और आपने अगर टिकट्स नहीं लिए हैं तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जल्द से जल्द अपने टिकट्स ले लें और अगर नहीं तो एक डबल पास जीतने का मौका अब हम आपको दे सकते हैं।
3: आपको बस कॉल करना है हमारे पास और इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज 0800 004866 पर आप कॉल कीजिए एंड वंस यू गिव अस अ कॉल आप से हम पूछेंगे कुछ सवाल। 30 सेकंड्स का टाइम देंगे आपको और जैसे ही आप हमारे पास कॉल करने के बाद उस सवाल का जवाब दे देंगे विद इन 30 सेकंड्स तो आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहां पर यू कैन विन योरसेल्फ अ डबल पास टू गो एंड विटनेस नन अदर देन राहत फतेह अली खान।
2: सो लाइंस अब हम आपके लिए खोल रहे हैं 0800 004866 ये हमारा नंबर है। क्या पता आज वेंसडे 24 जून का दिन आपके लिए सबसे लकी हो, अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो अब कॉल करें। रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, फटाफट आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं लेकिन कभी कभार थोड़ा ट्रिकी जो है ये भी आपके लिए हो सकता है। गुड मॉर्निंग, हेलो।
4: हेलो विजय भाई, कैसे हो जी? हरदीप हेयर।
2: हरदीप आपने बोला सर?
4: हाँ जी हाँ जी।
2: हरदीप कैसे हो भाई?
4: बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ सर?
2: हम भी ठीक हैं, बढ़िया है। बारिश हो रही है।
4: पूछिए जी।
2: पूछिए पूछिए। हाँ पूछना है आपसे कुछ सवाल तो उस्ताद राहत फतेह अली खान इनके गाने पसंद हैं आपको?
4: हाँ जी।
2: ओके, दैट्स वेरी गुड। पहले इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा आपने?
4: हाँ जी सर, पिछले साल देखा था।
2: ओके, तो इस बार वापस जाना चाहते हैं?
4: हाँ जी।
2: ओके, वैसे किस एरिया में रहते हैं आप?
4: हेंडरसन में जी।
2: अच्छा, हेंडरसन में रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब क्या होगा कि पूजा आपसे सवाल पूछेंगी और बैकग्राउंड में एक 30 सेकंड टाइमर जो है ये भी चलता रहेगा, म्यूजिक चलता रहेगा जो सिर्फ 30 सेकंड्स का है। अगर उस म्यूजिक के खत्म होने तक आपने पांचों सवालों के जवाब दे दिए तो आपका नाम ड्रॉ में जाएगा, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली आपका नाम हम ड्रॉ में शामिल नहीं कर पाएंगे। तैयार हैं आप?
4: हाँ जी हाँ जी।
3: Okay, Hardeep, all the very best to you. And today's your first question. And your time starts now. Which movie features his hit song, Ore Piya?
4: Sorry, Ore Piya?
3: Ore Piya. Which film is the song that Rahat Fateh Ali Khan has sung?
4: Maybe...
3: Oh...
2: चलो कोई नहीं हरदीप, आपने कॉल किया इसके लिए थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली आपका नाम आज हम ड्रॉ में शामिल नहीं कर पाएंगे लेकिन आपने कॉल किया, आपने दिलचस्पी दिखाई कि आप जाना चाहते हैं, वही बड़ी बात है ना?
3: Yes, I truly understand that and thank you so much Hardeep हमारे साथ आज कोशिश करने के लिए। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि अभी बहुत से लोग जो है ये विदिन टाइम लिमिट जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे करते हैं अभी हम ना आपको यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राहत फतेह अली खान का जो गाना है ओरे पिया ये किस फिल्म का गाना है, आप टेक्स्ट कीजिए हमारे पास।
2: अच्छा,
3: करेक्ट एंट्रीज का नाम हम ड्रॉ में करेंगे, ठीक है?
2: अच्छा,
3: ओके, थैंक यू।
2: तो भेजिए अपने आंसर्स 5599 पर, लेट्स सी क्या आपको जवाब सही सही पता है या नहीं पता है। बाय द वे अपडेट आपको दे दे, जो मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और घाना के बीच ग्रुप एल का ये मैच है फीफा वर्ल्ड कप में और सेकेंड हाफ में मैच जारी है, इट्स स्टिल इंग्लैंड नील एंड घाना नील।
3: तो याद रहे
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
0: Hollywood's most wanted.
5: Gundi khad gao ya seedha andar
1: रहा हूँ अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 29 मिनट रह गए हैं 10 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और बॉलीवुड की और भी खबरें जो हैं ये हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अभी आमिर खान फिल्म्स जो हैं ये काम कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म पर जो इस साल 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है।
1: अच्छा, कौन सी फिल्म है ये?
0: बहुत ज़्यादा उसके बारे में अभी तक सरप्राइजिंगली चर्चा नहीं हुई है। वैसे फिल्में जो हैं बंटवारे के बारे में, पार्टीशन के बारे में बहुत सारी बनी हैं। ये जो फिल्म है कहते हैं कि जो एक्चुअल बंटवारा का असर है इसका, ये कैसा था लोगों पर, ये फिल्म उसको एक्सप्लोर करती है।
1: नो
0: पार्टीशन इन इंडिया, एक बहुत ही डिफाइनिंग चैप्टर जब मिलियंस ऑफ लोग जो थे उनको अपना घर छोड़कर एक नई जगह पर जाकर बसना पड़ा था, जब नए बॉर्डर्स जो है ये बनाए गए थे। और इस फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से बंटवारा 1947। और राजकुमार संतोषी इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। इस फिल्म के बारे में अभी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय जिस लाहौर नई वेख्या, मुझे समझ में
1: इसका मतलब आई थिंक है कि जिसने लाहौर नहीं देखा।
0: हाँ, ये 1989 का एक प्ले था जो प्रोफेसर असगर वजाहत ने लिखा था, और इसको जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। और काफ़ी डीप ह्यूमन नैरेटिव है इस प्ले का, तो इसकी वजह से इसको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया था। एंड द फैक्ट दैट सच अ पावरफुल प्ले इज़ नाउ बीइंग अडेप्टेड फॉर द बिग स्क्रीन, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है लोग कह रहे हैं। और देखना है कि अभी जो कास्ट है और सारी चीज़ें हैं इस फिल्म के बारे में ये उतनी अच्छी तरह से रिवील नहीं की गई है।
1: आई थिंक यू नो एक टाइम होता है जब कोई भी फिल्म का एक दौर होता है, लाइक स्टोरी, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरी, जैसे हॉरर कॉमेडी है तो यू विल सी अ लॉट ऑफ हॉरर कॉमेडी मूवीज रिलीजिंग, कॉमेडी फिल्में हैं तो बस कॉमेडी फिल्में ही आएंगी, देयर इज अ मूवी दैट इज एक्शन बेस्ड तो वही आएंगी, हिस्ट्री पर बेस्ड हो तो वही आएंगी, माइथोलॉजिकल मूवीज सेम। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब पार्टीशन पर बेस्ड काफ़ी फिल्में देखने को मिलेंगी विद मैं वापस आऊँगा रिलीज दिस ईयर और गेटिंग अ लॉट ऑफ लव। इन फैक्ट आई थिंक शायद ये अभी नया हॉट टॉपिक बन चुका है फॉर द फिल्म्स आउट देयर और द फिल्म मेकर्स आउट देयर, जो इसी नोट पर उनकी फिल्में जो है ये शायद वो रिलीज करने वाले हैं या बनाने वाले हैं।
0: ये तो वक्त ही बताएगा, और अगर हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको डेफिनेटली इसके बारे में जानकारियां जरूर देंगे। अभी 25 मिनट रह गए हैं 10 बजने में।

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Gillette, Nestle, Oral-B and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only. At Woolworths. T's and C's apply.
3: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
4: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
5: Kogan Mobile. True Aussie value.
4: Terms and conditions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: What's going on?
8: अभी तो डेली राउंडअप का वक्त हो चुका है. सबसे पहले BNZ का कहना है कि वो अपने छोटा फिक्स टर्म मॉर्गेज रेट्स जो है इनको बढ़ा रहा है एंड कटिंग द लॉन्गर टर्म रेट्स दैट इट हैज ऑन ऑफर. आज से बैंक ने अपना स्टैंडर्ड 6 मंथ रेट जो है 4.49% से बढ़ाकर 4.69% कर दिया है. 1 year और 18 मंथ रेट्स वेंट अप 0.14% टू 4.79% और 5.09%. 2 year term fixed rate जो है increased from 5.19% से ये अब बढ़कर 5.29% पे एनम हो चुका है. जो लॉन्ग टर्म रेट्स हैं जिनमें 3 year, 4 year और 5 year terms हैं सब में बिटवीन 0.1 से लेकर 0.3% की गिरावट देखी गई है. 3 year rate 5.29% हो गया है. 4 year rate 5.39% और 5 year rate 5.49% जो है

0: begin. Our popular destinations for travel internationally are Australia, China, and Fiji. And about 680,000 travelers will pass through Auckland Airport between 24th of June till 19th of July, which has gone up by 1.5% from last year. Domestic travel ki baat hi kare, to it is expected to be 3.5% lower, but 3rd July will be the busiest day with around 14,000 departures abhi tak jo note kiye gaye hain, with Christchurch, Wellington and Queenstown being the most popular domestic destinations. Travelers ko advise kiya gaya hai to arrive early at the airport, check airline information in advance, aur batteries wagera, earbuds wagera jo hai ye aap apne carry-on luggage mein rakhe for safety. So keep in mind, if you are travelling, the busiest international departure days jo Auckland Airport mein Saturday 27 June, Thursday 25th June aur Saturday 4th of July maane ja rahe hain, and the busiest arrivals at the Auckland Airport Saturday 4th of July, Saturday 11th of July and Sunday 12th of July jo hai ye maane ja rahe hain. Now domestic departures, busiest days Friday 3rd July, Friday 17th July and Thursday 9th July. Jibki domestic arrivals, busiest days are Friday 3rd July, Friday 17th July and Saturday 19th July.
1: इसके अलावा आज सुबह चेतावनी दी जा रही है कि अपर नॉर्थ आइलैंड में काफ़ी गंभीर बारिश होगी और झोंके के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं. मेट सर्विस का कहना है कि इसकी वजह से लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो सकती है, रास्ते पर फिसलन ज़्यादा होगी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ सेवाओं में बाधाएं आ सकती हैं, स्पेशली पीक आवर्स. अगर आपको बाहर जाना है, यू नीड टू एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कॉशन. और वेदर वार्निंग्स के जो हैं ये भी इशू किए गए हैं. ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग इशू किया गया है कोरोमंडल पेनिनसुला के लिए आज रात 8 बजे तक, बे ऑफ प्लेंटी वेस्ट ऑफ कावेराउ कल सुबह 3 बजे तक, जहां पर 120 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ईस्टर्न नॉर्थलैंड साथ में ऑकलैंड और ग्रेट बेरिया आइलैंड जो है इनको हैवी रेन, यहाँ पर हैवी रेन वॉचेस जो है ये इशू किए गए हैं. तो मौसम आज बहुत ख़राब होने वाला है. मेक श्योर आप अपना बहुत ख्याल रखें.
0: इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी बातें हो रही है. कहा जा रहा है दी एजुकेशन सिस्टम इज़ फेलिंग मैनी एट रिस्क. स्टूडेंट्स जो है ये सामने आ रहे हैं एंड इसके मामले में ये बात कही गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स को छोड़ रहे हैं फॉर अल्टरनेट एजुकेशन, इट हैज़ डबल्ड इन द पास्ट डेकेड. ओवर 8,000 स्टूडेंट्स जो है ये सामने आए हैं विद सम लिविंग एज अर्ली एज ईयर 9. दी एजुकेशन रिव्यू ऑफिस ने वार्निंग भी दी है दैट मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव पुअर एकेडेमिक आउटकम्स एंड नीड बेटर सपोर्ट. It is calling for schools to do more to keep vulnerable students engaged and for increased funding and qualified teachers, जो कि alternative education settings वगैरह जो है इसमें बच्चों की help कर सकते हैं. Students are often referred because of behavior, poor attendance, learning difficulties या mental health issues or bullying की वजह से भी. And Maori students from इनके बारे में कहा गया है कि they have a disadvantage बेसिकली, या फिर यू कह सकते हैं जो पैसिफिका कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन. और एक परसेप्शन बन जाता है इनकी कम्युनिटी को लेकर, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है. एंड टू अवॉइड दैट द किड्स बेसिकली दे ऑप्ट फॉर लिविंग मेन स्ट्रीम स्कूल्स. रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि फेलिंग टू सपोर्ट दी स्टूडेंट्स अर्ली लीड्स टू हायर सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स बाद में चलकर, जिसमें ग्रेटर रिलायंस और बेनिफिट्स एंड हायर रेट्स ऑफ ऑफेंडिंग जो है ये सब शामिल है.
1: और भी कई खबरें जो हैं ये सामने आ रही हैं, इन पर भी डिटेल्स वगैरह जो है ये हम आपको बारी बारी से इस प्रोग्राम में देते रहेंगे. फ्रांस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ये पड़ रही है. फ्रांस हैज़ रिकॉर्डेड इट्स हॉटेस्ट डे एवर, और एली हीट वेव जो है यूरोप में फील किया जा रहा है. और आइफल टावर और जो लुवर म्यूजियम है यहाँ पर विजिटिंग आवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. स्कूल्स में डिसरप्शन हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल्स जो हैं ये चेंज किए गए हैं इन मल्टीपल कंट्रीज. और टेम्परेचर्स जो हैं ये काफ़ी बढ़ गए हैं यूनाइटेड किंगडम से लेकर स्पेन के बीच. और वेदर एजेंसीज ने रेड अलर्ट्स इशू किया है, लाइक फ्रांस ने जैसे किया है. रिकॉर्ड ऑफ 29.8 डिग्रीज फ्रांस के नेशनल थर्मल इंडिकेटर में देखा गया है. और एन एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स मेजर्ड एट 30 वेदर स्टेशंस एंड वाज़ द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ नेवर बिफोर रजिस्टर्ड हाई टेम्परेचर्स.
0: तो आपके लिए और भी अपडेट्स हम जरूर लेकर आएंगे, वेदर वी इट न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड से बाहर।

0: जो भी जरूरी चीजें हैं डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे. सम पीपल माइट यू नो बी इन अ सिचुएशन जहां पर वो ऐसे, जैसे फ्रांस के बारे में भी आपने कहा कि एक्सट्रीम हीट फेस किया जा रहा है, तो लोग वहां से निकलकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है कि ट्रेवल करने के बारे में सोच रहे होंगे टू एस्केप द हीट एंड टू बी इन अ मच कूलर कंट्री. तो वही न्यूजीलैंड के बारे में भी कहा जा रहा है दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली प्लानिंग टू गो आउट ऑफ न्यूजीलैंड करंटली ताकि वो ज्यादा वार्मर कंट्रीज जो है ये विजिट कर सके.
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
2: बहुत इंटरेस्टिंग मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और घाना के बीच. ग्रुप एल का ये मैच है. अराउंड 10 मिनट्स रह गए हैं मैच को पूरा होने में. अभी भी दोनों टीमें नील ओल से बराबर हैं.

0: दो बातों का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और आज की दो बातें जो हैं उन पर थोड़ा गौर करें तो बेहतर होगा। कहते हैं कि मुझे मशहूर होने का, या सॉरी मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब, किसी ने कहा
1: किसे है? बहुत से लोगों को है आजकल।
0: तो किसी ने कहा कि मशहूर होने का शौक यहाँ किसे है साहब, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले तो काफी है।
1: क्या बात है भाई, वेरी डीप।
0: और दूसरी बात आज की, नींद रोज खुलती है। नींद रोज खुलती है पर आंख कभी कभी।
1: It is something that will basically make you think about कि आप लाइफ में किस हिसाब से सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, किस हिसाब से लोगों की परख करते हैं।
0: Some people come as lessons in our life, ना? कुछ लोग जिंदगी का पाठ पढ़ा जाते हैं और आंखें हमारी तब खुलती हैं कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। नींद रोज खुलती है, आंख जो है ये कभी कभी, कभी खुलती है।
1: आंख जब धक्का लगता है ना ऐसे जोर का, तब आंख खुलती है। बट नेवरदलेस बिफोर वी लीव, हमने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि ओरे पिया राहत फतेह अली खान का बहुत ही फेमस ये ट्रैक किस फिल्म का है, तो उसके लिए आपने हमें अपने आंसर्स भी दिए हैं। तरन्नुम का जवाब आया है, साथ में नेहा है, संप्रीति है, साथ में सपना है, कुशाल है, साथ में मानसी देसाई, शोएब और पुष्पा, आप सबके आंसर्स हमें मिले। कुछ लोगों ने जवाब लिखा है लेकिन नाम नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली वी वॉन्ट बी एबल टू गिव यू अ शाउट आउट, बट थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वेंसडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीक। हम मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर।

0: क्योंकि आ रही है
1: My Time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:03 होने वाले हैं एज आई स्पीक. आपका दिन कैसा शुरू हुआ है भाई? तूफान में, बारिश में, मैं तो ट्रैफिक में फंसी हुई थी. एक घंटा, जहाँ आधा घंटा लगता आने में, यहाँ उतने मुझे एक घंटा लगाने में, क्योंकि बाहर ट्रैफिक काफ़ी था. और धीरे धीरे भाई ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं ठुक जाए, इसलिए आराम से गाड़ी चला रही थी. बट फिर भी टाइम से मैं पहुँच गई. लेकिन ये देखो, समय के लिए हमें कितना पाबंद होना पड़ता है, कितना हमें केयरफुल होना पड़ता है कि हर एक चीज़ समय पे हो. जैसे कि मैं समय से पहुंच जाती हूं और फिर समय से ही निकल जाती हूं, माय टाइम लेकर आ जाती हूं. आपकी मैं रिमाइंडर क्लॉक कशिका अभी भी आ चुकी हूँ. और कशिश फूड के सौजाने से ये बिल्कुल आपके लिए मुमकिन हो जाता है, जहाँ 10 से 12 बजे के बीच में हम और आप बताते हैं और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं. भाई जब बातें अच्छी कर रहे हैं, मौसम तो ऐसे ऐसे ही होने वाला है. एक ही बात बता सकती हूँ, कह सकती हूँ दैट समय का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि समय जब अपना फैसला देता है, निर्णय करता है ना, तब उसे किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है कि नहीं. वो अपना निर्णय बता देता है कि टाइम आता है और अपने आप अपना अपनी अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंस, अपना महत्व बता कर चला जाता है. होता है कि नहीं ऐसा? हम सभी के साथ होता है और बहुत कुछ सिखा के जाता है हमें ये समय. माय टाइम में आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं बातें करने के मूड में हूँ, तो राहत फतेह अली खान जी के लिए मैं थोड़ी देर बाद लाइंस खोलने वाली हूँ. ठीक है? अच्छा, उनके लिए मतलब उनके कॉन्सर्ट के टिकट के लिए. ऑलराइट, प्लीज गेट मी राइट देयर. सो मैं लाइंस खोलूंगी और मैं आप लोगों से कुछ 3 सवाल पूछूंगी, और 3 सवाल जब मैं पूछ लूंगी उसके बाद बस आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी फॉर अ डबल पास 25 जुलाई को जो होने वाला है ये. अच्छा चलो पहले गाना बजाती हूँ, उसके बाद बाकी बातें बाद में.

0: What's Adda?
1: All right, आज मेरे एक्सपर्ट अड्डा में मैं चाहती हूँ कि आप आएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आप एक्सपर्ट बनकर इसका जवाब देने वाले हैं और मैं आपका नाम ऐड करने वाली हूँ फॉर द ड्रॉ. 3 सवाल होंगे जो मैं पूछने वाली हूँ और आपको उनके जवाब मुझे देने हैं, ठीक है. एंड दिस इज़ रिलेटेड टू राहत फतेह अली खान जी. अब ये 25 जुलाई को ये आने वाले ठीक एक महीने बाद हमारे सामने परफॉर्म करने के लिए 0800 00 हम पर आपको कॉल करना है. 0800 00 4866 पर आपको कॉल करना है, अपना नाम रजिस्टर करना है. मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी अगर आपने 3 सवालों का जवाब मुझे दे दिया. बहुत इजी सवाल होंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. वैसे आपको मैं प्रोग्राम के बारे में भी बता देती हूँ दैट ये दोबारा आ रहे हैं ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करेंगे. 25 जुलाई के दिन इसे प्रेजेंट कर रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. टिकट्स इसकी अवेलेबल हैं dryTickets.com के ज़रिए. और मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा आए. कल तो बहुत सारी कॉल्स आई थी, आज देखते हैं कि कोई फ़ोन करता है कि नहीं करता, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है. एंड देन आपका नाम है ड्रॉ में ऐड करूँगी. बहुत जल्द आपके लिए ड्रॉ के जो हमारे आंसर्स जो हम आपको दे रहे हैं बताएँगे. वैसे सपना एंड हरदीप लास्ट टाइम आपने किया भी था, एंड सपना met him at the airport as well. Let's do this. Come on. It's not so difficult. I can say that कि आप try ज़रूर कर सकते हैं कि आप कुछ भी आप मैं बहुत ईजी सवाल पूछूंगी, सो डरना नहीं बिल्कुल. वैसे एक बात और है, जब आप आ ही रहे सड़कों पर हैं तो अपर नॉर्थ आइलैंड में कहा जा रहा है कि कम्यूटर्स को वॉर्न किया जा रहा है मेट सर्विसेज के द्वारा, जहाँ पे फ्लडिंग, स्लिपरी रोड्स, डिसरप्शन जो हो सकता है टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली पीक आवर्स के टाइम पर ये हो सकता है. एंड हैवी रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं इसकी वार्निंग भी इन प्लेस है. सो इंश्योर दैट आप जब जा रहे हैं आपकी स्पीड लिमिट कम हो, आप आराम से गाड़ी धीरे धीरे चलाइए. एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कुछ क्लाउडी स्काइज थ्रू आउट रहने वाले हैं, कल का दिन भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है. सो ये करंट वार्निंग्स राइट नाउ विच आर इन प्लेस, हैवी रेन वॉच ऑकलैंड के लिए बताई गई है 12 घंटे यानी कि शाम 6 बजे तक ये वार्निंग इज़ गोइंग टू बी इन प्लेस. चलो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन कोई मुझे लगता है सवाल बहुत ही सिंपल था मेरा कि आप में से कोई भी मुझे कॉल कर सकता है और मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर सकती हूँ. सो के मत उठना प्लीज़, जल्दी जल्दी अगर कॉल कर सकते हो तो करो. ये सुनहरा मौका मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं गंवाएं. ओके, ऑफिस शाउट आउट का वक्त आ रहा है, सो लेट्स जस्ट गेट ऑन.
0: माय टाइम विद कशिका.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप भी तो नहीं.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
2: Leaving Midwinter Madness Meltdown is on now. Score awesome deals across the latest tech from smartphones to smart home. Don't miss out, these hot offers won't last long. Plus, flexible payment options to suit you. Conditions apply. Midwinter Meltdown on now at No Leaving.
3: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if Frosted Tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
4: Dragon!
5: The global phenomenon returns.
6: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
7: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
5: Watch the series the world will be talking about.
8: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
6: This is the moment you become queen.
5: HBO original House of the Dragon. Stream now only on HBO Max.
9: Film बिल्कुल fake और danger एकदम real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
10: एक जबरदस्त कहानी है.
11: और title क्या है film का?
10: Welcome to the Jungle.
9: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26 June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
12: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
13: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
12: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
14: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Office shout out.
17: ऑफिस शाउटआउट में आज मुझे हैमिल्टन से वेब टाइगर्स के मितेश जी आप सुन रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. और आप का यू नो मैसेज आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो बट दिस इज राइट नाउ द मूड, जहाँ पे इस मूड के लिए मैं कह सकती हूँ आपके मूड में हम चार चांद और लगा सकते हैं. कैसे? क्योंकि अगर कभी कभी किसी का मूड होता है, इससे हमें थोड़े पुराने गाने सुनने, आज थोड़ा पंजाबी गाने सुनने, आज थोड़ा हमें कुछ और गाने सुने हैं, तो भाई आपके लिए हमारा म्यूज़िक स्टेशन ही काफ़ी रहेगा आपके मूड्स के लिए. क्योंकि हम रोवा ऐप के ज़रिए जब आपको आप हमें सुनते हैं तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस आते हैं. आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि वहाँ पर आपके लिए आता है हम रिवाइंड, जहाँ आप 60s एंड 70s के हिट गाने, बॉलीवुड के गोल्डन एरा के गाने सुन पाते हैं. 80s का जूक बॉक्स आप सुन पाते हैं, जहाँ 80s के जूक बॉक्स में आपको उस एरा के गाने मिलते हैं जो आई थिंक सब सुन के बड़े हुए हैं. साथ में फीजी भजन जो है 24/7, ये फीजी भजन जो है इसका एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ये आपके लिए रेडी कर दिया है. पंजाबी गाने मिस कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो चढ़दी कला आप बैक टू बैक पंजाबी हिट सुन सकते हैं. फीजी कीर्तन संग्रह में, फीजी कीर्तन संग्रह में आपके लिए नया पूल में ऐड कर दिए गए हैं अविनेश चंद, सोनम बाली, संजय शनील चंद्रा, मंजीत प्रसाद मिलन, अमित कुमार, रविनेश चंद, रवि, नितिन, नीलेश, प्रकाश, देवेन्नाथ, केविन कुमार, अब उपरोहित प्रसाद, शैलन सिंह और बहुत सारे ऐसे कलाकार. 24/7 आप ये गाने सुन सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट राहत फतेह अली खान का भी एक खूबसूरत सा म्यूजिक स्टेशन है.
15: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Wah.
1: How?
0: I'm good.
1: Are you ready? Chatbusters.
2: थोड़ा तो हॉल बना दे.

0: Insights, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: So, जब बात कर रहे हैं अबाउट टीम ए के टेबल के लिए तो 6 points पर हैं मेक्सिको, साउथ कोरिया जो हैं 3 points पर हैं, चेक जो हैं ये 1 point पे, साउथ अफ्रीका 1 point पर हैं, और अगर मैं आज की बात करूं तो इंग्लैंड एंड घाना का ग्रुप एल में मैच हुआ और दोनों ने कोई वो नहीं बनाया गोल और साथ कोई पॉइंट्स नहीं लिए, और पुर्तगाल की जीत हुई उज़्बेकिस्तान से, आज के दिन की बात है। बस थोड़ी ही देर बाद पनामा वर्सेज क्रोएशिया का भी मैच होने वाला है।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Eat better, live better.
1: Eat better, live better की तो मैं बातें करती ही करती हूँ, लेकिन बॉलीवुड की तरफ भी आपको लेके चलती हूँ। एक बात तो है, यू नो, एक पर्टिकुलर फिल्म जो थी, एक बहुत ही मच अवेटेड टीजर जो था ऑफ श्रद्धा कपूर, इथा, आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस इट राइट और नॉट, माफ़ कीजिएगा, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रोल होने वाला है श्रद्धा कपूर के करियर का, जहाँ पर ये एक लेजेंडरी मराठी तमाशा आर्टिस्ट विठाबाई नारायण गोंकर के रोल को अदा करने वाली हैं। 28 तारीख को यानी रक्षाबंधन वाले दिन अगस्त में ये रिलीज़ भी होगी, और इसका टीज़र जो था थिएट्रिकल कॉकटेल 2 के साथ 19th को रिलीज़ कर दिया गया। ऑडियंस के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी आ गई थी। 2 minutes 18 seconds का ये टीज़र है, अगर आप ढूंढेंगे EETHA के नाम से, यू विल सी एक बड़ी कन्वेंशनल स्टार एंट्री, एकदम डिफरेंट रोल, एकदम डिफरेंट अपीयरेंस। अब आप इनको देखेंगे तो सच्ची में आपको लगेगा कि ये खुद श्रद्धा कपूर जो थी, ये ट्रांसफॉर्म हो गई एज विठाबाई नारायण गोंकर के तरह, एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक परफॉर्मर्स जो हुआ करती थी, और ये किस तरह से उस पूरे कैरेक्टर में घुस चुकी हैं। और ये टीज़र जब ये ड्रॉप हुआ तो इनका एक पोस्टर जो था वो भी, इनके ट्रेडिशनल अटायर के साथ वाइब्रेंट पोस्टर मैं कह सकती हूँ, वो भी घूमने लग गया सोशल मीडिया पे, एंड ऑफ कोर्स इट लुक्ड अमेजिंग, शी इज़ लुकिंग रियली लवली, आई एम वेटिंग टू वॉच दिस श्योरली। एंड दिनेश विजन की ये प्रोडक्शन जो है, इसमें डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर जो हैं, इन्होंने जो टीम है छावा टीम, और इस फिल्म में रणदीप हुडा और मोहम्मद ज़ीशान अयूब भी नज़र आने वाले हैं। अजय अतुल ऑफ कोर्स, इनका म्यूज़िक तो भी क्लास पार्ट होता है, तो ये आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग्स विच आर ऑफ अजय अतुल।
2: Driving you home. Drive. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला,
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
6: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
7: Woody? No worries.
8: South Auckland's buses just became a lot better.
7: Oh my, oh my.
8: With better bus routes, more frequent buses, and more.
7: Grey South Road? Now even greater.
8: Search AT Better South Auckland Buses for more.
2: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Warsi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
9: Ek zabardast kahani hai.
10: Aur title kya hai film ka?
9: Welcome to the Jungle.
2: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner Forum Films, rating TBC.
11: From DC Studios, Supergirl is crashing into cinemas this Thursday. Starring Millie Alcock with David Corenswet as Superman and Jason Momoa as Lobo. Don't miss this epic galaxy-hopping blockbuster. Supergirl in cinemas Thursday.
12: Let's get to it.
11: Rating TBC.
13: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely everything. All sofas, all furniture, all mattresses and all homewares. Hurry, sale must end soon. Only at Freedom.

आई वुड से दैट इस तरह का जब ड्रीम आता है सो आपकी जो एक डिसीशन मेकिंग होती है वहाँ आपकी पावर जो है वो कैंसिल होने लगती है. डिसीशन मेकिंग जो कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे एक पावर होती है जो उन चीज़ों को हटा देती है. सो पिकिंग अप अ प्रॉब्लम, जैसे कि कह सकते हैं इंडिविजुअली अगर आपको पिक करना है आपकी प्रॉब्लम, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को उसके बारे में सोचते नहीं, अपनी पावर एक और होती है अंदर नेगेटिव, उससे आप उन चीज़ों को हटा देते हैं. और प्रॉबेबली यू आर डूइंग इट इन अ वेरी वेरी फास्ट वे. ये नेगेटिव ड्रीमिंग जो है दरअसल ये काफ़ी टेरिफाइंग भी हो सकती है, एंड इट्स गॉट एक्चुअली अ फीलिंग जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है किसी के अंदर, और या फीलिंग जहाँ पे आपको होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिंदास या बहुत ज़्यादा फेयरलेस हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर. लेकिन फिर जिस समय प्रॉब्लम सामने आने लगती है आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत हार्ड अगर आप फोकस करते हैं किसी चीज़ में, और फिर जब उन चीज़ों को कैंसिल करने लग जाते हैं चीज़ें अलग होने लग जाती हैं. तो ये जो प्रोबेबली एक फीलिंग है इट्स अबाउट सीरियसनेस ऑफ सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एज वेल, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है हो सकता है उसकी वजह से किसी के अंदर बढ़ रही है. कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास वो मनी एक जो आप रोल कर रहे होते हैं वो आपके पास पैसे नहीं आते और आपको समझ में नहीं आता आप आगे क्या करेंगे. लेकिन अभी आप आगे देखिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं अच्छी तरह से गाड़ी चलाइए. ये बहुत ही एक अलग किस्म का विचित्र किस्म का सपना था, एंड मुझे थोड़ा वक्त लगा क्योंकि कल ये सपना जब आया था आई हैड टू लिटरली लाइक मतलब सोच के समझ के तभी मैंने इसका आपको रिप्लाई दिया है, एंड आई होप आप उसे कहीं से रिलेट कर पाए.

एक बात तो है दैट अगर आप लोग हंसने हंसाना चाहते हैं तो आपके लिए एक मौका है बहुत ही बढ़िया सा. और हंसने से पहले एक बात और बता देती हूँ कि सनराइज है, नई फ्रेंडशिप है, रोड ट्रिप की प्लेलिस्ट है, बहुत सारा खाना है, एंडलेस हंसियाँ हैं, एक मूवी लगती है ना, बट दिस कुड बी प्रॉबेबली योर ईस्टर 2027. अरे स्टे ट्यून भाई जानने के लिए कि क्या होने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत जल्दी आप तक हम ये खबर भी पहुंचाने वाले हैं. और क्या होगा अगर ईस्टर 2027 की अगर मैं बात करती हूँ. सोचते रहिए, घूमते रहिए.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. T's and C's apply.
3: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
8: Attention, please. I'm calling this meeting to order to announce a bloody important meeting.
9: A point of order, Madam Chairperson. Isn't this a bloody important meeting?
8: No, not as important as our next bloody important meeting. We're giving blood and plasma as a blood group. All in favour, say aye.
10: Aye.
11: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
0: Time check.
12: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Staff at one of Duke and NZ's Northland Mills face an uncertain future. Workers First Union claims workers were called to a meeting this morning and told no buyer had been found. A proposal to close will be open for consultation until July 8th. The union says the second mill at Tri-Board wasn't included in today's announcement. A mass internet outage is affecting parts of Auckland CBD and fringe suburbs. More than 1,000 properties impacted, mainly around Grey Lynn and Westmere. Chorus says a technician is on site. Alarm bells are ringing about education reform changes, which have passed their third reading. Members of the Teachers' Council will be appointed by the Minister. NZDI President Rebecca Lascelles says teachers and principals bring a necessary perspective to the council.
14: And if that's not there, then it had a major impact on whether the governing body will be the true and authentic voice of the sector.
13: And an Auckland restaurant has been ordered to pay $377,000 for exploiting migrant workers. MB says the Indian Taste Limited breached standards, including not paying minimum wage or holiday entitlements. Employees regularly worked 60 to 90 hours a week. The company must also pay almost $200,000 in wage arrears to 7 employees, while its former director was also fined. In sport, Football First in England has failed to turn their dominance into a win at the FIFA World Cup this morning in Boston. They had 18 shots to 2 in a scoreless draw with Ghana. Football updates brought to you by Hisense. And for a second time in 12 months, France are bringing a weakened rugby squad to New Zealand. Their 33-man group for next Saturday's test against the All Blacks in Christchurch is missing several star players. A few could be added after the weekend's French Top 14 final.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
15: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
16: सूचित किया जाता है कि नागम्मा देवी के पति मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णमूर्ति आचार्य उर्फ बॉबी हैंडीमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार आज 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 02117711 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, नागम्मा देवी के पति मोनिका, प्रिया, क्रिस्टीन और राहुल के पिता कृष्णा मूर्ति आचार्य उर्फ बॉबी हैंडमैन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02117711 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑकलैंड के किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुबह की स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 1:00 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 2793894 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, ऑकलैंड की किरण सिंह, रोहिणी देव और उषा रानी की माँ, चार्ल्स स्ट्रीट सुबह के स्वर्गीय मनी राम की पत्नी चंद्रावती सिंह की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार 1:00 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2793894 पर आप संपर्क कर सकते हैं। भूरा एंड जोकन कंपनी लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहनीश और रोबिन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुबह फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 27 तारीख को 1:00 बजे वाका सिमेट्री में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए 02233268 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, भूरा और जोकन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोकन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश जयंत, मोहिनीश और रोविन जोकन की माँ, हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोकन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार 27 तारीख को 1:00 बजे वातुवाका सिमेट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02233268 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एलएसली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामालू नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल 4:00 बजे मैनकाव मेमोरियल गार्डन पुइनुई में किया जाएगा। सूचना दोबारा सुने, एलएसली के चंद्र नायडू और स्वर्गीय जी नायडू के पुत्र अविनेश नायडू और प्रिया रेड्डी के भाई साइमन स्ट्रीट ऑकलैंड के अरुणेश रामालू नायडू की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल 4:00 बजे मैनकाव मेमोरियल गार्डन्स वेरी में किया जाएगा।
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 17 and overnight temperature of 12. आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है हैवी रेनफॉल जो है शाम तक कम हो जाएगी और ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे. तेज नॉर्थ ईस्ट की हवाएं. ऑफकोर्स इट फील्स लाइक 15 डिग्रीज राइट नाउ. सनसेट 5:14 पर.
0: माई टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर लिव बेटर.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
3: माई टाइम विद कशिका.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भाई ये हम्पवार का दिन है और एक अलग सी फीलिंग जो हमारे मन में आ जाती है, वो एक्साइटमेंट जो हमारे मन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा हमें एक्साइट करने लग जाता है. आई नो ये एक्साइटमेंट मेरा लेवल भी कुछ ऐसा ही चलता रहता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू, कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें आप तक पहुँचानी होती है. और मैं चाहती हूँ कम्युनिटी में आपके कुछ हो रहा है तो आप buzz@hamfm.com पे हमें ईमेल डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका होता है जहाँ हम आपकी आवाज़ बन जाते हैं. 4076, आई एम सो सॉरी आई मिस्ड योर कॉल. अगर आप चाहें, आप मुझे सुन रही हैं तो आप मुझे दोबारा फ़ोन कर सकती हैं. माई टाइम लेकर मैं कशिका हाजिर हूँ 12 बजे तक और कशिश फूड्स के सौजन्य से. और प्रोग्राम की जब मैंने शुरुआत की थी, एक ही बात कही थी आपके साथ, समय जब अपने निर्णय करता है तो गवाहों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ऐसे में आप गवाह बन सकते हैं 6-word स्टोरी के. कोई 6-word की स्टोरी आपके माइंड में आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा एक छोटा सा एक मेरी कहानी है, थोड़ी अलग है. और कल एक बहुत देर बाद एक टेक्स्ट आया था, वो मैंने सोचा चलो आज उसे ऐड कर लेती हूँ. तो चलिए बजाऊँ क्या.
3: मिड मॉर्निंग मसाला

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Your vehicle is already out there every day. The question is, what is it saying about your business? With a Speedy Signs wrap, your car, van or truck becomes a rolling ad seen by thousands. One upfront investment, years of exposure. Why let that space go to waste when it could be bringing in new inquiries? Turn every trip into brand awareness. Give Speedy Signs a call or visit speedysigns.co.nz to get your vehicle signage sorted and grow your business faster.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
4: Sydney is on sale now at Flight Centre. Experience iconic attractions, harbour views and savings of up to $500 on Sydney City stays. Book online or in store today. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
5: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है. क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें. गटरों को साफ रखें. खुली चीजों को बांध लें. अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें. अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है. तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें. अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: ईट बेटर लिव बेटर तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन वेट लॉस की जो ड्रग्स होती हैं कई लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं, मगर कुछ लोगों के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं. और ये होता है एक थोड़ी ओबेसिटी की जो जो ये जो मेडिसिन है कि जो उसको किल करती है, कई बार ये डिफरेंट वेज में रिएक्ट करती है. ख़ास तौर पर अगर आप ये जेनेटिक आपने कुछ कोई डिसऑर्डर है तो उस पर आपको डेफिनेटली डबल चेक करना चाहिए. कुछ थेरेपीज लोगों के लिए काम करती हैं, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी मेडिसिन कोई वेट लॉस की ले रहे हैं, कि अगर वेट लॉस के जैब्स जो अगर आप ले रहे हैं, जो आजकल एक लेटेस्ट क्रेज़ बन चुका है फॉर शेडिंग अ फ्यू पाउंड्स, प्रॉबेबली इनका इफ़ेक्ट बहुत ड्रामेटिक हो सकता है. यू नो, ड्रग्स सच एज़ ओजेम्पिक एंड वीगोवी जो हैं, ये यूज़र्स को वेट लॉस तो कर देते हैं बॉडी में, लेकिन इसके साथ साथ और तरह के रिएक्शंस भी देने लग जाते हैं. ख़ास तौर पे हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है. और मैं ये चाहूँगी कि प्रॉबेबली एक नियंत्रित आपका अगर डाइट है उसे आप ले लें, आप उससे ही आप अगर कंट्रोल कर पाएँ, डेफिनेटली गिव इट अ शॉट. ओके, नाउ टाइम आ रहा है जहाँ पर मुझे आपको बताना है अ सिक्स वर्ड स्टोरी. और सिक्स वर्ड स्टोरी क्या है, चलिए देखते हैं.
11: सिक्स वर्ड स्टोरी.
12: तो आज की सिक्स वर्ड स्टोरी है, आपने कहा है द कैट स्लेप्ट पीसफुली इन द वॉर्म लाइट. अरे भाई, अब ये सेंटेंस थोड़ा और सा शॉर्ट हो सकता है. द कैट स्लेप्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स हो गए. द कैट स्लेप्ट यू नो इन वॉर्म लाइट. अब ये पीसफुली तो सोई है ना, कैट तो सोती है, कैट तो सोने के अलावा कोई काम ही नहीं आता. द कैट स्लेप्ट इन वॉर्म लाइट. गर्म जो मतलब सनलाइट आ रही है उसमें वो सो गई. आई थिंक प्रोबेबली दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेट्स सी अगर आप कोई और आइडिया आप निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं.
11: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे ये कह सकते हो कि पूरे गुजराती कम्युनिटी में राज होगा, जलसा होगा, क्योंकि आ रहे हैं गुज्जू बाइनी एक्सचेंज ऑफर लेकर लेजेंडरी सिद्धार्थ रंदेरिया, एंड दिस इज हैपनिंग नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 बजे विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में आप भी पहुंच सकते हैं, जहां पे उनका ये एक्सचेंज ऑफर आप भी समझ जाइएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, कुछ हंसने हंसाने की बातें और कुछ फैमिली मोमेंट्स आपके लिए होने वाले हैं। एक क्लासिक गुजराती ह्यूमर लेकर डेफिनेटली द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ गुजरात इज कमिंग लाइव ऑन द स्टेज, एंड दिस इज नन अदर देन सिद्धार्थ रंदेरिया। अब ये आपके लिए विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में 7:30 बजे पहुँचने वाले हैं परफॉर्म करने के लिए। टिकट नहीं खरीदी तो premiertickets.co.nz के जरिए जाके आप ये टिकट्स फटाफट खरीद सकते हैं।

0: Time with Kashika.
1: Wow.
2: जब बात करते हैं कम्युनिटी की तो हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ डेफिनेटली बन जाते हैं. ऑकलैंड फिजी, ऑकलैंड में हो रहे हैं फिजी इलेक्शन की वोटर रजिस्ट्रेशन और ये आज से शुरू हो चुके 26 तारीख तक होने वाले हैं 12 से 8 बजे तक. मैंगरी सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी आप पहुंच सकते हैं जहां पे फिजी इलेक्शन ऑफिस ये कंडक्ट करने वाले हैं सेकंड वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव. और जाइए जाके रजिस्टर कीजिए ताकि आपका वोट जो है वो डेफिनेटली काउंट करा जा सके. ऑकलैंड रामायण संस्था अपनी मासिक रामायण कथा जो है ये 26 तारीख को इसी फ्राइडे के दिन 7:15 बजे लेके आने वाले हैं. ARST कम्युनिटी सेंटर 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में आप पहुंच सकते हैं. प्रसाद का आयोजन और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है. इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आ रहे हैं. स्टॉल्स की इंक्वायरी के लिए मास्टर अशोक से संपर्क करें 0211795459 पर. और ये खूबसूरत सा दिन जो है रामलीला का एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है 8th of August के दिन. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर आप चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब वाकई ही इतनी खूबसूरत रामायण को किस तरह से दर्शाने वाले हैं उसे देखना का बिल्कुल बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
4: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
5: HBO Max is that all-killer, no-filler.
6: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
5: Exactly.
6: Right, we'll see. What are they called?
5: These HBO original series, The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, One Battle After Another, and then these Friends, The Big Bang Theory.
6: Whoa, okay, I get it. Fair call.
5: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
7: Debut Hi-Fi is celebrating its stunning new store at Newmarket this Thursday from 5 p.m. with cost plus GST on products store-wide for 4 hours only. Don't miss out on huge savings only at JB Newmarket this Thursday 5 to 9 p.m. JB, you've done it again.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
9: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
8: तो जल्दी join करें. To enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To deer mat kijiye. Call 0800-4626-26 today.
9: Available at selected branches. T's and C's apply.
10: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
11: Ek zabardast kahani hai.
12: Aur title kya hai film ka?
11: Welcome to the Jungle.
10: Welcome to the Jungle releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
13: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
14: Dad, I feel sick.
15: Yep, we've all been there. And so has Sealeaks. For over 55 years, Sealeaks has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your sea legs and enjoy the journey. Sealeaks is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: वैसे क्वीन एलिजाबेथ टू जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर फेसेस हो चुके हैं न्यूजीलैंड के वॉलेट्स में, यानी कि ये हमारे ग्रीन नोट में $20 की डेफिनेटली आती हैं, बट न्यूजीलैंड की कॉइन्स जो हैं ये एक स्लो ट्रांजिशन शुरू कर रहे हैं टू किंग चार्ल्स III. अब ये क्वेश्चन है, हु शुड अपेयर ऑन द फ्यूचर बैंक नोट्स जो कि आने वाले हैं? शुड इट बी द 20 नोट सिंपली एक ट्रेडिशन हो जिसमें किंग को फीचर किया जाता है, या फिर इट्स टाइम फॉर आउटरोवा टू चूज समवन स्ट्रॉन्ग विद अ लोकल कनेक्शन? 2023 में ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि नॉट टू रिप्लेस द लेट क्वीन विद किंग चार्ल्स III ऑन इट्स $5 नोट. इसके बजाय उन्होंने ऑप्शन लिया टू ऑनर द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस. ये नया नोट जो है ये इंडिजीनियस डिज़ाइन के साथ फीचर कर रहा था. एक मूव जो है प्रॉम्प्ट किया गया है, एंड दिस इज़ अ डिबेट विच हैज़ कम अक्रॉस, और एक सिमिलर कॉन्वर्सेशन कुछ और चला गया. हु शुड रिप्लेस द क्वीन एलिजाबेथ II ऑन $20 नोट? इट शुड बी किंग चार्ल्स, वीना कूपर, चार्ल्स उपम, या सर पीटर ब्लेक, सर पीटर जैक्सन, या माउरी क्वीन. अब ये एक संघर्ष चल रहा है. न्यूजीलैंड के $20 का नोट इज़ द ओनली करेंट बैंक नोट जिसमें मोनाको यानी कि किंग की इस तरफ से रॉयल किसी को फेस किया जा रहा है. अदर नोट्स जो हैं ये ऑनर कर रहे हैं फिगर्स सच एज सर एडमिन हेलरी, केट शेपर्ड एंड सर आपिराना नागाटा और सर अर्नेस्ट रुथरफोर्ड. अब दिस अप लॉट ऑफ प्लेस फॉर इस डिबेट. अब कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि किंग चार्ल्स III इज़ द ऑब्वियस चॉइस, जहां न्यूजीलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल टाइज जो हैं क्राउन के साथ है ऑलरेडी, तो ये फिगर डेफिनेटली आना ही आना चाहिए. जो नाम पब्लिक कॉन्वर्सेशन में फ्लोट कर रहे हैं वो माउरी क्वीन का नाम भी फ्लोट कर रहा है, और समा फेवरिंग डेम वीना कूपर जो 1975 में इन्होंने कंट्री के सिविल राइट्स के लिए मार्च किया था, और उसके बाद वेल नोन फिगर्स जो हैं आर देयर फ्रॉम स्पोर्ट्स फिल्म्स एंड वॉर टाइम, सेंट पीटर ब्लेक, सर पीटर जैक्सन, चार्ल्स उपमन. ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ बहुत सारा सपोर्ट अटैच किया गया है. ऑफकोर्स आप जब सोच रहे हैं, समय सुन रहे हैं, आप जब ये नोट उठा के देखेंगे तो कहेंगे डू यू थिंक इस पर हमें किसका कौन से पर्सन को फीचर करना चाहिए, और ये क्या नेटिव वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, लैंडस्केप के या बजाय आर्ट होना चाहिए, कोई माउरी डिज़ाइन होना चाहिए, समथिंग एल्स. पता नहीं अभी इवेंचुअली ये रिप्लेस होगा या नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट डज़ गिव यू चांस जहाँ आप

में हम लोग लंच के लिए जिपर बैग्स लेके जाते थे और उन्हें स्टोर करते थे, तो उनके अंदर हमें कभी लेफ्ट ओवर चीज़, कुछ लंच, कुछ मीट, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक रैप्स जो है दे सीम टू बी स्टिक टू एनीथिंग बट खुद से नहीं स्टिक करते थे, राइट? सैंडविच से स्टिक हो गए, लेकिन उसके बाद आप कोशिश करो उसे स्टिक करने की, बंद करने की, नहीं हो पाता। मैं कई बार मैंने इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करा इनके साथ, तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो ये बैग्स होते हैं, जो हमारे जिपर बैग्स होते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ दोबारा से। वाई नॉट वी कैन हैव दीज डिस्पोजेबल बैगीज, प्रॉबली द जिसमें सिलिकॉन सिपर होता है, इन्हें लंच बैगीज की तरह हम इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। दिल से दिल तक।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

सुनता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।